सुप्रभात, हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स एवं FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स, इसके साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं आरंभ होती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल। सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से केंद्रित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं के समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश के संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता

0: गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामी चैनल है और अभी आप सुनेंगे चिंतन सन्मार्ग जिसका विषय रहेगा।
3: प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अनमोल जीवन को समाज के कल्याण हेतु समर्पित करना चाहिए। हमें नैतिकता के मार्ग का अनुसरण करते हुए यानी सन्मार्ग पर चलते हुए जीवन यापन करना चाहिए। सन्मार्ग वो रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, क्योंकि ये मार्ग हमें अन्याय, अधर्म और अनैतिक कार्यों से दूर रखता है। संपूर्ण प्राणी जगत को अपने अस्तित्व के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन चारों ओर के वातावरण की चकाचौंध से आकर्षित होकर मनुष्य नैतिक मूल्यों को छोड़कर गलत मार्ग में भटक जाता है। प्रायः युवाओं में ये स्थिति देखने को मिलती है और इससे वो निराशा, कुंठा और व्याधियों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अज्ञानवश वे भौतिक जगत की उपलब्धियों जैसे कि धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा को ही जीवन का परम लक्ष्य मानने लगते हैं और अपना जीवन खो बैठते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हमें संयमित जीवन यापन करते हुए आध्यात्मिक सत्ता को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। जगत के प्रलोभनों से हमारे मन में अपवित्र और दूषित विचार आ जाते हैं, लेकिन विवेक और धैर्य से हमें न्याय के पथ पर चलते रहना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी और अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि ये नैतिक मूल्य सन्मार्ग को प्रशस्त करते हैं। सन्मार्ग पर चलते हुए हमें अपने चंचल मन और इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना होता है ताकि सर्वश्रेष्ठ चरित्र का निर्माण हो सके। सन्मार्ग मानव के उज्ज्वल चरित्र का परिचायक है। धर्म, सेवा, शिक्षा और सद्संगति सन्मार्ग को प्रबल बनाते हैं, जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकता है। तो आइए ये शुभ संकल्प हम प्रतिदिन लें कि हम अपने दैनिक जीवन में सद्व्यवहार और सदाचरण का पालन करते हुए सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामीर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: इस समूह गान के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज इसमें आप सुनेंगे कड़ी संख्या 141, भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह द्वारा।
1: एपिसोड 141, 141।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या। अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं। तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकेयी ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक का। दूसरा वर भी हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज की रूपरेखा।

6:45 पर आप सुनेंगे करसारी बात, क्षारीय व लवणीय भूमियों का सुधार। 7 बजे प्रस्तुत होगा साहित्य धारा, कविता पाठ ललिता कुमारी के द्वारा। सवेरे के 7:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। नौ बजकर 15 मिनट पर आएगा हेलो जयपुर कार्यक्रम। 10 बजे आप सुन सकेंगे यायावर और 11 बजे से फरमाइशी फिल्म संगीत।

चार बजे आप सुन सकेंगे स्वर मंजरी, चेतना पाठक, ख्याल गायन, राग रहेगी हिमावती एवं पूर्य धनाश्री। पांच बजे हम सुन सकेंगे युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

0: 8 बजे आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत और 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। रात के 10:30 पर आप फिर सुन सकेंगे फिल्म संगीत। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल और श्रोताओं, ये थी आज की रूपरेखा।
1: मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है, श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम करसारी बात। वार्ता रहेगी क्षारीय व लवणीय भूमियों का सुधार।
4: करसारी बात सुनबाला सभी किसान भाइयों ने गणगणु राम राम। तो किसान भाइया, आज आपा जानाला क्षारीय और लवणीय भूमि को सुधार। तो किसान भाइया, सबनों पहली आपा ने ओ जानबो जरूरी है कि क्षारीय और लवणीय मिट्टी बनबा का कारण और आ मिट्टी किसा किसा इलाका का मायने पाई जावे। लवणीय और क्षारीय मृदा प्राय रूपों शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र के मायने पाई जावे। ई मृदा के बनबा का कई कारण है, जिका एक मुख्य मुख्य कारण है बी के बारे में आज आप जाना ला। ई क्रम के मायने पहलो कारण है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशा के मायने जटे वर्षा कम हुए और तापमान ज्यादा रहे हैं, बटे विले लवण मृदा के सतह के नीचे संचय होता रहे। वर्षा के टाइम लवण मृदा के परतों के नीचे चला जावे, लेकिन वर्षा को मौसम खत्म हुए बाद के मायने जिसकी तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हुए है बी के मायने ये लवण पुनः सतह पर वापस आ जावे। शुष्क क्षेत्र के मोमजल में विले लवणों की प्राय अच्छी खासी मात्राएं रहे है। वाष्पीकरण द्वारा मृदा सतह पर लवणों को संचयन की सदैव वृद्धि होती रहे। ई क्रम का मायने आगलो कारण है बहुत समय तक अधिक लवणीय जल से सिंचाई। जल में लवणा की मात्रा के अनुपात में ही मृदा में लवण संचय हुए है। ओ मृदा के कणाकार और जलीय चालकता पर निर्भर क्रिया करे। एक ही तरह के जल के उपयोग से लवण संचय महील आकार वाली मृदा के अधिक और मोटे कणाकार वाली मृदा के मायने कम हुआ करे। जल निकास में कमी। जल के निकास उचित न होने की वजह हूँ आसपास को जल निचले स्थान पर एकत्रित हो जावे और सूखबा पर अपने साथ लाए हुए विलय कणा ने बटे छोड़ देवे। इस प्रकार को क्रम प्रतिवर्ष चालबो करे और कुछ समय बाद मृदा लवणीय और क्षारीय बन जावे। ई क्रम के मायने अगलो कारण है उच्च मोमजल स्तर। मोमजल स्तर मृदा सतह के निकट होने पर समुचित जल को निकास को नहीं बदेवे, जो कि लवण संचय के मायने सहायक हुआ करे। जल स्तर मृदा सतह के निकट प्राकृतिक कारणों अथवा नहर जलाशय नदी के पास होबा की वजह भी हो सके है। जल स्तर मृदा सतह के निकट प्राकृतिक कारणों अथवा नहर जलाशय एवं नदी के नजदीक होने की वजह भी हो सके हैं। अगला कारण है प्रोफाइल में कड़ी परत। प्रोफाइल में कड़ी परत की वजह हूँ पानी नीचे को नहीं पूछ सके, जिसके मायने विले लवण कड़ी परत के ऊपर वाली भूमि के भाग में ही रहे हैं। वाष्पीकरण के समय लवण मृदा के ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जावे, इस प्रकार की कड़ी परत जल विकास के मायने बाधक बन जावे। अगला कारण है मृदा पदार्थों की प्रकृति। चट्टाना की रचना विभिन्न खनिजों हुआ करे,

जिन चट्टाना के मायने भस्म की मात्रा ज्यादा हुई तो भी निर्मित की मर्दा है बी के मायने भस्म की मात्रा भी ज्यादा हुई। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र के मायने अनेक अपसय कारक के द्वारा यान की चट्टाना के मायने तोड़ फोड़ होबा की वजह बहुत सा विले लवण बने है। ए लवण पानी के मायने घुलर मिट्टी की निचली सतह में पुग जावे। जद यान का स्थान पर पानी भाप बन उड़ जावे तो ए लवण भूमि पर की सतह पर एकत्रित हो जाए। ई क्रम के मायने अगलो कारण है क्षारीय उर्वरकों को अधिक मात्रा में उपयोग। यदि किसी भूभाग पर निरंतर बेसिक उर्वरक जिया सोडियम नाइट्रेट को प्रयोग किया जावे तो मृदा के मायने लाइड और सोडियम आयंस अधिशोषित होता रहे है। यूं मिट्टी की रचना बिगड़ जावे, परिणाम स्वरूप वायु संरक्षण और जल शोषण तथा धारण शक्ति कम हो जावे। इसके साथ ही किसान भाइयों एक ही को और भी बड़ो कारण है हल्के तालू की रगड़ाई की वजह पतली कड़ी परत को बनना। हुए कहीं है कि एक ही गहराई पर सदैव जुताई करबा की वजह एक पतली कड़ी परत हल्के तालू की रगड़ बन जावे जी की वजह पानी ने सतह में जाबा में बाधा रेवे। ये तो हा लवणीय और सारीय मृदा बनबा को कारण। अब आप जाना लवणीय भूमि को प्रबंधन, इको अपन प्रबंधन किया करना चाहिए। लवणों की अधिकता कई प्रकार की समस्याओं को कारण है। ई लवणा की अधिकता दूर करबा के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता है। तो ई के लिए अपन कई चीजें करनी चाहिए जी के मायने सब नौ पहली सतह पर एकत्रित लवणा ने अपन खुरच कर और निक्सालन द्वारा हटाए जानो चाहिए। भूमि की सतह के नीचे के लवणा ने ई तरीका आप को नहीं हटा सका। भूमि के लवणा ने हटाबा के लिए निक्सालन सब नौ सर्वोत्तम विधि है। इक मायने लवणा ने पानी में घोल और जड़ क्षेत्र में नीचे लाया जावे ताकि पौधा पर इको कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। भूमि में लवणान हटाबा के लिए गर्मिया में ऊपर की सतह पर मिट्टी ने खुरचर किसी दूसरा गड्ढा में डाल फिर खेत के मायने जुताई कर सही हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। खरीफ के ढेंचा की बुआई 35-40 दिन के बाद हैरो में काट कर मिट्टी में मिलाना चाहिए। निक्सालन के लिए खेत ने तैयार करके चारों ओर मेड़ बना देनी चाहिए ताकि बरसात को पानी इकट्ठा हो सके और निक्सालन की प्रक्रिया ने किए जा सके। यदि सिंचाई के लिए उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध है तो गर्मिया के मायने निक्सालन को सबनाओ उचित समय है क्योंकि इस समय खेत खाली रहे हैं और यदि भूमि के नीचे सख्त तह हो तो पहली गहरी जुताई कर लें और बी के बाद निक्सालन करें। जिन जगहों में भूमि जल स्तर काफी ऊंचाई पर पाए जावे है वहाँ आ क्रिया बहुत ही जरूरी है। कभी कभी निक्सालन के समय पोषक तत्व भूमि की निचली सतह तक पहुंच जावे इसके लिए उर्वरक की मात्रा 1.5 गुनी बढ़ा डालनी चाहिए ताकि फसलों की आवश्यकता ने पूरी की जा सके। लवणीय इलाका के मायने लवण सहनशील फसल उगाई जानी चाहिए जिसके मायने सरसों कपास तारामीरा इन की फसल उच्च सहिष्णु फसल गेहूं धान जौ बाजरा ज्वार मध्यम लवण सहिष्णु है। दाल की फसल सब नाव कम लवण सहन कर पावे। अब आप आगे जाना क्षारीय भूमि प्रबंधन। क्षारीय भूमि के मायने सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जावे। इस प्रकार की मृदा के प्रबंधन के लिए सोडियम को मृतिका कणों हटाया जावे तथा बाद में सोडियम को निक्सालन के द्वारा गहरी सतहों तक पहुंचाया जाया करे। सोडियम की मृतिका कणों हटाने के लिए भूमि सुधारणों जिया जिप्सम को उपयोग करो जाया करे है। वो सस्तो और आसान तरीको होबा के कारण सब नाव उपयुक्त है। सोडियम को मृतिका कणों से हटाने के लिए जिप्सम की मात्रा भूमि की सारियता पर निर्भर क्रिया करे। जिप्सम डालबाओं पहली खेत की मृदा की जांच करनी चाहिए। जिप्सम को प्रभावशाली बनावा के लिए इन्हें बारिश के मौसम में मिट्टी में मिला देना चाहिए। साथ ही जिप्सम जितो बारीक हो लो अतो ही ज्यादा प्रभावी हो लो। इके एक महीना बाद खेत ने जोतर निक्सालन करना चाहिए। क्षारीय भूमि को प्रबंधन के लिए जैविक और हरी खाद को मिट्टी में मिलाना भी बहुत ज्यादा लाभकारी हुआ है क्योंकि यूं भौतिक गुण और उर्वरता सुधरे। इक मायने मृदा संरचना ठीक हो जावे और पारगम्यता बढ़े। इक लिए ढेंचा की हरी खाद को प्रयोग करना चाहिए। क्षारीय भूमि ने सुधारबा और उपयोग में लाने के लिए क्षार सहिष्णु फसलों को उपयोग करना चाहिए जी हाँ गेहूं जौ कपास चुकंदर ए मध्यम क्षार सहिष्णु फसल है। पानी की उपयुक्त मात्रा होबाऊ इन की मृदा ने सुधार के दौरान धान गेहूं के फसल चक्र को सर्वोत्तम मान्य गयो है। तो ए तो हा क्षारीय और लवणीय भूमि को प्रबंधन। अब किसान भाई ने किया ध्यान पड़ी के अपनी मृदा लवणीय और क्षारीय होगी है इका लक्षण काई है बाके बारे में भी जानबूझ बहुत बहुत जरूरी है। गर्मिया के मायने लवणीय भूमि पर सफेद और भूरा लवण दिखाई देवे है और मिट्टी फुली फुली सी हो जावे। वर्षा हुबाऊ सिंचाई के टेम विलीन हो जावे। यान की भूमि पर पेड़ पौधा कटे कटे दिखाई देवे। पर्याप्त नमी होने के बावजूद
पौधा के मायने पानी की कमी दिखाई देवे और कभी कभी पौधा की पत्तियों को रंग गहरो नीलो हो जावे और बीका किनारा झुलसड़ा दिखाई देवे, तो किसान भाई ने समझना चाहिए कि बीकी जगी भूमि है, बीक मायने लवण और क्षार की मात्रा बढ़ गई है। किसान भाइया क्षारिय और लवणीय मृदा की पहचान कर सके है और बीक मायने उचित सुधार कर सके। राम राम सा।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, सवेरे के 6:55 को हैं और कुछ ही समय में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: साहित्य द्वारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ललिता कुमारी से कविता पाठ।
1: प्रिय श्रोतागण, प्यार भरा नमस्कार। मैं ललिता उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपनी कुछ कविताओं के साथ। मेरी कविता का शीर्षक है मंगलपति गणराज। हरे दिन

समाज, अब कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ। सावन के अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए सावन रिमझिम बरसात है, किसी के लिए लहरिया, सबके अपने अपने मायने हैं। एक मुक्तक, जोगिया कैसे लिख दूँ मैं श्रृंगार, जोगिया कैसे लिख दूँ मैं श्रृंगार, सावन भादो रिमझिम की फुहार, जोगिया कैसे लिख दूँ मैं श्रृंगार, सावन भादो रिमझिम की फुहार, गली चौराहे खड़े दुशासन, गली चौराहे खड़े दुशासन, बढ़ रहे अत्याचार, नारी नहीं रही सुरक्षित, असमत होती तार तार। एक मुक्तक नारी के लिए, कुछ नहीं बस हमें अमन चाहिए, कुछ नहीं बस हमें अमन चाहिए, शांति सौहार्द रहे वो चमन चाहिए, वंदे मातरम की गूंज दिशाओं में, वंदे मातरम की गूंज दिशाओं में, सुरक्षित हो नारी ऐसा वतन चाहिए, सुरक्षित हो नारी ऐसा वतन चाहिए। चार पंक्तियाँ मेरे देश को निवेदित करती हूँ।

दुश्मनों के सरजमी को दहला दीजिए, दुश्मनों के सरजमी को दहला दीजिए। एक कविता मैं अपने माता पिता को समर्पित करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मात पिता आशीष दें। सुनिएगा। मात पिता आशीष दें और गुरुवर से ज्ञान, मात पिता

धन्य। अगला बंद है, बच्चे सब गुणवान हो, विद्या मिले अपार, बच्चे

श्रोतागण, दो दोहे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। छू लूँ मैं आकाश को, छू लूँ मैं आकाश को अपने पंख पसार, बाधाएं भी क्या करे दृढ़ हो अगर विचार, बाधाएं भी क्या करे दृढ़ हो अगर विचार। करता प्रयास जो सही पाया वही मुकाम, मेहनती आगे बढ़े जग में होता नाम, मेहनती आगे बढ़े जग में होता नाम। शहीदों के ऊपर कुछ दोहे लिखे हैं मैंने। श्रोतागण, आइए उन जवानों को याद करें। शीश लगा माटी तिलक जिस पथ गुजरे लाल, शीश लगा माटी तिलक जिस पथ गुजरे

0: जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे ललिता कुमारी से कविता पाठ। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: साहित्य धारा।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य धारा।

0: पट्टी कर। कोई नहीं, आराम से कर ले। हो गई, कर ली पोटी। अरे माया
1: आई माँ जी।
0: अरे ये पोछा वोछा बाद में लगाना, पहले चुन्नू की पोटी धुलवा दे।
1: लो दो,
0: इधर डाल, इधर पाँव पे लग रही है, इधर
1: उधर से दो, उधर से, उधर से दो। हाँ, वो दो।
0: अब मेरा राजा बेटा अपनी माँ के पास दूध पीने जाएगा। माया मैं चुन्नू को बहू को देकर आ रही हूँ, तब तक तू ये चुन्नू की पोटी सामने जो खाली प्लॉट है ना वहाँ पे फेंक दे।
1: क्यों खाली प्लॉट में, क्यों बाहर, क्यों संडास में, क्यों नहीं? बाहर फेंकूंगी तो मक्खियाँ नहीं भिन भिन आएंगी। हाँ
0: अरे तू कहना क्या चाहती है?
1: तो जरा सोचिए माँ जी, जब मैं चुन्नू की पोटी खाली प्लॉट में खुले में फेंक के आऊंगी तब उस पे मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, और फिर वही मक्खियाँ उनकी खाने पीने की चीजों, मुन्ने की दूध की बोतल और घर की अन्य चीजों पे बैठ के उन्हें अशुद्ध नहीं करेंगी, बीमारियाँ नहीं फैलाएंगी।
0: हाँ, ये बात तो है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
1: तो अब सोचिए माँ जी।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं और श्रोताओं अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गाना प्रस्तुत है आपके लिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, जिसको गाया है उस्ताद सुल्तान खान ने और शंकर महादेवन ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओ, अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म गोलियों की रासलीला यानी रामलीला से, और इसके बोल लिखे हैं सिद्धार्थ और गरिमा ने, संगीतकार हैं संजय लीला बंसाली।

श्रोताओं, ये था एक बहुत प्यारा सा गाना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज़ में। अगला गाना आप सुनेंगे फिर से श्रेया घोषाल और कविता सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। संगीतकार रहेंगे इजमेल दरबार और इसके बोल लिखे हैं नुजरत बद्र ने। फिल्म है देवदास।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामी चैनल है और श्रोताओं भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म देवदास से, जिसको गाया है पंडित बिरजू महाराज ने और कविता सुब्रमण्यम ने। इसके बोल और संगीतकार दोनों पंडित बिरजू महाराज जी हैं।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामेर चैनल और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना आप सुनेंगे श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाज़ में, जिसके संगीतकार हैं संजय लीला बंसाली और बोल लिखे हैं AM तूरज ने। फिल्म है पद्मावत।

श्रोता, अगला गाना आप सुनेंगे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, जिसके संगीतकार हैं सलीम सुलेमान, जिसके बोल लिखे हैं जयदीप सैनी ने और फिल्म है आजा नचले।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामीर चैनल और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, अगला गाना आप सुनेंगे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में, जिसके संगीतकार हैं ए आर रहमान, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और फिल्म है ताल।

श्रोताओं, अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म राजपूत से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यहाँ मेरी चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुबह के 8 बजने को है और अब आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आठ बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 8:15 पर अंग्रेजी में और 8:30 पर उर्दू में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे ओलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
4: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
5: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में दो अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noore Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
7: According to reports, the Indian-flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian-flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
6: India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide the reality. Briefing media in New Delhi External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He said that since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. He said the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise.
8: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured. As you have seen, the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy.
6: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussion on culture. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build a consensus on key areas ahead of the BRICS culture ministers' meeting. Here is a report from our correspondent.
9: Bhopal is hosting a major BRICS cultural meeting from today. The four-day event being held under India's BRICS presidency will continue till the 8th of August. It includes meetings of the BRICS Culture Working Group and BRICS Culture Ministers. The city has been specially decorated for the event. VIP Road and Bhot Setu have been beautified with fresh paint and murals. The first 2 days are for discussions among senior officials. The last 2 days will have the meetings of culture ministers who will finalize a joint declaration. India has placed two important proposals before the member countries. One is to create a shared digital platform for artists and cultural heritage. The second is to encourage joint UNESCO nominations by BRICS nations. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
6: Meanwhile, the 13th BRICS Education Ministers meeting and the 3rd BRICS Senior Officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. The Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy review today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the latest repo rate decision in Mumbai at 10 a.m. Monetary Policy Committee, MPC, of the Central Bank began its three-day meeting on Monday. The policy decision comes at a crucial juncture amid persistent geopolitical tensions and a hawkish U.S. Federal Reserve. The RBI is expected to hold the core repo rate unchanged at 5.25%. The repo rate is the interest fee the RBI charges when it lends money to commercial banks. The central bank in its commentary will lay out the inflation risks, crude oil prices and global geopolitical uncertainties that may affect the Indian economy. The Supreme Court yesterday directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. The Medical Counselling Committee will begin Round 1 registration for NEET UG Counselling 2026 today. According to the official schedule, Round 1 registration and fee payment will remain open till the 12th of this month until 3 p.m. More from our correspondent.
10: Candidates can fill their choices between the 6th and 13th of this month. The choice locking facility will remain available to students between 12th and 13th of August. Meanwhile, the round 1 seat allotment process will open to students between the 13th and 16th of this month. Further, the result will be declared on 17th of August. Candidates who have been allotted seats have to report to the respective institutes between August 18th and 22nd. The participating institutes will verify the data of joint candidates on 23rd of this month. Ahead of the commencement of the counselling process, Health Ministry has released step-by-step tutorial videos to help candidates understand the registration, choice filing and seat allotment process on the MCC portal. Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Protests by students over alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission examination have intensified in Jharkhand. Thousands of aspirants have been staging an indefinite protest for the past 12 days at the Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi. Here's a report.
2: Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi has become a symbol of the anger and anguish of young aspirants protesting against the alleged irregularities in the JPSC examination. However, the protesters claim that despite braving the scorching sun and remaining at the protest site, they have been deprived of basic amenities such as drinking water, food and toilet facilities. Union Minister of State for Defence and Ranchi MP Sanjay Seth has criticised the opposition for remaining silent on the issue. He alleged that the state government has shown complete insensitivity, claiming that no representative of the government has visited the protesting students so far. Describing the plight of the protesting students as a reflection of the state government's insensitivity, former Chief Minister Arjun Munda said that the fight for the rights of the youth would not remain confined to Ranchi alone. With allegations of paper leak and a lack of basic facilities at the protest site, the students say they are determined to continue their agitation. It remains to be seen how soon the administration response to the demands. Mavish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
6: The Uttar Pradesh government will provide free travel in state roadways buses for women aged 60 years and above. More from a correspondent.
4: In the first supplementary budget for the financial year 2026-27, a provision of rupees 100 crores has been made to reimburse the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation for implementing this initiative. The Bharatiya Janata Party had promised this measure in its Lok Kalyan Sankalp Patra. This decision will provide financial relief to millions of senior women across the state, enabling them to travel for religious, social, family and healthcare related needs. In addition, the government has allocated an additional rupees 1094 crores to the Women Welfare Department, strengthening key schemes such as Destitute Women Pension Scheme, the Mukhyamantri Bal Seva Yojana and various programs related to the protection of women and children. These provisions further reinforce the government's commitment to women's safety, dignity, social security and economic empowerment. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
6: The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. In Assam, heavy rainfall continued disrupting normal life in several parts of the state. The Brahmaputra and many of its tributaries are flowing close to the danger level at several locations. Rivers such as Rangnadi, Dhansiri, Dikhau and Budhi Dihing are reported to be flowing near the danger mark and are showing a rising trend. A report.
11: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for almost all districts of Assam and has forecast heavy rainfall across the state over the next 24 hours. According to the Assam State Disaster Management Authority, floods have so far affected 10 districts, including Sivasagar, Temaji, Golaghat, Soraidu, and Kamrup Metropolitan. Two more people have lost their lives in flood-related incidents yesterday, taking the state's flood death toll to 89. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, who is on a 5-day visit to Upper Assam to assess the flood situation, yesterday visited a relief camp in Sivasagar, inspected several flood-affected areas, and reviewed the condition of educational institutions impacted by flood. During the visit, the Chief Minister handed over checks of Rs. 5 lakh each as one-time financial assistance to the next of kin of 10 persons who lost their lives in the devastating floods. Rakesh Dole, Akashvani News, Guwahati.
6: In Kerala, heavy rain will continue across the state today, although the intensity is expected to be lower than yesterday. Many parts of the southern districts of the state had already received up to 15 millimetres of rainfall by this morning. Rain warnings have also been issued for all districts tomorrow. Meanwhile, the IMD has forecast heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand and Madhya Pradesh till tomorrow. Parts of Delhi witnessed light drizzle early in the morning. The IMD predicted generally cloudy sky with very light to light rainfall at many places of the national capital during the day. On to sports. In badminton, star Indian shuttler PV Sindhu will be the ninth seed in the women's singles event at the BWF World Badminton Championships 2026, scheduled to be held at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi from 17th to 23rd August. India's highest seeded entry at the World Badminton Championships will be the men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, who have been handed the fifth seed. Former World Championships bronze medalist Lakshya Sen is seeded 14th in men's singles, while Dhruv Kapila and Olympian Tanisha Krasto are the 15th seeds in mixed doubles. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
12: Thank you, Anuja. Stressing coordinated action, the Supreme Court seeks wider adoption of grievance and money restoration modules to ensure quicker relief for cybercrime victims. The Pioneer says SC gives RBI 4 weeks to frame standard operating procedure on cyber fraud accounts. Qatar and USC progress in talks to end Iran war, while in the Sun Times reports 13 Indians rescued as vessel sinks after attack off coast of Yemen. A headline in the Tribune writes about sex ratio at birth falling to 900 in first half of current year. The paper adds, Karnal tops with 945, Charki Dadri lowest at 829. Strongly criticizing Pakistan over its recently conducted so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the statesman writes, India dismisses POJK polls as complete farce. All the dailies have covered the news of passing away of educationist, philanthropist and ex-governor of Tripura, Bihar and West Bengal, Padma Shri Dr. D.Y. Patil at the age of 90. And finally, Gen Z may help drive digital gold rush, states the Economic Times, as the savvy Gen Z emerges as the fastest growing consumer. With that, it's back to you, Anuja.
6: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India flagship sinks after attack in Red Sea. All 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counselling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
13: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदा खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत का परचम बरदार जहाज बोहरे अमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निपटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट यूजी काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए नवा मकाम, जबकि सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पांचवा मकाम हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। यमन के साहिल के नजदीक बहर अहमर में कल भारत का परचम बरदार तिजारती जहाज MCV फैजे नूरे ओलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरा, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, उन सभी को बचा लिया गया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
14: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचम बरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तिजारती जहाज पर इस इश्तियाल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खित्ते की बैन अवी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी और तिजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक़ भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
13: भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में ओहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दोतरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेजबानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक चार रोजा तबादले ख्याल के लिए यहां पहुंच गए हैं। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
15: ये चार रोजा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक्किद की जा रही है, जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खास तौर पर तज़ईन कारी की गई है। VIP रोड और भोज सेतु को ताज़ा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई दो रोज के दौरान सीनियर अफसरान तबादला ख्याल करेंगे और बाद के दो दिन सकाफत के वजीरों की मीटिंग्स मुनक्किद होंगी। वज़रा एक मुश्तरक ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। भारत ने रुकन मुल्कों के सामने दो अहम तजावीज रखी हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वर्से के लिए एक मुश्तरक डिजिटल प्लेटफॉर्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज़ का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरक नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
13: ब्रिक्स के वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 30वीं मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनक्किद की जाएगी। वजारत तालीम ने बताया कि इन मीटिंग्स में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए तालीम, सीनियर अफसरान और मंदूबीन शिरकत करेंगे। میٹنگ کے دوران اشتراک کے موضوعات پر بات چیت کی جائے گی، جن میں بچپن کے ابتدائی دور میں دیکھ بھال اور تعلیم، نیز ہنر مندی کو مستحکم بنانے، تعاون میں اضافہ کرنے اور اشتراک پر مبنی تحقیق، اختراع، نیز اسٹارٹ اپس کو فروغ دینے جیسے ترجیحی میدان شامل ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی برکس کے وزرائے تعلیم کی اس 13ویں میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی اپنی مالی پالیسی کے جائزے کا اعلان آج کرے گا۔ اس مالی پالیسی کے جائزے کا اعلان ہر دو مہینے میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا تازہ ترین ریپو ریٹ کے فیصلے کا اعلان ممبئی میں صبح 10 بجے کریں گے۔ پالیسی سے متعلق یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ کے وفاقی بینک کی پالیسی میں جارحیت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آر بی آئی اپنی ریپو ریٹ 5.25% میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مالی پالیسی سے متعلق 6 رکنی کمیٹی ایم پی سی اپنا غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھے۔ ریپو ریٹ بھارتی ریزرو بینک کی طرف سے عائد سود کی وہ فیس ہوتی ہے جو وہ کمرشل بینکوں کو پیسہ ادھار دیتے ہوئے وصول کرتا ہے۔ ریزرو بینک اپنے تبصرے میں افراط زر سے متعلق ان اندیشوں، خام قیمتوں اور عالمی جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی حالات کا ذکر کرے گا جو بھارتی معیشت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو ہدایت دی ہے کہ وہ فرضی کھاتوں اور سائبر گھوٹالوں والے بینک کھاتوں سے نمٹنے کے لیے ایک معیاری طریقہ کار تشکیل دے۔ عدالت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں، نیز قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو بھی ہدایتیں جاری کی ہیں کہ وہ شکایتوں کے ازالے کو مستحکم بنائیں، گھوٹالوں سے بچائے گئے روپے پیسے کی بحالی میں تیزی لائیں اور ڈیجیٹل گھوٹالوں کے کیس سے نمٹنے کے عمل کو بہتر بنائیں۔ میڈیکل کاؤنسل کمیٹی این سی سی آج نیٹ یو جی کاؤنسلنگ کے پہلے راؤنڈ کا رجسٹریشن شروع کرے گی۔ شیڈول کے مطابق پہلے راؤنڈ کا رجسٹریشن اور فیس کی ادائیگی اس مہینے کی 12 تاریخ کو سپہر 3 بجے تک کی جا سکے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
14: امیدوار 6 اگست سے 13 اگست کے درمیان اپنے متبادل فراہم کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کے لیے 12 اور 13 اگست کو چوائس لاکنگ سہولت دستیاب رہے گی۔ اس دوران 13 سے 16 اگست کے درمیان پہلے راؤنڈ کی سیٹوں کا الاٹمنٹ ہوگا۔ نتائج کا اعلان 17 اگست کو ہوگا۔ سیٹ الاٹ کیے گئے امیدواروں کو 18 سے 22 اگست کے درمیان متعلقہ اداروں میں رپورٹ کرنا ہوگا۔ اس عمل میں حصہ لینے والے ادارے رپورٹ کیے گئے امیدواروں کے ڈیٹا کی 23 اگست کو تصدیق کریں گے۔ کاؤنسلنگ کے عمل کی شروعات سے پہلے وزارت صحت نے مرحلہ وار ٹیوٹوریل ویڈیوز جاری کیے ہیں تاکہ امیدوار ایم سی سی پورٹل پر رجسٹریشن، متبادل فراہم کرنا اور سیٹ الاٹمنٹ کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں۔ ریشو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
13: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کے امتحان میں مبینہ بدعنوانیوں پر طلبہ کے مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ رانچی میں ہزاروں امیدوار جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں پچھلے 12 دن سے غیر معینہ مدت کا احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
15: مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ تیز دھوپ میں بھی مظاہرے کی جگہ پر رہنے کے باوجود انہیں پینے کے پانی، خوراک اور بیت الخلاء جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ دفاع کے مرکزی وزیر مملکت اور رانچی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سیٹھ نے اس معاملے پر اپوزیشن کی خاموشی پر نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے اس معاملے میں مکمل بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے اور اب تک حکومت کے کسی بھی نمائندے نے احتجاج کر رہے طلبہ سے ملاقات نہیں کی ہے۔ مظاہروں کے مقام پر بنیادی سہولتوں کی کمی پر اظہار خیال کرتے ہوئے گوڈا کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے بھی ہیمنت سورین کی قیادت والی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے امتحانات کے دوران سیٹوں کی فروخت کا سنگین الزام لگاتے ہوئے بھرتی کے عمل کا نظم کرنے کے حکومت کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے۔ طلباء نے پیپر لیک اور احتجاج کے مقام پر بنیادی سہولتوں کے فقدان کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج جاری رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
13: اتر پردیش سرکار ریاستی روڈ ویز کی بسوں میں 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کی خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
14: اتر پردیش حکومت کے پہلے سپلیمنٹری بجٹ میں مالی سال 2026-27 کے دوران اتر پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی پہل کو پورا کرنے کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے لوک کلیان سنکلپ پتر میں اس پہل کا وعدہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے ذریعے ریاست بھر کی لاکھوں معمر خواتین شہریوں کو مالی طور پر راحت ملے گی اور وہ مذہبی، سماجی، خاندانی اور صحت دیکھ بھال سے متعلق ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سفر کر سکیں گی۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
13: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج آسام اور میگھالیہ میں موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آج اروناچل پردیش، بہار، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش میں کل تک بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آج صبح دلی کے بعض حصوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی۔ آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں آج عمومی طور پر آسمان ابر آلود رہے گا اور متعدد مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج کیرل میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس کی شدت گزشتہ روز کے مقابلے کم رہنے کا امکان ہے۔ کاسرگوڑ، کنور، وائناڈ، کوزیکوڈ، ادوکی، ایرناکولم، کوٹائم، الپویا اور پٹنم تھٹا اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بعض مقامات پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے باقی پانچ اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کل کے لیے بھی ریاست کے تمام اضلاع میں بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آج صبح تک ریاست کے جنوبی اضلاع کے کئی علاقوں میں 15 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں 17 اگست سے 23 اگست کے درمیان منعقد ہونے والی بی ڈبلیو ایف ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے دوران سابق چیمپئن پی وی سندھو کے خواتین کے سنگل مقابلوں میں درجہ بندی 9 ہے۔ ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں بھارت کی سب سے اعلیٰ درجی بندی مردوں کے ڈبلز میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کو ملی ہے، جو 5 ہے۔ سابق عالمی چیمپئن اور کانسے کا تمغہ جیت چکے لکش سین مردوں کے سنگلز میں 14 نمبر پر، جبکہ دھرو کپیلا اور اولمپک کھلاڑی تنیشا کریسٹو مکس ڈبلز میں 15 نمبر پر ہیں۔ تائپے اوپن میں خواتین کے سنگلز کی چیمپئن تنوی شرما اور سابق عالمی نمبر 1 کدامبی شری کانت سمیت بھارت کے سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی آج سے جنوبی کوریا کے آسان میں کوریا ماسٹر سپر 300 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ راشٹرپتی بھون میں موسم گرما کے دوران سالانہ طور پر امرت ادیان اس مہینے کی 16 تاریخ سے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ لوگ امرت ادیان کی سیر 15 ستمبر تک کر سکتے ہیں۔ اس دوران یہ باغ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہے گا اور اس میں سپہر 5 بجے تک داخل ہوا جا سکے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
15: شکریہ اسلم۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، بھارت اپنی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا۔ وزارت خارجہ نے نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز اور دکھاوا قرار دیا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور ازبکستان کے تاریخی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیاں اس طرح ہیں، یو پی حکومت نے اسمبلی میں 59,000 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا، دارالحکومت کا اے کیو آئی مسلسل 5ویں دن اطمینان بخش رہا۔
13: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت کا پرچم بردار جہاز بحیرہ احمر میں حملے کے بعد غرق ہو گیا ہے۔ 13 بھارت

0: और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के लिए नवा मकाम जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पांचवा मकाम हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, सुबह के 8:45 हुए हैं और अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गाना पेश है फिल्म उड़ान से, जिसे गाया है अमित त्रिवेदी और साथियों ने। इसे लिखा है अमित भट्टाचार्य ने और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना है फिल्म ये जवानी है दीवानी से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतकार हैं प्रीतम।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है और अगला गाना पेश है फिल्म ईविल रिटर्न से, जिसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने और बोल लिखे हैं शकील आजमी ने, संगीतकार हैं चिरंतन भट्ट।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुबह के 9 बजने को है और कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से, और राज्य के पांचों विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक के 3500 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत किया जाएगा। बजट 2026-27 की घोषणा के तहत स्वीकृत इन परियोजनाओं से आवागमन अधिक सुगम होगा और दूर दराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से किसानों, युवाओं, उद्यमियों और आमजन को सुविधा मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। राज्य के 84 शहरों में नगरीय आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर करीब 9500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के पांचवें चरण के तहत होने वाले इन निर्माण कार्यों की जानकारी देने के लिए आज से संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। ये संवाद कार्यक्रम 11 अगस्त तक चलेंगे। इस दौरान प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक भी लिया जाएगा। गौरतलब है कि पांचवें चरण में अपशिष्ट जल और ठोस प्रबंधन के लिए शहरी यातायात सुधार और विरासत संरक्षण सहित अन्य कामों के जरिए इन शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपशिष्ट जल प्रबंधन किया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू हो गई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस प्रयोगशाला में आयुर्वेदिक दवाओं की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इससे नकली और मिलावटी दवाओं की पहचान आसान होगी और जांच के लिए दूसरे राज्यों की प्रयोगशालाओं पर निर्भरता समाप्त होगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यहाँ यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर सहित 6 अत्याधुनिक मशीनें स्थापित है। आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट का भी पता चलेगा। शुरुआत में किडनी, लीवर, हड्डियों व पाचन तंत्र से जुड़ी दवाओं की जांच होगी। भारी वस्तुओं जैसे शीशा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम के अवशेषों का विशेष परीक्षण किया जाएगा। कुछ महीनों में विश्वविद्यालय की अपनी प्रयोगशाला को भी इससे जोड़ा जाएगा। आगे चलकर कैंसर, आर्थराइटिस और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी दवाओं की भी जांच होगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाजार से दवा नमूनों की नियमित जांच की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में 587 दवा नमूनों की जांच की गई। जांच में 579 नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप मिले, जबकि 8 नमूने अमानक पाए गए। इनमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और अन्य दवाएं शामिल हैं। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जयपुर से रामेश्वरम के लिए दूसरी विशेष ट्रेन कल रवाना की गई। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से जयपुर संभाग के 970 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा पर गए हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 30 अधिकारियों और कर्मचारियों का दल भी उनके साथ गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को सुरक्षित और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा कराई जा रही है।
2: ये मैं मानती हूँ बहुत बड़ा काम हुआ है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये वरिष्ठ जन है, इनके बारे में आजकल कोई नहीं सोचता, परिवार जन भी नहीं सोच पाते, सब इतने व्यस्त रहते हैं के बारे में सरकार ये कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी जो तीर्थ स्थल है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जाएंगे, उसके लिए पूरी व्यवस्था। और अगर आप देखेंगे इस ट्रेन में भोजन की व्यवस्था है, फिर बीच में अगर कहीं पर स्टॉपेज होगा तो वहाँ रहने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, बाकी सारी व्यवस्थाएं, ताकि वो सुरक्षित अपने स्थान पे अपनी अपने तीर्थ पे पहुंचे, वहाँ दर्शन करें और वापिस सुरक्षित पहुंच जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे नई रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। संभावना जताई जा रही है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मेडिकल परामर्श समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। उम्मीदवार कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किया जाएगा। जो उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं उन्हें 18 से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में मदद करने के लिए चरण दर चरण ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 1800-102-7637 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के 5 विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत कनिष्ठ अभियंता के 869, कनिष्ठ लेखाकार के 371 और कनिष्ठ सहायक तथा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के 765 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयन के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट और हेल्पलाइन पर उपलब्ध गई है। जैसलमेर में युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप संवर्धन कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया के तहत आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं और संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कार्यशाला के माध्यम से जिले में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान स्टार्टअप इंडिया एवं आईआईटी मान्यता प्राप्त प्रक्रिया, राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, वित्तीय सहायता, निवेश के अवसर, व्यवसाय मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया, नवाचार प्रबंधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल तकनीकों के उपयोग तथा व्यवसाय विस्तार की रणनीतियों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों के लिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू श्रेणियों का संशोधित वर्गीकरण लागू कर दिया है। मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि ये वर्गीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृतियों और सहमति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि संशोधित सूची में सीमेंट, डेयरी, अस्पताल, होटल, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, निर्माण परियोजनाओं और औद्योगिक पार्क सहित कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू की गई है। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से और राज्य के 5 विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो जयपुर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1-800-1234 या 1-800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1-800-1234 या फिर 1-800-2100 पर और पाए समाधान।
4: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
5: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
4: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
5: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
4: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
5: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। सुबह के 9:15 हुए और श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो जयपुर। मैं हूं आपके साथ जानवी ठुकराल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत की जो बिना शोर किए बिना दिखे हमारी खुशियों को धीरे धीरे हमसे छीन लेती है। वो आदत है तुलना करने की आदत। कभी आपने गौर किया है, हम अपनी जिंदगी को जीने से ज्यादा दूसरों की जिंदगी को देखने में लगे रहते हैं। हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करने लगती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अपनी ही राहों में उलझे रहते हैं हम, अपनी ही राहों में उलझे रहते हैं हम, दूसरों की मंजिलें गिनते गिनते खो जाते हैं हम। क्यों, सही है ना? लीजिए सुनिए पहला नगमा

फिल्म दिल चाहता है से। इसको गाया है शान और के, साथ ही कुछ और साथियों ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है और आज के हेलो जयपुर के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो कि है तुलना की आदत। बचपन से ही तुलना शुरू हो जाती है। देखो शर्मा जी का बेटा, उसने इतना अच्छा कर लिया, तुम क्यों नहीं? और यहीं से हमारे अंदर एक बीज बो दिया जाता है। हर चीज को तुलना के तराजू में तोलना होता है। धीरे धीरे ये आदत हमारी सोच बन जाती है। हम अपनी मेहनत नहीं देखते, हम अपनी यात्रा नहीं समझते, बस दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस आदत को और भी बढ़ावा दे दिया है। हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाना चाहता है और हम उसे पूरी सच्चाई मान लेते हैं। किसी की ट्रैवल स्टोरी, किसी की सफलता की पोस्ट, किसी की परफेक्ट लाइफ, और फिर हम सोचते हैं मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है। ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे इस मुद्दे पर और आगे बात करेंगे इस पर लगातार। तब तक के लिए सुनिए ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: तुलना हमारी खुशी को दो तरह से ख़त्म करती है। पहला, हम खुद को कम समझने लगते हैं, और दूसरा कि हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। जब हम किसी और से बेहतर होते हैं तो अहंकार बढ़ता है, और जब हम खुद को पीछे पाते हैं तो आत्मविश्वास टूटता है। दोनों ही स्थिति में हम संतुलन खो देते हैं। न खुद से जीत पाए, न किसी से हार पाए। तुलना की इस दौड़ में हम बस थकते ही जाएं। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। हर किसी का सफर अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है, तो फिर तुलना किस बात की? अगर एक फूल गुलाब है तो दूसरा कमल है, और दोनों की खूबसूरती अपनी अपनी जगह है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। आज हम बात कर रहे हैं तुलना की, तुलना से बाहर कैसे निकलें। अब सवाल ये है कि ये आदत से हम कैसे बाहर आएं। आप कहाँ से शुरू हुए थे और आज कहाँ हैं, ये देखिए। छोटी छोटी जीत भी मायने रखती है और उसका ध्यान रखें। इंस्पिरेशन और कंपैरिजन में बहुत अंतर होता है, दोनों को एक बिल्कुल भी ना माने। खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो हर दिन, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो हर दिन, दूसरों से नहीं खुद से ही करो ये जंग, कर हर मैदान फतेह। ये गाना बिल्कुल प्रॉपर था, क्यों है ना? असली खुशी तब आती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, जब हम अपनी कमियों के साथ ही खुद से प्यार करते हैं। खुशी बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, लेकिन तुलना हमें हमेशा बाहर ढूंढने पर मजबूर कर देती है।

ऐसे ही हम और कई सारी बातें करेंगे हमारे हेलो जयपुर के सेगमेंट में। तब तक के लिए सुनिए ये प्यारा सा गाना फिल्म आयशा से।

अगर तुलना की बात की जाए, पति और पत्नी का रिश्ता तुलना का नहीं, समझ और सहयोग का रिश्ता है। जब इस रिश्ते में तुलना की जाती है तो अनजाने में अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं, और वही अपेक्षाएं कई बार मतभेद और झगड़ों का कारण बन जाती हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव, सोच और काम करने का तरीका अलग होता है। पति और पत्नी दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ होती हैं। यदि हम एक दूसरे की तुलना करने लगते हैं, किसने क्या किया, किसने कितना किया, तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है, जो प्रेम और अपनापन कम कर देती है। एक स्वस्थ संबंध वही होता है जहाँ तुलना की जगह सम्मान हो, जब दोनों एक दूसरों की भावनाओं को समझें, तभी रिश्ता मजबूत होता है। इसलिए तुलना से बचना और सहयोग को बढ़ावा देना ही एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की कुंजी है।

अब जरा समझते हैं कि ये तुलना की आदत अलग अलग उम्र में कैसे हमारी खुशियों को प्रभावित करती है। एक छोटा बच्चा, उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, लेकिन जब उसे बार बार कहा जाता है कि देखो तुम्हारी क्लास में रीना ने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो क्या होता है, वो बच्चा धीरे धीरे अपनी खुशी खो देता है। उसे ड्राइंग से प्यार नहीं रहता, क्योंकि अब वो उसे खुशियों के लिए नहीं बल्कि तुलना से देखता है। एक स्टूडेंट है और उसने बहुत मेहनत करी, अच्छे नंबर भी लाता है, लेकिन जब घर पर या दोस्तों से तुलना होती है तो वहीं दिक्कतें चालू हो जाती हैं। उसकी मेहनत की खुशी खत्म हो जाती है और उसकी पहचान सिर्फ नंबरों तक सीमित रह जाती है। अंकों में उलझकर खुद को भूल जाते हैं और दूसरों की दौड़ में अपने कदम रुक जाते हैं। माता पिता भी इस जाल में फंस ही जाते हैं और बच नहीं पाते। उनके बच्चे कितने सफल हैं, उनका घर कितना अच्छा है, उनकी लाइफ कितनी परमानेंट है और कितनी परफेक्ट है, और फिर अनजाने में वही तुलना अपने बच्चों पर भी डाल देते हैं। लेकिन सच ये है कि हर परिवार की कहानी अलग होती है, हर संघर्ष अलग होता है। एक शिक्षक अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाता है, लेकिन जब उसकी तुलना किसी दूसरे शिक्षक से करी जाती है, वो ज़्यादा पॉपुलर है, उनके बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो उसका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। जबकि हर शिक्षक की अपनी एक शैली

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल और आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत ज़रूरी है चर्चा करना, जो कि है तुलना। इस सृष्टि में सब कुछ अपूर्ण है। बीज वृक्ष बनने की प्रतीक्षा में है, नदी सागर से मिलने की यात्रा में है, चांद अपनी कलाओं से पूर्णिमा तक पहुंचता है, फूल खिलता है फिर मुरझा जाता है, मनुष्य जन्म लेता है, सीखता है फिर भी कुछ नहीं जान पाता है। प्रकृति का प्रत्येक कण ये बताता है कि अपूर्णता ही सृष्टि का स्वभाव है, केवल एक ही पूर्ण है, वो है परमात्मा। जिसका न आदि है ना अंत, जिसमें कोई कमी नहीं है कोई अभाव नहीं, जो स्वयं पूर्ण है और

जिसे यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। मनुष्य ही सबसे बड़ी भूल ये करता है कि वह सोचता है कि वह पूर्ण है, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वह पूर्ण परमात्मा की शरण में अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर लेता है। लीजिए सुनिए हमारा अगला गीत, एक प्यारा सा नगमा।

तो श्रोताओं, आज का संदेश बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। तुलना की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि यही आपकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अपनी जिंदगी को अपनाइए, अपनी यात्रा को सराहिए और खुद से प्यार करना सीख जाइए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। सुबह के 10 बजने को श्रोताओं, आज का ये वाला सेगमेंट यही ख़त्म होता है, जहां हमने बात करी तुलना की खराब आदत की। जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम हेलो जयपुर।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
4: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
3: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
4: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
3: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
4: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामीर चैनल है और अब आप सुनेंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम यायावर।

आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी नगरी की ओर जहाँ हर गली में भक्ति है, हर हवा में शिव का नाम है और हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। आज की हमारी यात्रा है उज्जैन, महाकाल की नगरी।

उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। प्राचीन समय में इसे अवंतिका कहा जाता था और यह सप्तपुरियों से शामिल है जिन्हें मोक्षदायिनी नगरी माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और समय मापन का प्रमुख केंद्र था। महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन ही थी, जिनके नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ये शहर कालिदास जैसे महान कवि और विद्वानों की कर्म भूमि भी रही है। ऐसे ही हम और चर्चा करेंगे उज्जैन की, तब तक के लिए सुनिए प्यारा सा गीत।

आज हम बात कर रहे हैं यायावर के सेगमेंट में एक प्यारी सी जगह की, जो कि है उज्जैन। यहाँ बहने वाली शिप्रा नदी के तट पर हर 12 वर्षों में भव्य कुंभ मेला आयोजित होता है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के सबसे प्रमुख स्थल महाकालेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव महाकाल रूप में विराजमान है, अर्थात समय के स्वामी।

इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे साथ। पर अब सुबह के बज चुके हैं 10:10 और समय है विश्व दर्पण का।

0: आलोचना के बाद विदेशी मीडिया पर पाबंदी और कड़ी की और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय नागरिक थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: भारत आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं।
2: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी, जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती हुई विश्व व्यवस्था में अविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने वाला बहुपक्षवाद समय की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने 17 देशों से आए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया पर अपना नियंत्रण कड़ा कर दिया है। इसके लिए जारी नए नियमों के अंतर्गत विदेशी पत्रकारों को देश के अधिकांश हिस्सों से रिपोर्टिंग करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
3: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन और दमनकारी कार्रवाई से निपटने के तरीके को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच के दायरे में है। मानवाधिकार समूहों और प्रेस स्वतंत्रता संगठनों ने पत्रकारों और इंटरनेट पर प्रतिबंध तथा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ

0: बल प्रयोग को लेकर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी कार्रवाई की कवरेज को लेकर हाल में कई समाचार माध्यमों पर प्रतिबंध लगा दिया था। नए नियमों के अंतर्गत विदेशी पत्रकार केवल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ही स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। अन्य किसी भी स्थान पर रिपोर्टिंग के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पाकिस्तान से प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच कराने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने के लिए अमरीका और ईरान के बीच जारी बातचीत में प्रगति की घोषणा के बाद तेल की कीमतें 3 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान कम होने की संभावना बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल लगभग 5% गिरकर $80 प्रति बैरल से नीचे आ गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ओमान से संबंधित बातचीत में प्रगति हुई है। श्री बेसेंट ने कहा कि समझौता शीघ्र हो सकता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ सीधे बातचीत से इनकार किया है। ईरान का कहना है कि इस बातचीत में मध्यस्थ के रूप में ओमान से वार्ता जारी है। कतर ने कहा कि राजनयिक प्रयास जारी है लेकिन अमरीका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत की योजना नहीं है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवीं वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनीषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप में 5 स्पर्धाओं में भारत के 2-2 खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की ईशा रानी बरुआ कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज ईशा रानी ने दक्षिण कोरिया की ली सो ही को 18-21, 21-15 और 7-21 से हराया। प्रतियोगिता में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पुरुष डबल्स के पहले दौर में कल कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने जीत हासिल की। हालांकि अच्युतादित्य राव, डोड्डा वरपू और अर्जुन रेड्डी पोचाना को हार का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट में भारत का 33 सदस्यीय दल भाग ले रहा है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका के यूजीन हेवर्ड फील्ड में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत डूबा। सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारत आज से भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 3री बैठक की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक भुवनेश्वर। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर हुई दमनकारी कार्रवाई की आलोचना के बाद विदेशी मीडिया पर पाबंदी कड़ी की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवी वरीयता हासिल। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। FM बैंड 101.2 MHz तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं, आज के हेलो जयपुर के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं यायावर यानी कि उज्जैन की। अब हम चलते हैं राम घाट की ओर, जहाँ शिप्रा नदी बहती है। यहाँ की संध्या आरती अत्यंत मनमोहक होती है। दीयों की पंक्तियाँ, घंटियों की ध्वनि और भक्ति का वातावरण मन को शांति प्रदान करता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ आकर अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था, इसलिए इसका नाम राम घाट पड़ा। भगवान काल भैरव को शिव का रक्षक रूप माना जाता है। उज्जैन नगरी की रक्षा का दायित्व इन्हीं पर माना जाता है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हम बात कर रहे हैं काल भैरव मंदिर की। यहाँ का वातावरण गहन और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है।

अब चलते हैं हर सिद्धि माता मंदिर, जो शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि सती माता के शरीर का एक भाग यहाँ गिरा था, जिसके कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ के विशाल दीप स्तंभ विशेष अवसरों पर सैकड़ों दियों से सजाया जाता है, जो अत्यंत आकर्षक दृश्य दिखाता है।

सावन के महीने में उज्जैन की भव्यता और भी बढ़ जाती है। हर सोमवार को यहाँ शाही सवारी निकाली जाती है, जिसमें भगवान महाकाल नगर भ्रमण करते हैं। सड़कों पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और हर हर महादेव के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालु भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ जल अर्पित करने आते हैं। श्रावण मास प्रारंभ हुआ था 30 जुलाई 2026 को और अब समाप्त होगा 28 अगस्त। श्रावण मास शिव शक्ति का सर्वोत्तम समय माना गया है। मान्यता है कि इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है तथा जीवन में सुख, शांति और संतुलन आता है।

Bop, bop, bop, bop.

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आप।
4: प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमेर चैनल है और आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन की। उज्जैन में क्या देखें, यदि समय हो तो इन स्थानों की यात्रा अवश्य करें। सांदीपनि आश्रम, जहां भगवान कृष्ण, बलराम और सुधामा ने शिक्षा प्राप्त की। चिंतामन गणेश मंदिर, प्राचीन और अत्यंत श्रद्धेय मंदिर। विक्रम कीर्ति मंदिर, सम्राट विक्रम आदित्य और उज्जैन के इतिहास को दर्शाता है। ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और बातें करेंगे उज्जैन की। तब तक के लिए सुनिए गाना।

उज्जैन को भगवान महाकाल की पावन नगरी माना जाता है। यहाँ काल सर्प दोष की शांति के लिए काल सर्प शांति पूजा, काल सर्प यज्ञ तथा अन्य अनेक वैदिक अनुष्ठान श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न कराए जाते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ इन अनुष्ठानों में भाग लेकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिल्म है वॉर और इसे गाया है विशाल दादलानी ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यायावर। हम बात कर रहे हैं आज उज्जैन की। उज्जैन जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है, जब मौसम सुहावना हो और घूमने के लिए अनुकूल मौसम हो। हालांकि सावन का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे विशेष होता है। इस समय मौसम में हल्की बारिश होती है और ठंडापन होता है। गर्मियों में यानी कि अप्रैल से जून में यहाँ तापमान अधिक रहता है, इसलिए उस समय यात्रा थोड़ी कठिन होती है। लीजिए सुनिए अगला गीत, सत्यम शिवम सुंदरम, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट, धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
1: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
0: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2,000 से 5,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
1: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
0: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: उज्जैन को प्राचीन समय में पृथ्वी का केंद्र या अर्थ्स सेंट्रल पॉइंट माना जाता था। यह बात पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और खगोलीय महत्व से जुड़ी हुई है। प्राचीन भारत में उज्जैन को समय और दिशा मापने का मुख्य केंद्र माना जाता था। यहाँ से देशांतर रेखा का हिसाब किया जाता था, यानी कि लॉन्जिट्यूड। भारतीय ज्योतिष और खगोल शास्त्र में इसे प्राइम मेरिडियन यानी कि शून्य रेखा जैसा महत्व दिया गया। जैसे आज दुनिया के लिए ग्रीनविच लंदन है, वैसे ही पुराने समय में भारत के लिए उज्जैन था। लीजिए, प्रस्तुत है आपके लिए अगला गीत और हम यूं ही जुड़े रहेंगे और बात

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की यात्रा उज्जैन की, एक ऐसी नगरी जहां इतिहास, आस्था और संस्कृति एक साथ जीवित है। उज्जैन केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है जहां हर क्षण में भक्ति और शांति का एहसास होता है, विशेषकर सावन के इस पवित्र महीने में। यदि आप भी आध्यात्मिक शांति और ऐतिहासिक गहराई का अनुभव करना चाहते हैं तो उज्जैन की यात्रा अवश्य करें। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर। कार्यक्रम यायावर में हमने बात करी उज्जैन की। सुबह के 11 बजने को है और हम अगला सेगमेंट चालू करेंगे जिसका नाम है फरमाइशी फिल्म संगीत, जिसमें हम बजाएंगे आपके मनपसंद गाने। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2200600 पर या फिर 2200700 पर। हमारा STD है 0141। कॉल करिए और बजवाइए अपना मनपसंद गीत। तब तक के लिए सुनिए ये गाना।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है और अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसको गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल लिखे हैं मजरू ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गाना सुनना चाह रहे हैं शेख हैदर खान जी रतलाम से।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी गाने। अपना मनपसंद गाना सुनने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 2200600 पर और हमारा एसटीडी है 0141। अगला गाना हमारा जो अब बजने जा रहा है वो है फिल्म एक बार फिर से, जिसे गाया है भूपेंद्र पौडवाल ने। इसके बोल लिखे हैं विनोद पांडे ने और संगीतकार हैं रघुनाथ सेठ।

ये प्यारा सा गीत सुनना चाह रहे थे मोहम्मद रफीक मूंगड़ा बलोतरा से। अगला गीत सुनना चाहते हैं बशीर अहमद, फिल्म है धड़क और इसे गाया है अलका याग्निक और अभिजीत ने। इसके बोल लिखे हैं समीर ने और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। अगला गाना सुनना चाह रहे हैं आरती शर्मा, फिल्म का नाम है आराधना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं SD बर्मन।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है और अगला गाना सुनना चाहते हैं भूपेंद्र कुमार गुप्ता कोटा राजस्थान से। फिल्म का नाम है प्यार का सागर और इसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने। इसके बोल लिखे हैं असद भोपाली ने और संगीतकार हैं रवि।

अगला गीत पेश है फिल्म जीवन मृत्यु से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गाना सुनना चाहते हैं डालचंद कोहली। लीजिए सुनिए आपका मनपसंद गाना।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमिर चैनल है और आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत। अगला गाना सुनना चाहते हैं नारायण पटेल जी जौहरी बाजार से। फिल्म का नाम है जीने की राह, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

अगला गाना पेश है फिल्म तीसरी मंजिल से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे गाया है मजरू ने और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। ये गाना सुनना चाहते हैं मोहम्मद सिकंदर जी डीडवाना से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स। सुबह के 11:45 हुए हैं और हम बात कर रहे हैं आज हेलो जयपुर में फरमाइशी गाने की। अगला गाना सुनना चाहते हैं सैताराम भील जी, फिल्म है दिल ए नादान और इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। इसके बोल लिखे हैं नक्श लालपुरी ने और

अगला गाना सुनना चाहते हैं छाजू राम नायक जी कोटपुतली से। फिल्म है देश प्रेमी, जिसे गाया है किशोर कुमार और अमित कुमार ने। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: लल्लू की अम्मा। अरे कहाँ हो भाई? अरे जल्दी सी खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
1: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाई देती हूँ।
0: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
1: फिर भी लल्लू के बाबू, खाना खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
0: वो भला क्यों?
1: साबुन से हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
0: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आज तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
1: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे, और लल्लू के बापू मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
2: देखिए, सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हाथ धोने के बाद अपनी शर्ट या पैंट से हाथ पोंछ लेते हैं, और घर की महिलाएं साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ लेती हैं। यदि ऐसे हाथ पोंछा जाए तो हाथ धोने का कोई फायदा ही नहीं है। धोने के बाद हाथ साफ कपड़े से पोंछे जाने चाहिए।
3: खाने से पहले हाथ धो, शौच के बाद हाथ धो,
4: हाथ धो, हाथ धो अपने गंदे हाथ।
5: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर। हमने बजाए आपके फरमाइशी गाने। ये सेगमेंट अब यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर, आकाशवाणी जयपुर जमीर का ये आमिर चैनल है। 12 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
4: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
1: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
5: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
6: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
7: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर दोपहर के 12:05 होने को हैं। अब प्रस्तुत है रूपरेखा में आज होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

चार बजे आप सुनेंगे स्वर मंजरी। कलाकार होंगी चेतना पाठक, ख्याल गायन और राग हेमावती एवं पूरिया के। शाम 5 बजे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी प्रस्तुत होगा।

रूपरेखा मैत्री जानकारी आज प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम होगी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमीर चैनल है। दोपहर के 12:10 हुए हैं, आप सुनते हैं लोक संगीत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं लोक संगीत। साथ में कलाकार हैं संतोष कंवर करनावट पार्टी। सुनते हैं इसी क्रम में अगला एक और गीत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं लोक संगीत कलाकार हैं संतोष कंवर करनावट पार्टी। सुनते हैं इसी क्रम में अगला एक और गीत।

लोक संगीत सुन रहे हैं आप और कलाकार हैं संतोष कंवर पाटी। सुनते हैं इसी क्रम में अगला एक और गीत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं संतोष कंवर करनावट पाटे। सुनते हैं अगला एक और गीत इसी क्रम में।

अभी सुन रहे थे आप लोक संगीत। कलाकार को सुना संतोष कंवर कर्नावट पार्टी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। 12:40 हुए हैं, अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में अभी आपने ये गीत सुना, ये जवानी है दीवानी फिल्म से बदतमीज दिल, वैनी दयाल और शेफाली के स्वरों में अमिताभ भट्टाचार्य के गीत लिखे हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने। सुनते हैं एक और गीत इसी क्रम में, फिल्म बचना ए हसीनों से केके और शिल्पा राव के स्वरों में।

सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म जूम बराबर जूम से राहत फ़तेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर के स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत सुनते हैं इसी क्रम में फिल्म रेड से राहत फतेह अली खान के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के DTH चैनल पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। आरबीआई ने रेपो दर में बदलाव नहीं करते हुए 5.25% पर ही बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह भी किया। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की आज 7वीं सालगिरह है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन संसद ने अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को खत्म कर दिया था जिनके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था। इससे पहले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था। ये एक अस्थायी प्रावधान था जिसने राज्य को

0: विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने NCR में अतिरिक्त नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगर बोर्डों और शहरी स्थानीय निकाय को गंभीर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की शक्तियां प्रदान की हैं। इनमें अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और नीमराणा सहित NCR के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि इसका उद्देश्य धूल नियंत्रण उपायों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, ताकि निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से होने वाले कण प्रदूषण को कम किया जा सके। नागौर जिले के डेगाना उपखंड में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक ही दिन में 1,00,000 पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। भैरुंदा और डेगाना पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों ने जन सहभागिता से ये लक्ष्य पूरा किया है। अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में 4,000 पौधे लगाए गए। मुख्य कार्यक्रम सुरपुरा, निम्बुला बिस्वा और पिरामिड वैली स्थित तेजाजी हरसोर परिसर में आयोजित हुआ। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बरसात हुई। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डीग जिले के रारहे में सबसे अधिक 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज 17 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से उत्तर पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 7 और 8 अगस्त को भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित राजस्थान समान सिविल संहिता UCC पर आमजन से ऑनलाइन सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। राजस्थान के मूल निवासी निर्धारित पोर्टल या QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने नागरिकों से अधिक संख्या में इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। प्राप्त सुझावों पर विचार कर प्रस्तावित विधेयक को और अधिक व्यापक, प्रभावी और जनहितकारी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप ये गीत सुन रहे हैं फिल्म कलयुग से। आतिफ के स्वर में सैयद कादरी के बोल लिखे हैं और गौहर मुमताज का संगीत है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत सुनेंगे फिल्म किस्मत कनेक्शन से। आतिफ असलम और अलका याग्निक के स्वरों में सैयद कादरी के बोल हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत सुनेंगे फिल्म रमैया वस्सावैया से। आतिफ असलम और श्रेया घोषाल के स्वरों में प्रिया पांचाल के बोल लिखे हैं और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

इश्क विश्क फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, कुमार सानू और अलीशा चिनाई के स्वरों में, समीर के बोल थे और संगीत अनु मलिक ने दिया। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब सुनते हैं कार्यक्रम पनिहारी।

पणिहारी कार्यक्रम रे बाट जोता सगला श्रोताओं ने आपकी बेन तमर हाड़ा को घणो घणो राम राम सा। माँ और शिशु को अटूट बंधन प्यार विश्वास और अपनापन, हर माँ को यो अधिकार, बच्चा को भी पहलो उपहार। आओ मिलकर दाएं यो संदेश, स्वस्थ बने आपनो परिवेश, स्तनपान ने देवा सम्मान, यो छे बच्चा को सच्चो वरदान। जी हाँ श्रोताओं, आज आप बात करेला स्तनपान सप्ताह जिन्हें आप मना रहे हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। और इस साल 2026 को जो लक्ष्य है वो छे स्वस्थ प्रणाली और समुदाय ने मजबूत करनो छे। स्तनपान करवा सो माँ और शिशु दोनों के लिए के फायदेमंद होवे छे। प्रसव की तुरंत बाद निकलवा वालों पीलो गाड़ो दूध ने भरपूर एंटीबायोटिक्स होवे छे जो बच्चा ने संक्रमण से बचावे छे। माँ को दूध बच्चा के लिए सबसे सुपाच्य और संपूर्ण आहार होवे छे। यू शिशु ने दस्त, निमोनिया और एलर्जी जैसी बीमारियों से बचा के रखे छे। साथ ही मौजूद आवश्यक फैटी एसिड बच्चा ने दिमागी विकास में बढ़वा में सहायता करे छे। श्रोताओं, स्तनपान से शिशु ने तो लाभ हो गई छे, साथ ही जो माँ छे उन्हें

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

0: अरे अब सुना यहाँ की यह बातचीत। कार्यक्रम चल रहे हैं पढ़िहारी और आज आपने सागे है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली शर्मा, जो आपने जानकारी देवेली स्तन कैंसर के बारे में। या ई तरीका की परेशानी है जो कि महिलावन ने आजकल थोड़ी ज़्यादा देखवा में आ रही है, तो बड़ा सारा सवाल है आपने मन में और आपनी जो बहना कार्यक्रम सुन रही है वहाँ के मन में। तो सबों पहली आपको स्वागत करा, राम राम सा।
1: राम राम सा।
0: अब जब बात चल रही है स्तन कैंसर की और इस समय या ज़्यादा देखो जा रहे है, तो महिलावां जो अपनी बहना है वह की तरीका से इन्हें पहचाने ई के बारे में बताओ सा।
1: देखिए, सबसे पहले तो ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर में से अगर कोई नंबर एक पे है तो वह है ब्रेस्ट कैंसर, जिसे हम स्तन कैंसर कहते हैं। कैंसर किसी भी कैंसर की तरह से, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी जो हमारी खुद की शरीर की कोशिकाएं हैं, जो हमारे स्तन की कोशिकाएं हैं, वो अनियमित तरीके से बढ़ने लगती हैं और बढ़ते बढ़ते वो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाती हैं, जिसे वो हम कैंसर का रूप कहते हैं। इसके बाद अगर देखा गया है कि पिछले 2 दशकों में ब्रेस्ट कैंसर में 50% बढ़ोतरी आई है, कैंसर के पेशेंट में 50% बढ़ोतरी आई है, तो और जो मृत्यु दर है, अगर हम 1 लाख मरीजों की बात करें, अगर 1 लाख महिलाओं की बात करें, तो उन 1 लाख महिलाओं में से 250 महिलाएं ऐसी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, और उनमें से 50% में अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पहचानने के लिए सबसे पहले हम किसी व्यक्ति विशेष को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें कैंसर नहीं होगा, या तुम कुछ ऐसा कर लो कि तुम्हें कैंसर नहीं होगा। ये किसी को भी हो सकता है। इसका रिस्क जितना आपको है उतना ही मुझे भी है। तो इसीलिए इसको जल्दी पहचानने के लिए, अगर आपको अपने शरीर में, अपने ब्रेस्ट में कहीं पे भी गांठ कहीं महसूस होती है, सबसे पहला लक्षण की बात अगर हम करें तो इसमें पहला लक्षण है गांठ। अगर आपको स्वयं द्वारा एक गांठ महसूस होती है या ब्रेस्ट के आकार में बदलाव महसूस होता है, और वो गांठ भले ही दर्द ना करे, अक्सर हम लापरवाही कर जाते हैं कि दर्द नहीं कर रही इसलिए हम डॉक्टरी सलाह नहीं लेते हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं, 50% से ज़्यादा केसेस के अंदर यह जो कैंसर की गांठ होती है ये दर्द नहीं करती है। तो अगर गांठ है, अगर बगल के अंदर भी गांठ जैसे महसूस है, अगर आकार बदल रहा है, अगर आपके स्तन के निप्पल में से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, कोई पानी आ रहा है, या सफ़ेद पानी या लाल या हरे रंग का, तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लीजिए। या निप्पल अंदर की तरफ खिंच रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ लक्षण हमारी शरीर देता है हमको, जिससे कि हमें तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। देखिए, कुछ हम चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि किन महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है या नहीं। जैसे वो महिलाएं, जैसे अगर हम देखते हैं तो पुरुष में भी स्तन होता है, पर पुरुष की तुलना में महिलाओं के अंदर स्तन का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। तो महिला होना अपने आप में ही एक रिस्क है। दूसरी बात, यदि उम्र ज़्यादा है, अक्सर ये देखा गया है कि 40 से 50 की उम्र से अधिक महिलाओं के अंदर स्तन कैंसर ज़्यादा मिला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 40 की कम की उम्र के अंदर स्तन कैंसर नहीं हो सकता, कुछ केसेस के अंदर 35, 38 वर्ष की उम्र में भी स्तन कैंसर पाया गया है, पर बढ़ती उम्र के साथ में रिस्क स्तन कैंसर का बढ़ता है। तीसरी बात, बच्चों की संख्या। जितनी ज़्यादा आपकी डिलीवरी है उतना ही ब्रेस्ट कैंसर से आप बचे हुए हो, पर आज के समय में लेट शादी होना, बढ़ती उम्र में शादी होना, लेट बच्चा पैदा करना, 1 या 2 बच्चे पैदा करना, तो जितनी कम डिलीवरी है, जितनी कम बच्चों की संख्या है, उतना ही आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है बढ़ जाता है। चौथी बात, यदि आप डिलीवरी के बाद में किसी भी कारण से, किसी भी कारणवश स्तनपान नहीं करा पाए अपने बच्चे को, तो यह देखा गया है कि उन महिलाओं जिन्होंने स्तनपान नहीं किया या नहीं करा पाई किसी कारणवश, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ज़रूरी बात है वो है कि हमारी जो जीवन शैली में बदलाव आया है, अभी हमारी जीवन शैली थोड़ी मॉडर्न की तरफ जा रही है, हम पाश्चात्य कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं, हम पैक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पैक करा हुआ खाना ज़्यादा खा रहे हैं, हम प्लास्टिक के अंदर पैक करा हुआ खाना आता है उसे तुरंत पका लेते हैं। अगर आप ताज़ी सब्जियां खाएंगे, ताज़ा भोजन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर से आप बच सकते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फूड, पैक करी हुई सामान, इनके खान पीन से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो वो कारण हैं जो कि बदले जा सकते हैं, जैसे आप अपने खान पान का, व्यायाम का और ये सब चीज़ें बदल सकते हैं। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक केसेस जिसको हम कहते हैं, जेनेटिक कॉजेज जिनको हम कहते हैं, कुछ परिवारों में कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। इसलिए कोई भी मरीज़ हमारे पास जब गांठ लेके आती हैं तो हम सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि आपकी माँ को, बहन को या मौसी को कभी कोई गांठ हुई है या कैंसर कभी डायग्नोस हुआ है। तो कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर की ही कोशिकाएं हैं जो हमको कैंसर के रिस्क की तरफ बढ़ाती हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में ऐसा नहीं है कि परिवार में कैंसर है तो ही आपको कैंसर है, लेकिन अगर है किसी को तो फिर आपको जल्दी जांच कराना है। कल जो स्त्रियां 40 के बाद जांच कराएंगी, अगर उनके परिवार में किसी को कैंसर है, स्तन कैंसर, तो उनको 30 की उम्र के बाद ही अपना चेकअप कराने के लिए आगे आना है। इलाज पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप घर पे भी कैसे पहचान कर सकते हैं। आपका हर महीने जो मासिक धर्म आता है उसके ख़त्म होने के बाद में, उसको पूरा होने के बाद में, आप अपने नहान घर के अंदर ऊपर के वस्त्र उतार कर खुद ही शीशे के सामने खड़े होइए और अपने दोनों हाथों की हथेलियों से एक हाथ सर के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ से उस तरफ की ब्रेस्ट को खुद ही अपने हाथों से दबा के ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से खुद ही चेक करिए, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है जब महिलाएं खुद ही महसूस कर सकती हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है। जहाँ आपको ये महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है, वहीं पे वो एक वार्निंग साइन है, एक चेतावनी है कि आपको जाके राय मशवरा करनी चाहिए। तो 40 के बाद की महिलाओं के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम

0: मेमोग्राफी कहते हैं। तो 40 के वर्ष के ऊपर की महिलाओं को हर वर्ष एक बार अपनी मेमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। क्यों मेमोग्राफी इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ना है। किसी भी कैंसर का इलाज उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। जितना जल्दी हम उसको पकड़ेंगे, उतना जल्दी और अच्छा और पूर्ण इलाज हम कर सकते हैं और महिला को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं।
1: अब अगर कैंसर हो गयो है, कहीं ऑपरेशन से ही इको इलाज संभव है या दवाइयां से भी इलाज हो सके हैं?
0: देखिए, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले आप जो भी डॉक्टर होंगे वो आपकी एक बायोप्सी लेंगे उस गांठ की, ठीक है। मेमोग्राफी के बाद में बायोप्सी लेंगे। बायोप्सी के अंदर वो चाहे तो सुई से ली जा सकती है, जिसको हम नीडल बायोप्सी कहते हैं, या फिर ट्रू कट बायोप्सी, जिसके अंदर हम एक टिश्यू का टुकड़ा ले लेते हैं। जब कंफर्म हो जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है। अगर वो सिर्फ एक स्तन तक नियमित है, तो सिर्फ उस स्तन के हिस्से को निकाल के हटा दिया जाता है और बाकी की ब्रेस्ट बच जाती है। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को बीमारी से ज़्यादा इलाज का डर रहता है कि मेरा पूरा स्तन निकल जाएगा, मैं कैसी दिखूंगी, ऑपरेशन होगा, फिर सेक होगा, कीमोथेरेपी होगी। पर आज के टाइम में हम ये कह सकते हैं कि हर केस के अंदर पूरे स्तन को निकालने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, सर्जरी इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट है। जितनी जल्दी हम इसको पकड़ेंगे, उतना जल्दी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सर्जरी के बाद सेक लेना है या नहीं लेना है, कीमोथेरेपी लेनी है या नहीं लेनी है, उसके लिए वो डिपेंड करेगा कि कैंसर का व्यवहार कैसा है। क्या वो कैंसर तेज़ी से बढ़ने वाला अग्रेसिव ट्यूमर है तो सेक दिया जाएगा। अगर वो शांत रहने वाला ट्यूमर है जो धीरे धीरे बढ़ता है, तो सेक की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इसमें सर्जरी ज़रूरी है। तो आप ये मत डरिए कि मेरी सर्जरी हो जाएगी। आपके स्तन अगर निकल भी जाता है तो नया स्तन भी बनाया जाता है। आपके पेट की चर्बी से ही आपको नया स्तन का शेप देकर बनाया जा सकता है। सिलिकॉन के पैड्स आते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं नया ब्रेस्ट बनाने के लिए। या फिर आपको अगर ऑपरेशन भी नहीं कराना है, तो फिर ऐसी चीज़ें भी हैं कि आप खुद अपने कपड़े के नीचे एक आर्टिफिशियल ब्रेस्ट पहन के रह सकती हैं। तो इसलिए आप इलाज से ना डरें। मुख्य बात यह है कि हमको इसको जल्दी पकड़ना है। जल्दी पकड़ेंगे तो ही हमें सतर्क रहना है, और सतर्क रहेंगे तो ही जल्दी पकड़ेंगे, और जल्दी पकड़ेंगे तो ही पूरा इलाज ले पाएंगे, क्योंकि ये ट्रीटेबल कैंसर है। बहुत ही कम ऐसे कैंसर्स हैं जो कि ट्रीटेबल हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, उसका बात भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी एक ऐसा कैंसर है जिसको हम जल्दी पकड़ना चाहते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें हैं जो हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर ला सकते हैं,
1: हाँ जी,
0: जिससे कि हम यह तो नहीं कहेंगे कि हम कैंसर से बच सकते हैं, पर हाँ, हम खुद अपनी तरफ से उन रिस्क को हटा सकते हैं। जैसे आप ताज़ा खाना खाइए, ताज़ा बना हुआ खाना खाइए, बासा खाना मत खाइए। आप दैनिक दिनचर्या के अंदर महिलाएं व्यायाम नहीं कर पाती हैं, पर फिर भी, हालांकि ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखा गया है, तो इसलिए आप अपने खान पीन का ध्यान रखिए, नियमित रोज़ व्यायाम करिए। यदि आपको कोई भी परेशानी लगती है तो उसे नज़रअंदाज न करें, अपने पति से या अपने बच्चों से, या अपने आसपास कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो भी है वहाँ पे जो भी डॉक्टर बैठते हैं उनको बताइए। स्तन के बारे में बात करने में ग्रामीण महिलाएं शर्माती हैं कि क्या सोचेंगे, कैसे डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्या पुरुष डॉक्टर है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि पुरुष डॉक्टर है या महिला डॉक्टर है, वो इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए देखने के लिए वो ट्रेंड हैं। तो अपनी संकोच, अपनी झिझक को रोकिए और आगे बढ़कर जाइए। अगर आपको कोई स्तन में से कोई स्त्राव होता है, स्तन भारी लगते हैं, स्तन के आकार में बदलाव होता है, या गठान महसूस होती है, या बगल में गठान महसूस होती है, तो उसे जल्द से जल्द एक डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। आजकल मेडिकल साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि प्राइमरी जो पहली सर्जरी है उसके होने के बाद में मरीज़ बहुत जल्दी अपनी दैनिक दिनचर्या में वापस लौट आए हैं। और अगर किसी को सेक की या कीमो की ज़रूरत होती भी है, तो भी वह अपने कामकाजी है चाहे घरेलू महिला है, अपने काम के साथ में भी अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ में भी वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू

0: तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर को जितना जल्दी हम इलाज करेंगे उतने ही अच्छे हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ में एक हम बात करते हैं तो एक गर्भाशय के मुख के कैंसर की एक टीका आया है जो कि वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं हम,
1: जी
0: जो कि हमारे सरकारी व्यवस्था में भी जो हमारी सरकार है उन्होंने भी इसको 8 से 14 वर्ष की बच्चियों के अंदर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जिसको हम कहते हैं HPV वैक्सीन, तो अगले अब आने वाली है जल्द ही। तो आप जिन भी महिलाओं के छोटी बच्चियां हैं 8 से 14 साल की बच्चियां हैं आप उनको सेंटर पे लेके जाएं और उनका टीकाकरण ज़रूर कराएं। ये जल्द ही जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम है उसके अंदर सम्मिलित होने वाला है। तो 8 से 14 साल की बच्चियों को ज़रूर टीकाकरण कराएं। और यदि आप भी जैसे जो विवाहित हैं जैसे 35 वर्ष तक, तो महिलाओं के अंदर भी ये टीकाकरण कराया जा सकता है। 35 से 45 वर्ष की उम्र तक भी हम महिलाओं के अंदर कराते हैं। तो ये आप आगे आइए इस चीज़ के लिए, आप खुद अपने डॉक्टर से पूछिए कि मुझे टीकाकरण करवाना है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लेनी है, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसी डोज हैं, 2 से 3 डोजेज़ होती हैं, आपको 1 महीने के अंतराल में 6 महीने के अंतराल में डोज लेनी होती है। और ये बहुत ही एक रोकथाम का तरीका है। और आप अगर हम सबको टीकाकरण कर दें तो आप मानेंगे नहीं, हम 70% केसेस को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल साहब, यह तो बड़ी चोखी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने कि जो वैक्सीनेशन है या टीकाकरण है वो आपने करवाना है, तो यह सरकारी जो डिस्पेंसरी है वहाँ में जल्दी ही आवा वालों है, तो ई के लिए आप भी तैयार हो जावा और अपनी जो टाबरियाँ हैं वहाँ का स्वास्थ्य ने सही रखवा के लिए भी टीकाकरण करवावा। और ई के सागे ही आपा जो डॉक्टर सोनाली शर्मा स्त्री रोग विशेषज्ञ है आने भी बोलो सारो धन्यवाद देवा।
2: श्रोताओं, आभार आपने जय कुंभेर ने इतनी अच्छी जानकारी स्तन कैंसर पे दिलाई, और याने और डॉक्टर साहब ने भी देवा धन्यवाद। और अब सुन ला एक संदेश।
3: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
2: और श्रोताओं, अब बात कर लेवा हिरोशिमा दिवस री, जो हर साल 6 अगस्त ने मनायो जावे छे। और 1945 में जापान रे हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराए गए थो। ई विस्फोट सुन लाखों लोगों ने जीवन बर्बाद हो गयो थो और घना लोग तो तुरंत मर भी गया था और घना जो कई सालों तक बीमार पड़िया रिया। हिरोशिमा दिवस मनावारो मुख्य जो उद्देश्य है वो छे दुनिया में फिर कदी भी परमाणु बम या हथियारों उपयोग नहीं होवे। युद्ध कदे भी की समस्या सो हल कोई न होया करे है। युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी, बालक, महिला और बुजुर्ग ने होवे है। हिरोशिमा रे लोगों ने घनी पीड़ा सहनी पड़ी पर उन्होंने हिम्मत न हारी। आज हिरोशिमा फिर सू एक सुंदर और विकसित शहर बन गयो। यह बात आपने यो सीखते हुए है कि कठिन समय में भी हिम्मत और मेहनत और एकता से आगे बढ़ सका। और यो दिवस दुनिया भर में लोगों ने शांति रो संदेश देवे, मोमबत्ती जलाई जावे है, 2 मिनट मौन रखे जावे है और युद्ध में मरना वाला जो लोग है वाने श्रद्धांजलि दी जावे है। और यो दिवस आपने सीख देवे कि आपा सभी आपस में प्रेम, भाईचारा, सहयोग और मानवता से रेवा। और यो जो परमाणु हथियार हैं इसू दुनिया भर ने बचा के रखा और यो अपनो फर्ज छे। और अगर दुनिया में शांति रहेली तो अपन भी स्वस्थ और शिक्षित, खुशहाली बनी रहसी। और इनके साथ ही एक और जो जयंती है वह छे है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली जी की पुण्यतिथि भी, तो यहाँ पे भी आप बात कर लेवा। और अब बात करा तो श्रोताओं, गोपीनाथ बरदोलोई जी रो जन्म 6 जून 1990 में होयो हो और बचपन से ही ये पढ़ाई में तेज, ईमानदार और देशभक्त स्वभाव।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पणिहारी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। दोपहर के 2 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे इंग्लिश में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र
1: Good
0: से प्रसारित
1: afternoon. This
0: करेंगे।
1: is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says people's lives in Jammu and Kashmir and Ladakh transformed after abrogation of Article 370. RBI projects the GDP growth at 6.7% this financial year, says economic growth continues to be supported by resilient demand. Proceedings of both Houses of Parliament continue to witness disruption over several issues. Supreme Court says authorities must exercise restraint while responding to young protesters. Students protest against alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations intensifies in Ranchi. Red warning issued for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya. And in badminton, 3 Indian shuttlers enter the second round of the women's singles of the Korea Open in Assen. Prime Minister Narendra Modi has said that lives of people of Jammu and Kashmir and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation since the abrogation of Articles 370 and 35A 7 years ago. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the infrastructure has expanded opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship, and sports have grown in both the Union territories. He said that the women are marginalized communities or those who were denied their basic constitutional rights for decades have been empowered with the full application of the constitution. The Prime Minister highlighted that the day assumes even greater importance as the country is celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee this year. Mr. Modi said that Dr. Mukherjee's vision found historic fulfillment on the 5th of August 2019. He reaffirmed the government's commitment to the progress of Jammu and Kashmir as well as Ladakh and to ensure that every citizen has the opportunity to dream big, achieve and contribute to the making of a Viksit Bharat. Jammu and Kashmir BJP President and Rajya Sabha MP Satyapal Sharma described the abrogation of Article 370 as a historic step towards the complete integration and development of Jammu and Kashmir. Talking to Akashvani News at the Parliament premises, he claimed that Jammu and Kashmir has witnessed significant progress over the past 7 years after the abrogation of Article 370.
2: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया।
3: It was on this day in 2019 that Article 370 was abrogated. We all know that Jammu and Kashmir is scaling new heights today. Due to this article, women from our region who married outside the state used to be deprived on their rights, including their property rights. Now that injustice has been ratified, communities such as Balmikis and Gurkhas have finally secured their due rights following the abrogation of Article 370.
2: 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: 7 years after the abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir has witnessed significant progress in infrastructure, connectivity, governance, tourism, investment and security. The Union Territory has undergone rapid transformation through better infrastructure, connectivity, public services and economic growth, improving governance and quality of life. We have more from a correspondent.
4: Since August 5, 2019, infrastructure has witnessed rapid growth in the UT. The Jammu-Srinagar National Highway has been upgraded with new tunnels, bypasses and road widening projects. The completion of Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link, including the Chenab and Anjikhad rail bridges, has connected the Kashmir Valley with National Railway Network. The Vande Bharat Express has further strengthened rail connectivity. Tourism has emerged as one of the biggest success stories in these years. In 2024, the tourist arrivals crossed 2.35 crore, including over 65,000 foreign tourists. According to official figures, investments worth around 18,000 crore have been made in the UT since 2019. More than 2,200 industrial units have been established. 26 new industrial estates have been developed. More than 41,000 government jobs have been provided and around 9.81 lakh self-employment opportunities have been created. The security situation has also improved considerably in these years. According to official figures, terror-related violence has declined by 83% since 2019. Ishfaq Shah, Akashvani News, Srinagar.
1: Proceedings of both the Houses of Parliament today witnessed disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over NEET issue. Both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned till 2 p.m. When the Lok Sabha began his proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the questioner, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla urged all members to cooperate in smooth conduct of questioner. He said questioner is an important part of the proceedings, which provides every member an opportunity to raise public issues.
3: I urge all the members to cooperate in smooth conduct of question hour. It is an important part of the proceedings which provide every member an opportunity to raise public issues by displaying placards or engaging in sloganeering in the house is not appropriate in a democracy.
1: When the upper house met for the day, Chairman C.P. Radhakrishnan took up 0 hour amid opposition uproar. Replying to supplementaries, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that driving training schools will be established in various parts of the country. He said that the government has already granted permission to open 300 such institutes. During question hour, the opposition members were on their feet demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over the alleged police action against students during the protest. As the ruckus continued, the chairman adjourned the house till 2 p.m. Reserve Bank of India, RBI, has projected GDP growth to 6.7% in this fiscal year, deciding to keep the repo rate unchanged at 5.25% with neutral stance. RBI Governor Sanjay Malhotra has said that the country's economic growth continues to be supported by resilient demand and it remains world's fastest growing large economy.
5: Real GDP growth for this year is now projected at 6.7%. This is 10 basis points higher than our previous projections. Q1 at 7%, Q2 at 6.4%, Q3 at 6.5%, and Q4 at 6.8%.
1: Announcing the Monetary Policy Committee decision today, Mr. Malhotra said RBI has decided to keep repo rate unchanged at 5.25% and retained a neutral stance. Repo rate is the interest rate at which the central bank lends short-term money to commercial banks against government securities.
5: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: He said RBI has lowered CPI inflation projection to 5% from earlier estimate of 5.1% for financial year 2027. The governor said the recent rise in inflation was largely driven by food and fuel prices rather than broad-based demand pressures. On the external front, the RBI said foreign direct investment inflows remained robust, while foreign portfolio investment has witnessed a turnaround in recent months. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Supreme Court has said that authorities must exercise restraint while responding to young student protesters. The apex court said any violent response to prevent violence would only aggravate the situation. A bench led by Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today made the remarks while hearing a plea seeking action against the CJP. The plea seeks action against the party over its alleged responsibility for recent violence during CJP-led protests in Delhi and other parts of the country, including allegations of stone pelting. The Chief Justice said the most powerful approach is to listen to what the protesters are saying and understand why they are agitating. The court tagged the matter with other pending petitions concerning violence during student protests in Delhi and other states. It said all the petitions would be heard together. The court also expressed confidence in the judgment of law enforcement agencies. It said the matter should be left to the wisdom of the agencies which are better placed to deal with the situation. The bench added that it would consider the matter on the next date of hearing after taking note of the central government's stand. The students' protests against the alleged irregularities in the JPSC and the JSSC examinations at the Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi is intensifying with each passing day. The agitating students have announced plans to lay siege to the Jharkhand Assembly during the upcoming monsoon session to press their demands. We have more from a correspondent.
6: They said their demand is not the resignation of any individual, but the cancellation of the allegedly tainted examinations and a judicial inquiry by retired High Court judges from outside Jharkhand. The protesters have termed the ongoing CID investigation inadequate. The students have also said that the protest is being carried out without any political funding and that the food and refreshments are being voluntarily provided by local temples and social organizations. Following the announcement of the proposed assembly ghirao, the CID has intensified its action in the case. It has arrested three more persons in connection with the alleged examination irregularities and sent them to judicial custody. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
1: Still with Jharkhand, in a joint operation, the Central Reserve Police Force and the Jharkhand Police have arrested three hardcore members of the band CPI Maoist from the Saraikela Kharsawa district. Inspector General Operations Narendra Kumar Singh has confirmed the arrests. Those arrested include Madan Mahato, carrying a reward of 15 lakh rupees, Ravi Sardar, carrying a reward of 5 lakh rupees, and a woman Maoist, Meena, who carried a reward of 2 lakh rupees. Security forces have also recovered three AK-47 rifles from the arrested Maoist. President Draupadi Murmu today offered prayers at the Dhableshwar temple near Barhampur, marking the final engagement of a three-day visit to Odisha. She also visited the Army Air Defence College at Gopalpur. The president interacted with the officers and faculty members there. In Karnataka, three workers were killed following a chemical leak in the Kadechur Badiyal industrial area near Sedapur in Yadgir district today. Two workers exposed to the leak have been admitted to hospital in Raichur. The Deputy Commissioner of Yadgir district, Rahul Tukaram Pandve, has said that the deaths occurred due to inhalation of sulfur oxide in a leaked pipe at a plant manufacturing pharmaceutical chemicals. The centre has deployed a National Joint Outbreak Response Team to Gujarat and Rajasthan to strengthen the response to the ongoing Chandipura virus disease outbreak. The Health and Family Welfare Ministry said that a key focus of the investigation is to unravel the virus transmission cycle. It said that while sand flies are the established vectors of Chandipura virus, scientists are also examining whether other arthropods have a role in its transmission. Tamil Nadu Finance Minister N. Marie Wilson today presented the TVK government's first budget in the Assembly. Chief Minister C. Joseph Vijay's government has set a target of becoming $1.5 trillion economy by 2031. Relief and restoration work has intensified across the flood-affected districts of Odisha as water levels continue to recede. We have more from a correspondent.
7: The state government says cooked food, dry rations, safe drinking water, medicines and other essential supplies are being distributed, while efforts are underway to restore roads, electricity and drinking water facilities. However, people in several flood-hit areas have alleged that relief has not yet reached them despite extensive damage. Meanwhile, five more sluice gates of the Hirakud Dam have been closed, reducing flood water discharge to just 8 gates. The India Meteorological Department has forecast another spell of widespread rainfall across Odisha till the 10th of this month. An orange warning has been issued for Mayurbhanj, while yellow warning remain in force for 13 districts for today. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya today. The IMD has also issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Bihar, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh and Uttarakhand for the day. Meanwhile, Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh are expected to witness heavy rainfall for the next 2 days. In Korea Masters Badminton Tournament, three Indian shuttlers, Isharani Barua, Tanvi Sharma and Sriyanshi Valishetty, have entered the second round of the women's singles of the Korea Open in Asan. Isharani Barua defeated South Korea's Lee So-hee in the round of 32, while Tanvi defeated An Ki-won of China. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says people's lives in Jammu and Kashmir and Ladakh transformed after abrogation of Article 370. RBI projects the GDP growth at 6.7%. This financial year says economic growth continues to be supported by resilient demand. Proceedings of both houses of parliament continue to witness disruption over several issues. Supreme Court says authorities must exercise restraint while responding to young protesters. Students protest against alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations intensifies in Ranchi. Red warning issued for extremely heavy rainfall for Assam and Meghalaya. And in badminton, three Indian shuttlers enter the second round of the women's singles of the Korea Open in Assam. And with that, we end the midday news.
8: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सात वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और भारत की शरानी बरुआ तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सात वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा स्वास्थ्य सेवा उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले सात वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है
2: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे वाल्मीकि समाज के लोग गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है
8: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था
9: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट
8: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं सड़क रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं
10: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
8: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
5: After a detailed assessment of the evolving
10: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
8: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
5: Headline inflation has edged up.
10: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
5: As projected earlier.
8: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
5: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर
10: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
5: Q4 at 6.8%।
8: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
11: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
8: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22,00,000 चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
6: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
8: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं, पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
12: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
8: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। 2:30 हो चुके हैं। अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। कलाकार हैं सुरभि चतुर्वेदी।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत कलाकार हैं सुरभि चतुर्वेदी। इसी क्रम में सुनते हैं अगला एक और गीत।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे हैं और कलाकार हैं सुरभि चतुर्वेदी। सुनते हैं अगला और आखिरी गीत इसी क्रम में।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत, जिसमें आपने सुरभि चतुर्वेदी को सुना। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। अभी दोपहर के 3 बजे हैं। अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

फिल्म संगीत में अभी आप ये गीत सुन रहे हैं फिल्म मुस्कान से, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में। समीर के बोल लिखे हैं और निखिल विनय ने संगीत दिया है। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं दूसरा गीत, फिल्म दिल से उदित नारायण और महालक्ष्मी के स्वरों में। गुलजार के लिखे बोल हैं और संगीत दिया है AR रहमान ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत। और अगला गीत सुनते हैं फिल्म चांदनी से सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे के स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिव हरि ने।

सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अगला गीत सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वरों में संतोष आनंद के लिखे बोल हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म क्रिएचर 3D से अरिजीत सिंह के स्वर में टोनी कक्कर का गीत लिखा है और संगीत दिया है मिथुन ने।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।

0: संगीत, कथा, साहित्य, नाटक, झलकी, ज्ञान विज्ञान, खेल, स्वास्थ्य और मनोरंजन का खजाना आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
0: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
2: जी
0: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए, कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
0: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या, विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
0: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
0: जी, वो तो है।
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
2: जी,
0: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग

0: योग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
1: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा 1 महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी क्या होगा?
0: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
1: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं।
0: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
1: देखते देखते 1 घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए।
0: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
1: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद।
0: और नोटिफिकेशन भी बंद।
1: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
0: क्या बोलेगा?
1: मुझे भी देख लो।
0: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
1: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे?
1: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के ऐप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
1: जी,
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे ऐप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
1: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
5: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
6: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
7: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
6: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
7: यार

0: खेल में बड़ा मजा,
1: बहुत मजा आ गया, क्या गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
2: गोल हो गया,
1: दिल खुश हो
3: गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
4: अरे कहां फंस गई?
5: ए, इधर क्या देख रहे हो?
4: साहब गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
6: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
7: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
8: चलो चलो चलो,
4: अरे भाई निकलो। लेकिन
6: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
3: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
9: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
4: हाँ ठीक है,
9: कोशिश करते हैं।
4: हाँ
9: निकल गया।
3: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
4: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
9: जी बाबा।
4: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
9: तो क्या इनाम देते हो?
4: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
3: और आखिर वो दिन आ ही गया, सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है, राज दरबार सजाया गया।
10: पूरा एक महीना हो गया है, आज फैसला।
11: तुम्हें क्या लगता है
10: महाराज आ रहे?
11: अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
3: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए, रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
4: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
10: सही बात है।
4: उसका संकल्प दृढ़ है, वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
10: बिल्कुल सही कहा,
4: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
3: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
10: अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
4: बिल्कुल।
3: और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
8: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
7: महाराज की
12: जय हो,
7: महाराज की
12: जय हो,
7: महाराज की
12: जय हो,
7: महाराज की
12: जय हो।
3: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
13: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
14: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर

दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा, अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।

0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
2: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
0: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: शिकारी के जाल में फंस गया है।
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
1: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथ ही कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चले, मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
1: चलो
3: चलो चलो कौवे भाई,
1: चलो, चलो, चलो।
0: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
2: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो, शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
2: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी जल्दी।
0: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया, फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर मंजरी।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं आप स्वर मंजरी। कलाकार हैं चेतना पाठक और ख्याल गायन में कलाकार हेमावती एवं पूरिया धनाश्री।

अभी आपने स्वरमंजरी में चेतना पाठक और ख्याल गायन राग में हेमावतीम पूर्या धनाश्री को सुना। इस गीत के साथ स्वरमंजरी का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म अग्निपथ से, सोनू निगम के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत के बोल लिखे हैं और संगीत दिया है अजय अतुल ने।

फिल्म संगीत में सुनते हैं ये अगला गीत, फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वरों में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अगला गीत सुनते हैं फिल्म फिर मिलेंगे से सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वरों में। प्रसून जोशी के लिखे बोल हैं और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और राजा ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अगला गीत सुनते हैं फिल्म राज 3 से के स्वर में। संजय के लिखे बोल हैं और जीत गांगुली का संगीत है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म धड़कन से अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू के स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर शाम के 5 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
4: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
3: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
4: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
3: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित रक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
4: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का युवानी के आज के इस कार्यक्रम के अंदर। मेरे साथ आज मैं विनम्र तो हूं ही हूं और
6: मैं हूं श्रेयांश सिंह।
5: तो श्रेयांश हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। श्रेयांश का आज मैं आपको बताता हूँ, देखिए नया है आज श्रेयांश जो है आपसे युवानी कार्यक्रम में आपको जरूर सुनाई देंगे, लेकिन आज उनकी पहली ड्यूटी है। तो श्रेयांश थोड़े से नर्वस हैं। श्रेयांश नर्वस आ रहे हैं, अपन नर्वस नजर आ रहे हैं, क्या है, कुछ ऐसा क्या लग रहा है बताइए। अब श्रोताओं को देखिए होता क्या, आप अपने श्रोताओं को दोस्त मानिए, आप उन्हें दोस्त मानेंगे, अपने मन की बात उन्हें बताएंगे, उनके मन की बात उनके अपने मुंह के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा उन्हें बताएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो बताइए आपको भी क्या महसूस हो रहा है, आज आपकी पहली ड्यूटी है, आज आपका पहला दिन है स्टूडियो के अंदर, आज आप बोलेंगे तो कैसा लग रहा है आपको?
6: आज थोड़ा नर्वस ज़रूर हूँ, लेकिन अपनी वाणी के थ्रू मैं कुछ अपने युवा साथियों के साथ अपने थॉट्स, अपना जो भी एक पर्सपेक्टिव है, आजकल के जो मुद्दे हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, उनको लेके अपना एक अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू और आपके साथ क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जो कुछ कंट्रीब्यूट करूं जो मेरे युवा साथी को पसंद आए और उनके काम आए।
5: चलिए बिल्कुल श्रेयांश, हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करते रहेंगे कि आज युवाओं की बात श्रेयांश ने करी है तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो चल रहा है, जिस तरीके से हमारा यूथ किन चीज़ों को लेकर परेशान रहता है, किन चीज़ों को लेकर सोचता है, समझता है, खुद को एक खुद के अंदर एक सेल्फ डाउट के अंदर रहता है, उन सब चीज़ों के ऊपर तो हम बात करेंगे। लेकिन श्रेयांश मौसम को लेकर तुम्हारा क्या कहना है, जिस हिसाब से जयपुर का मौसम हो रखा है, मतलब गर्मियों के अंदर एक चीज़ होती है कि सूरज जयपुर फिर धरती, इतना तपता है जयपुर, अभी इतना बढ़िया शीतल मौसम हो रखा है, तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर?
6: जी बिल्कुल, मौसम हो रखा है शीतल और ये एल नीनो एक फिनोमेना होता है जिसके हिसाब से जिसके परिणाम स्वरूप हमें पिछले 2 सालों में जितना मानसून देखने में मिला है उससे थोड़ा कम देखने मिला है इस साल, और ये अच्छा भी है, मौसम भी शीतल है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई समस्या भी नहीं आ रही, तो बहुत ही बिल्कुल किसी बॉलीवुड मूवी जैसा ये मौसम है और इसमें चाय और पकौड़े का अलग ही मज़ा है।
5: चलिए ठीक है, बॉलीवुड मूवी की बात करिए तो सोनू निगम की आवाज़ में यह सुरीला गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: श्रेयांश मुझे ये चीज़ बताओ कि हमारे जो एज ग्रुप होता है, मतलब हम जिस एज ग्रुप के अंदर हैं, जब हम एकदम टीनेजर हमारा ख़त्म कर चुके होते हैं, हम हमारी करियर की भाग दौड़ में लगना शुरू होते हैं, तो उस दौरान एक पीयर प्रेशर होता है हमारे ऊपर हर चीज़ को लेकर, अच्छा परफॉर्म करने को लेकर। खैर ये रहता तो बहुत स्टार्टिंग से ही है कि हम क्लासरूम के अंदर भी देखते हैं कि भाई हमें अच्छे नंबर लेकर आने हैं, उसका पीयर प्रेशर, अच्छा दिखना है उसका पीयर प्रेशर, यूनिफॉर्म सही होनी चाहिए उसका पीयर प्रेशर, वो एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर होता है, मेरी हमेशा ख़राब रहती थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर तुम क्या सोचते हो, ये जो पीयर प्रेशर है ये क्या हमारे लिए कितना ज़्यादा डिसएडवांटेज है और कितना ज़्यादा एडवांटेजेस है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारी उम्र में बड़ी ही अजीब सी चीज़ होती है कि जितना हम अपने बारे में नहीं सोचते ना, उससे ज़्यादा तो हम ये सोच रहे होते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और मान लीजिए किसी आपके दोस्त को अच्छी नौकरी मिल गई, जैसे आने वाले सालों में आपके किसी दोस्त को अच्छी नौकरी मिल गई, तो हमें लगता है कि हम क्यों पीछे रह गए आखिर। किसी दोस्त को ऐसा हुआ कि उसकी कोई प्रतियोगिता, कोई परीक्षा उसने निकाल ली, तो हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है। किसी ने कोई नया शहर देख लिया, नया कॉलेज ज्वाइन कर लिया, या फिर कोई नया हुनर सीख लिया, तो हम कमरे में बैठे हुए सोचते रहते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने जीवन के साथ। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या ज़िंदगी सच में इतनी सीधी रेखा है? आपका क्या कहना है इस पर?
0: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रेयांश। जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो पीयर प्रेशर हमारा स्कूल कॉलेज के अंदर रहता है, एक इन्फ्लुएंस होता है सामने वाले का। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर श्रेयांश जो है ये कलर की शर्ट पहन रहा है, या फिर इस चीज़ की शर्ट पहन रहा है, या फिर श्रेयांश जो है इस तरीके से बात कर रहा है, या फिर श्रेयांश जो है यहाँ पार्टी कर

0: कंज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं उस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, खुद को फिट इन करने के लिए, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करूँगा या फिर बन जाऊँगा जहाँ हम जो है इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम असल में कौन हैं, हमारा असल में जो व्यक्तित्व है, हम असल में कौन हैं, हम समाज से क्या चाहते हैं, समाज हमसे क्या चाहता है। इसको
1: ये बिल्कुल होता है अक्सर कि हम कई बार एक गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और वैसे भी आजकल के इंस्टाग्राम, ये जो दौर है सोशल मीडिया का दौर, इसमें हम अक्सर दूसरे की हाईलाइट वीडियो को देखकर अपनी बिहाइंड द सीन जिंदगी से हम तुलना करने लगते हैं। और आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, जैसा मैंने कहा, ये सब कितना आसान बन चुका है। स्क्रीन पर हमने किसी की सफलता देखी और हम उस सफलता के पीछे रोते हैं, किसी की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखी, हम उसके पीछे का संघर्ष देख ही नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल, ये जिस तरह की तुमने अभी बहुत अच्छी बात कही कि किसी की हमने मुस्कुराते हुए तस्वीर देख ली तो हम वो संघर्ष नहीं समझ पा रहे हैं। एक कहावत होती है कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा नजर आता है। हम इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस कोई चीज़ नहीं होती है। हम कहीं ना कहीं सामने वाले की सक्सेस या सामने वाले का फेलियर खुद से कंपैरिजन करते हैं, और ये जो कंपैरिजन है ये लेड करता है पीयर प्रेशर को लेकर। माना जा सकता है कि हो सकता है कि उसके पास या उसके नसीब में ये चीज़ हो कि उसे जो है जल्दी मिल गया हो। जैसे मान के इस यहाँ का एग्जांपल लेते हैं, इसका कोई वो नहीं है कंपैरिजन कि मैं यहाँ पर पहले से हूँ, तुम बाद में आए हो, तो कौन बेहतर होगा या तुम उस पीयर प्रेशर में रहो। ये भी एक चीज़ हो सकती है कि तुम मेरे से जल्दी उस मुकाम पर आ जाओ या फिर किसी और के मुताबिक अगर देखें तो उस मुकाम पर आ जाओ, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, तुम किस तरीके से चीज़ों को ग्रैब कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, मान रहे हो, पहचान रहे हो। लेकिन अगर तुम उस पीयर प्रेशर के अंदर अटक गए कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा या फिर मैं इसके बोलने का तरीका जो है कॉपी करूंगा या फिर मैं इस चीज़ को इस तरीके से समझने की कोशिश करूंगा जो और तरीके से लोग कर रहे हैं, तो तुम खुद की एक पहचान नहीं बना पाओगे, तुम हमेशा एक कॉपी कैट बन के रह जाओगे।
1: तो जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि अगली बार जब हम अपने आप को लेकर ऐसा सोचने लगे कि सब मुझसे आगे निकल गए हैं, तो हमें एक पल खुद से ये रुक कर पूछना चाहिए कि क्या मैं सच में पीछे हूँ या बस मेरी राह अलग है।
0: ये बहुत अच्छी लाइन तुमने बोली है कि क्या मैं पीछे हूँ या फिर मेरी राह अलग है। हमें सही में आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि भाई क्या मैं सही में पीछे हूँ या मेरी राह अलग है, क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं चीज़ समझ नहीं आती है कि हम इस चीज़ को या फिर समझ नहीं पाते हैं कि हम जो करना चाहते हैं या फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं खुद को लेकर, मैं ये नहीं बोल रहा कि समाज को लेकर, समाज क्या आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, आपके माता पिता आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, नहीं, तुम भी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते होंगे, मैं भी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। क्या मैं उन एक्सपेक्टेशंस को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर फुलफिल कर पा रहा हूँ, हाँ या ना, दैट शुड बी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन शुड बी कि मैं खुद से कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ या नहीं, ना कि सामने वाले से। अगर मैं जो आज हूँ, अगर मैं वही कल हूँ, तो आज और कल के बीच में मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया, मेरा दिन जो है प्रोडक्टिव नहीं रहा। अगर जो मैं आज हूँ और उस कल में जो है उसके अंदर एक स्लाइट चेंज भी आता है, तो आई हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव इनफ, क्योंकि आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। हर नया दिन जो है एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नई चीज़ मेरे अंदर ऐड ऑन कर रहा है, और यही चीज़ मैं खुद को समझा रहा हूँ कि मैं किसी के पीयर प्रेशर में आके कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, मैं एक सेल्फ सस्टेन्ड खुद के दिमाग को काबू में रख के कोई डिसीजन ले रहा हूँ, खुद के दिमाग को काबू में रख के चीज़ों को सॉर्ट कर पा रहा हूँ, ना कि किसी पीयर प्रेशर के अंदर आके, ना ही किसी के दबाव में आके। ये चीज़ है, मतलब श्रेयांश, एक चीज़ है कि ये जो देश है, हमारा देश है, ये युवाओं का देश है। हमारे देश के अंदर करोड़ों युवाएं हैं, बहुत से देशों की इतनी आबादी नहीं है जितने युवा हमारे देश के अंदर हैं। यही इस देश की सुपर पावर है। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम इस चीज़ को समझ जाएं और जान जाएं दैट वी आर दी सुपर पावर ऑफ दिस नेशन। हम विश्व को जो चीज़ दे रहे हैं, जो इस देश का युवा विश्व को जो चीज़ दे रहा है, वो शायद कोई और देश नहीं दे सकता, जो सिर्फ इस देश का युवा दे रहा है। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके लिए प्रोग्राम स्पेशली रखा गया है, युवानी, टू मेक यू एसेट फॉर दिस नेशन, नॉट लाइबिलिटी फॉर दिस नेशन। बाकी हम ऐसी चीज़ें जारी रखेंगे श्रेयांश। अभी मैं को लग रहा है कि हमारे श्रोता चाहते हैं कि हम एक बहुत बढ़िया गाना बजाएं, तुम क्या कहते हो?
1: बिल्कुल, कुछ बातें जो संगीत के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, वो शब्दों से व्यक्त करना थोड़ा कठिन होता है। तो इसी थॉट के साथ सुनिए एक मधुर संगीत।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इस सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: तो दोस्तों आपका स्वागत है इस

0: मधुर गीत के बाद हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिससे हम सभी को कहीं ना कहीं डर लगता है, वो है फेल होना यानी असफलता। हमने फेलियर को कुछ इस तरह बना दिया है कि जैसे वो हमारी पहचान हो। फियर ऑफ फेलियर आफ्टर ऑल एक वाकई एक रियल चीज़ है। परीक्षा में कम नंबर आए, मैं असफल हूँ। ऑडिशन में चयन नहीं हुआ, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, शायद मुझ में टैलेंट ही नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर एक असफलता आपकी पूरी पहचान तय कर सकती है तो एक सफलता भी आपकी पूरी पहचान तय कर सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है इस बारे में?
1: जी बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो श्रेयांश। जो असफलता होती है ना, वो मतलब मेरे दिमाग में तो हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस, इट्स नॉट अ स्टॉपेज और चेक पॉइंट टू द सक्सेस। वो एक स्टेप है आपकी सक्सेस के लिए। आपको उस फेलियर में लगे रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करते रहने पड़ेगी। और सर मैं एक चीज़ कहूँगा श्रेयांश, गिरता वही है जो कोशिश कर रहा है। जो कोशिश ही नहीं कर रहा वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसके गिरने नहीं गिरने से किसी के फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो गिरता वही है जो कोशिश कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा विनम्र। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि कैसे कविताओं में भले ही वो कितनी भी पुरानी हो, वो सदाबहार रहती है, उनमें गागर में सागर भरने की क्षमता होती है, जैसे कि अभी विनम्र ने डेमोन्स्ट्रेट किया। और मैं एक एनेक्डोटल चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक वाक्य बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के जीवन से। जब वो कभी स्कूल लाइफ में थे तो वो एक बार अपने परीक्षा में फ़ेल हो गए थे, तो उन्हें वो अपने पिताजी के पास गए बड़े डिसअपॉइंट होके। तो उनके पिताजी ने उनको एक ऐसी बात कही जो कि ना कि सिर्फ उनके विद्यार्थी जीवन में बल्कि उनकी ओवरऑल जीवन में उनके काम आई। उनके फादर ने उनसे कहा कि फेलियर इज अ इवेंट, नेवर अ पर्सन। आपका क्या कहना है इस पे विनम्र?
1: बिल्कुल यार, फेलियर इज जस्ट एन इवेंट। जिस तरीके से आप फेलियर को देखते हैं, आप फेलियर के ऊपर बात करते हैं, आप फेलियर को लेकर चलते हैं, तो ये चीज़ है कि मेरे लिए तो यही है कि फेलियर एक इवेंट इसीलिए है क्योंकि फेल वही हो रहा है जो कोशिश कर रहा है। जो कुछ नहीं कर रहा वो फेल नहीं हो रहा, मतलब वो स्टैग्नेंट है, वो अपने पोजीशन पे रुका हुआ है, वो एकदम स्टॉप हो चुका है, स्टैचू बन चुका है, उसके आगे उसका कोई और अस्तित्व नहीं है, उसके पीछे उसका और कोई अस्तित्व होगा लेकिन वो आगे कुछ नहीं कर रहा है, वो समय के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो फेल नहीं हो रहा है। जो फेल हो रहा है इसका मतलब यही है कि वो कोशिश कर रहा है, और कोशिश करते रहने पर ही आपको फेलियर महसूस होगा और फेलियर से ही आपको सक्सेस मिलेगी। दिस इज दी ओनली अल्टीमेट ट्रुथ। यू विल नेवर गेट सक्सेस सिटिंग ऑन योर सोफा इन योर हाउस की सक्सेस चलकर आ जाएगी। यू हैव टू ट्राई समथिंग, फेल आउट, ट्राई, फेल बेटर, ट्राई अगेन, फेल बेटर, ट्राई अगेन, फेल बेटर, एंड वन डे यू विल गेट सक्सेस। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे। क्योंकि मैं एक चीज बता रहा हूँ श्रेयांश, आपको एक ही बार सक्सेसफुल होना है। इट डजंट मैटर कि आप कितनी बार फेल हुए हो, आपको एक बार सक्सेसफुल होना है, सिर्फ एक बार। एक बार वो हिट पड़ा, एक बार वो छक्का पड़ा ना, उसके बाद आपकी गाड़ी चल जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आप उससे पहले कितनी बार फेल हुए नहीं हुए। और मज़ा इसी में ही है कि लोगों को आपका फेलियर या आपकी सक्सेस जो है ओवरनाइट लगनी चाहिए। उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी बार फेल हुए हो, लेकिन वो होगा तब जब आप लगे रहोगे एकदम अपने जो संकल्प है, अपना जो दृढ़ निश्चय है, उस पर लगे रहोगे।
0: विनम्र, मैं इसमें आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि जो एक कंपनी है, हमारा जो संगठन है, जिन लोगों के साथ हम अपना समय व्यतीत करते हैं, जैसे कि हमने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पे बनी जो फिल्म आई थी आज से कुछ 10 साल पहले, उसमें भी हमने उनके दोस्तों का और उनके पूरे एक सोसाइटी का हमने रोल देखा। जो हमारी कंपनी होती है उसका क्या रिज़ल्ट होता है हमारी मेंटल स्टेट पर? और जैसा कि हमने कहा कि ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है सेल्फ डाउट को फाइट करने से?
1: बिल्कुल, आपकी जो संगत है वही आपकी रूपरेखा तय करती है। और ये बिल्कुल सही चीज़ है जो अभी श्रेयांश ने बोली है कि अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से रह सकते हो, आप बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को फॉर्मुलेट कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें चला सकते हो। क्यों श्रेयांश, दोस्त तो अच्छी चीज़ होती है, दोस्त तो बढ़िया है, वो आपको फेलियर भी सिखाता है, वो आपको फेलियर के अंदर आगे बढ़ना सिखाता है, वो आपको किस तरीके से अपने जीवन के अंदर क्या सही करना है वो भी बताता है।
0: दोस्त वाकई हमें अपने अंदर की जो मन की आवाज़ है उसको सुनने में भी हमारी मदद करते हैं। दोस्त हमें हमारे सपनों की ओर ले जाते हैं, और हम ये एक बड़ा खूबसूरत सा गिव एंड टेक रिलेशन होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो दोस्ती होती है, बाकी सारे रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं या समाज में हमें मिलते हैं, बट दोस्ती ऐसा इकलौता रिश्ता है जो जिसे हम चुनते हैं, है ना? ऐसा ही है शायद विनम्र?
1: बिल्कुल, चूजन वो है, और चूजन आप लोग भी हैं हमारे लिए। और इसी के साथ साथ हम लोग आपको भी एडवाइस करेंगे मैं और श्रेयांश की तरफ से कि

0: लोग अगर फेल हो रहे हैं, अगर आप लोग जो है अपनी चीज़ों को लेकर जो है हार रहे हैं, गिर रहे हैं बार बार, तो गिरना एक मंजिल नहीं है। मंजिल वो है जहाँ पर आपने वो चीज़ पा ली है जो आप पाने का सपना देख रहे थे, वो आपने हासिल कर लिया है, जिसको लेकर आपने अपना रास्ता शुरू किया था, अपनी जर्नी शुरू करी थी। तो उस सफ़र को जारी रखिए, किसी एक फेलियर के चक्कर में उस सफ़र को रोकिए मत।
1: जी, जैसे माता पिता का अनुभव वो भी महत्वपूर्ण है, शिक्षकों की सलाह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में जीवन तो हमारा ही है ना, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें लेनी होगी, अपने डिसीजंस हमें खुद लेने होंगे, और हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी। लिसन टू एडवाइस बट डोंट लूज योर ओन वॉइस, अंत में वो वॉइस ज़रूरी है ना, ऐसा ही है।
0: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ साथ हम इस फेलियर, फियर टू फेलियर को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपके लिए लेकर आए हैं कबीर सिंह फिल्म से यह गीत।

0: ये था आज का आखिरी गीत, तुझे कितना चाहने लगे हम। और अब ये हमारा कार्यक्रम अंत की ओर चल रहा है। इस मौके पे मुझे याद आया बशीर बद्र साहब का एक शेर, सितारों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं श्रेयांश और मेरे साथ विनम्र,
1: और हम दोनों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत अलविदा। युवानी कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट्स पे आता रहेगा हर शाम 5 बजे। सुनते रहिए युवानी कार्यक्रम। धन्यवाद।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

दीवाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में। गीत समीर का था और संगीत नदीम श्रवण का।

कोयला फिल्म का गीत अभी आपने सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ। इंदिवर के बोलों को संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने।

दरिया दिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना नितिन मुकेश की आवाज़ में। गीत इंदिवर का था और संगीत राजेश रोशन का।

0: चालबाज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800

0: 1-800-234 या 1-800-210-0 और अपने सवालों का जवाब पाओ सिंपली कॉल।
1: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1-800-1234 या फिर 1-800-210-0 पर और पाए समाधान।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आज रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश। रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। रात 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन और रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 6:05, रात 8:15 और रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

शाम 7 बजे ग्राम भारती कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे एक बातचीत डॉक्टर तारकेश्वर शर्मा से। विषय रहेगा रसोई घर से चिकित्सा। इसके अलावा आप सुनेंगे लोक संगीत, बाजार भाव और मौसम का हाल।

शाम 7:30 पर खेती बाड़ी में किसान भाई सुनेंगे एक बातचीत। विषय रहेगा खरीफ फसलों में संरक्षण कार्य। ये बातचीत होगी राम प्रसाद डीडीएल से। कार्यक्रम रूपरेखा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरम और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

प्यासा सावन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया हुआ गीत संतोष आनंद का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मिली फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीत योगेश का था और संगीत एस डी बर्मन का।

अमित कुमार का गाया हुआ ये था लव स्टोरी फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा था आर डी बर्मन ने।

दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में गीत आनंद बख्शी का था और संगीत उत्तम सिंह का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक 62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के शोर शराबे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही नीट सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बार बार बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी सदस्यों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
9: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
8: राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.25% पर यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश की आर्थिक वृद्धि जारी है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी रही। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि देश में अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं, इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य ब्यौरा जल्द साझा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। अदालत ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया देने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सीजेपी की अगुवाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं। इसके लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री बिरला ने कोटा के खेल स्टेडियम में दो नए एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाने की आवश्यकता बताई। साथ ही कोटा को खेल प्रतिभाओं के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की। केंद्रीय खेल मंत्री ने श्री बिरला को कोटा में सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना लखपति दीदी और वीबी रामजी के तहत प्रदेश में हुए कामों की सराहना की है। श्री बागड़े ने आज लोकभवन में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने गांवों में हस्तकलाओं और कौशल विकास से जुड़े कामों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने की बात कही। श्री बागड़े ने मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर भी जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक क्रियान्वयन हुआ है। राजस्थान में इस योजना में देश में सबसे ज्यादा 62,58,000 किसानों को नामांकित किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना में साल 2025-2026 में राज्य की लगभग 2,82,00,000 हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में 1,00,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बीमित किया गया, जो राज्य के कुल फसली क्षेत्र का 36% है। योजना में चूरू में 77%, बाड़मेर में 69% और नागौर में 47% सकल फसली इलाके का बीमा कवरेज हुआ है। पिछले 5 सालों में किसानों की ओर से 4,650 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम हिस्सा जमा किया गया है, जो देश भर में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सूखा, अकाल, ओलावृष्टि, कीटों और बीमारियों के कारण फसल को हुए नुकसान की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के तहत किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर प्रीमियम का भार वहन करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के उद्देश्य से जोधपुर डिस्कॉम की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं। डिस्कॉम में सहायक अभियंता हिमेश जोशी ने बताया कि लोग इसका फायदा उठाकर बिजली के बिल को न्यूनतम कर सकते हैं।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए। जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया, जिनको सब्सिडी मिल गई है, उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है, ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े, जिनके सोलर पे बिजली का जनरेशन हो रहा है। सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है, इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी नेमाराम ने बताया कि उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है, साथ ही उन्हें सरकार की ओर से इंडक्शन कुकर की भी सौगात मिली है।
10: मैं नेमाराम प्रजापत शिव नगर पाली। मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का सोलर प्लान लगाया जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था, अब एक साल से मुझे 0% बिल आता है और 78,000 की सब्सिडी मिली और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर सोलर भी मिला है। जनता से आह्वान करूंगा आप भी सोलर ऊर्जा लगाएं।
8: संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में आज से समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये यात्रा संत गुरु रविदास जी के सामाजिक समता, सद्भाव और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का माध्यम बनेगी। श्री शर्मा ने कहा कि संतों ने हमेशा समरसता का भाव दिखाया है और समाज को दिशा देने का काम किया है।
11: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है और ये आज से नहीं सदियों से है। हम ऐसे संतों का, मुनियों का, महंतों का सम्मान करते हैं। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है।
8: हनुमानगढ़ में आज महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की गई है। बीकानेर रेंज की डीआईजी श्वेता धनकड़ ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह के उत्पीड़न, छेड़छाड़ होने पर हेल्पलाइन पर संपर्क कर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
12: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी उनके पास वापिस में कॉल जाएगा, उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को और जहां भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी, उनका नाम और उनकी जो सूचना है गोपनीय रखें।
8: और अब मौसम। पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर कल से नया परिसंचरण तंत्र बनने के आसार हैं। इससे मॉनसून के फिर से सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने कल 17 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच भरतपुर में आज भी घनघोर घटाएं छाई रही तो सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का दौर चला। नदबई, भुसावर, वैर और बयाना में भी कुछ देर झमाझम बारिश हुई। डीग में भी पिछले दो दिनों से रुक रुक कर कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है। उधर सवाईमाधोपुर में रिमझिम बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि जल संसाधन विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 10% कम बरसात हुई है। 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है, वहीं 19 जिलों में सामान्य और 17 जिलों में सामान्य से भी कम बरसात दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक 62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित दौसा शहर का एक नाम देवनगरी भी है। आभा देवी स्थित चांद बावड़ी दौसा जिले के आभा को बढ़ाती है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं चांद बावड़ी परिसर में मौजूद हर्षद माता का मंदिर अपनी स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। पहाड़ियों और जल स्रोतों से भरपूर झांजीरामपुर मंदिरों के लिए जाना जाता है। वहीं जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी आस्था का प्रमुख केंद्र है। इन दिनों मॉनसून की बारिश के बाद ये पर्यटन स्थल लोगों का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहे हैं। एक ओर मौसम सुहावना हो गया है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने अपने खेतों में खरीफ फसल की बुवाई शुरू कर दी है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने दौसा में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीते दिनों पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत दौसा आए, उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों को निलंबित भी किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना और खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने गोवंश संरक्षण और पशुपालकों के हितों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए राहत का माध्यम बना। पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत निजामपुरा में लगाए गए शिविर के दौरान स्वामित्व योजना के तहत अरण्यकला गांव के लाभार्थियों को उनके पुश्तैनी मकानों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और पट्टे प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें अपने मकान का वैध स्वामित्व प्रमाण मिलने से बैंक ऋण सहित विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सिकराय पंचायत समिति की मानपुर, पांचोली और ठीकरिया ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने वहां औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान मिली शिकायतों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने महवा के समलेटी गांव में आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने महवा केंद्रीय बस स्टैंड के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कामों का भी लोकार्पण किया। श्री बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालय बनने से क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और आयुष सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। जिले में आयोजित रोजगार उत्सव में बड़ी संख्या में नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और स्वागत किट वितरित किए गए। ये कार्यक्रम पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से वर्चुअल माध्यम से जुड़ा रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, उद्योग, पेयजल और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईसरदा पेयजल परियोजना पूरी होने के बाद दौसा जिले को भी इसका लाभ मिलेगा। जिला प्रभारी सचिव पीसी किशन ने नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, नामांतरण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति और अन्य दस्तावेज वितरित किए। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना और आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। प्रभारी सचिव ने पट्टा प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने तथा शिविरों में ही अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
14: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपखरा हंगामा रे चालता आज भी कई बगत रोकनी पड़ी। रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारो अंदाजो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू बत्ता 62,58,000 कास्कारा रो नामांकन। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा संत रविदास रा समता, सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही। सरकार समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारीक और अब है समाचार विगतवार। लोकसभा में आज बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष रा हंगामा रे बीच बिना चर्चा रे पारित कर दियो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ओ विधेयक संसद में सदन में पेश करियो। एंड्रो लगस बैंकारा रिकॉर्ड सु जुड़िया साक्षारा कानून ने मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था रे मुजब बनानो है। एंड्रे मार्फत बैंकिंग प्रणाली री हाल री जरूरत रे मुजब कानूनी ढांचा ने आधुनिक बनायो जावेला। विधेयक माए ओ भी प्रावधान है के बैंकारा रिकॉर्डरी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति ने अदालत माए वैध और कानूनी साक्षीरा रूप माए मान्यो जावेला। लोकसभारी कार्यवाही विपक्षरा शोर शराबारी वजह काल तय रे वास्ते रोक दी गई। इनसु पहली सदन री कार्यवाही नीट समेत दूजा मुद्दा माथे विपक्षरा हंगामा रे चलता आज भी बार बार रुकनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू कर बारी कोशिश करिया, वणा सगला सदस्याओं संसद ने चोखी तरीकाओं चलाबा माए इमदाद कर बारी अरज करी।
9: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
14: राज्यसभा में पहला स्थगन रे पछे सभापति सीपी राधाकृष्णन प्रश्नकाल शुरू करिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कया के देश रा न्यारा न्यारा हल्का माए ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करिया जावेला। सरकार 300 इणभाथरा संस्थाना ने

0: बण्यो वियो है। चालू माली बरसरी अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था रो प्रदर्शन उम्मीद सू बत्तो रियो। रिजर्व बैंक माली बरस 2026-27 खातर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माथे आधारित महंगाई रो अंदाजो 5.1% सू घटार 5% कर दियो। श्री मल्होत्रा कया के हाल ताई महंगाई बदबारो खास कारण खाबा और ईंधन री कीमता माए बढ़ोतरी है। पश्चिमी एशिया में चाल रही लड़ाई की वजह से व्यापार रा खास रास्ता माथे घणो असर पड़ियो है, जिनसू दुनिया भर माथे माली दबाव पड़ियो है। रिजर्व बैंक रा गवर्नर कया के देश में आवता माली बरस की शुरुआत में प्लास्टिक रा नोट चलन में आ जावेला। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में वणा कया के प्लास्टिक रा नोट बत्ता टिकाऊ होवे है। सर्वोच्च न्यायालय कयो के युवा छात्र प्रदर्शनकारिया ने लेर आपरा विचार राखता टेम अहलकारा ने संयम बरतनो चाहिए। अदालत कयो के हिंसा ने रोकबा खातर किणी भी भांतरी हिंसक प्रतिक्रिया दे बासू हालात बिगड़ सके है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांतरी अगुवाई वाली पीठ कॉकरोच जनता पार्टी रे खिलाफ कार्यवाही री मांग वाली याचिका माथे सुनवाई करता थका आ टिप्पणी करी। याचिका माए दिल्ली और देश रा दूजा हल्का माए सीजेपी री अगुवाई माए प्रदर्शन रे दौरान पत्थरबाजी रा आरोप भी भेड़ा है। इन खातर पार्टी री कथित जिम्मेदारी रे खिलाफ कार्यवाही री मांग करी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा माए खेल सुविधावा ने बढ़ावा खातर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया सू नई दिल्ली माए मुलाकात करी। श्री बिरला कोटा रा खेल स्टेडियम माए दो नया एथलेटिक्स ट्रैक बना जाबा माथे जरूरत बताई। साथ ही कोटा ने खेल प्रतिभावां रा मजबूत केंद्र रा रूप माए बढ़ावा खातर जरूरी सुविधा देबा माथे चर्चा करी। केंद्रीय खेल मंत्री श्री बिरला ने कोटा माए सुविधावां ने बढ़ावा खातर इमदाद देबारी आस बंधाई। वे कया के केंद्र सरकार खेल संस्कृति ने बढ़ावो देबा और देश भर माए विश्व स्तरीय खेल सुविधा रा विकास खातर प्रतिबद्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी राजयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोर शोरू चाल रही है। राजस्थान माए इन योजना माए देश माए सबू बत्ता 62,58,000 कासकाना ने नामांकित करियो गयो है। पीएम फसल बीमा योजना माए बरस 2025-26 माए राज्य री करीब 2,82,00,000 हेक्टर सफल फसली हल्का माए 1,00,00,000 हेक्टेयर हल्को बीमित करियो गयो है, जो राज्य रा कुल फसली हल्का रो 36% है। योजना माए चूरू माए 77, बाड़मेर माए 69 और नागौर माए 47% सकल फसली इलाका रो बीमो कवरेज वियो है। लारला 5 साल माए कासकारा रिकानी 4,650 करोड़ रुपया सू बत्ता रो प्रीमियम हिस्सो जमा करायो गयो है, जो देश भर माए सबू बत्तो है। ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कासकारा ने सूखा अकाल ओला पड़बा कीट और बीमारिया री वजह से फसल ने व्या नुकसान ने माली सुरक्षा देवे है। योजना रे तहत कास्तकार राज्य और केंद्र सरकार मिलर प्रीमियम रो भाव उठावे है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना री जानकारी बत्ताऊ बत्ता लोगा ने देवारा लगा सू जोधपुर डिस्कामरी कानियों कैंप लगाया जा रहा है। डिस्कामरा सहायक अभियंता हेमेश जोशी बताया के लोग इनरो फायदो उठार बिजली रा बिल माए कमी ला सके है।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए। जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया, जिनको सब्सिडी मिल गई है, उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है, ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े, जिनके सोलर पे बिजली का जनरेशन हो रहा है। सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है, इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रा लाभार्थी नेमाराम बतायो के वारो बिजली रो बिल 0 वे गयो है, साथ ही वाने सरकारी कान्यो इंडक्शन कुकर दियो गयो।
2: मैं नेमाराम प्रजापत शिव नगर पाली। मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का सोलर प्लांट लगाया, जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था, अब एक साल

0: से मुझे एक 0% बिल आता है और 71,000 की सब्सिडी मिली और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर सोलर भी मिला है। जनता से आह्वान करूंगा आप भी 100 और 100 रुपये लगाएं।
1: संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके प्रदेश में आज समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS स्टेडियम से यात्रा की शुरुआत करी। इन मौके श्री शर्मा कहा कि आ यात्रा संत गुरु रविदास जी रा सामाजिक समता सद्भाव और मानवता रा संदेश ने लोगों तई पुगाबा रो जरियो बनेला। वणा कहा कि संत हमेशा समरसता रो भाव दिखावा और समाज ने दिशा देबा रो काम करियो है।
2: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है और ये आज से नहीं सदियों से है। हम ऐसे संतों का मुनियों का महंतों का सम्मान करते हैं। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है।
1: प्रदेश की पहली महिला सुरक्षा हेल्पलाइन हनुमानगढ़ में शुरू करी गई। बीकानेर रेंजरी DIG श्वेता धनकड़ इनकी शुरुआत करी। इन दौरान वणा महिला वासु बातचीत करी। वे कहा कि किणी भी भांतरा उत्पीड़न और छेड़छाड़ हुबा माथे हेल्पलाइन माथे संपर्क कर तुरंत पुलिस री इमदाद हासिल करी जा सके है।
3: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी, उनके पास वापिस में कॉल जाएगा। उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को और जहाँ भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी। उनका नाम और उनकी जो
1: पूर्वी राजस्थान और RSRA रा हलकारे ऊपर कालसू नुवो परिसंचरण तंत्र बनबारा आसार है। इनसु मानसून रे फेरू सक्रिय होबा और तेज बारिश होबारो अंदाजो है। 7-10 अगस्त रे दौरान भरतपुर कोटा अजमेर और जयपुर संभागरा कुछ एक हल्का माए हल्की सु तेज बारिश बह सके है। वठीने कठे कठे भारी और घटा टोप में बरस बारा आसार भी है। मौसम महक मो काल 17 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करियो है। इन बीच आज भरतपुर माए बादला छाया रिया, अठे सुमारा सुही कठे कठे हल्की तो कठे तेज बरसात रो दौर चालियो। नदबई भुसावर बैर और बयाना माए भी थोड़ी देर झमाझम में बरसियो। डीग माए भी लारला दो दुनाओं रुक रुक कर मेह बरस रियो है। वठीने सवाई माधोपुर माए झिरमिर मेह बरस बासु मौसम सुहावणो वैग्यो। हालांकि जल संसाधन महकमा रे मुजब इन मानसून सीजन माए हाल ताई सामान्य सु 10% कम बरसात भी है, जबकि 5 जिला माए 32 मेह बरसियो। वटे ही 19 जिला माए सामान्य और 17 जिला माए सामान्य सु कम मेह बरसियो है। और अब आखिर माए खास खबरां एकर फेरूं। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा हंगामा रे चालता आज भी कई बगत रोकनी पड़ी। रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए GDP बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारो अंदाजो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू 62,58,000 कास्कारा रो नामांकन। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा संत रविदास रा समता सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही। इंद्र सागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। वहां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। आप किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: ग्राम भारती की बाढ़ जोता सभी किसान भाइयों ने और सुनबा वाला सभी श्रोताओं ने अनिता की घनी घनी राम राम सा। और भूमिका जी आपने भी घना घना राम राम और कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है। इतना दिन बाद आया छो
1: भाई। धन्यवाद सा अनीता बहन, आपने भी घणो घणो राम राम जी। और जो माँ का श्रोता घण है, माँ का करसा भाई बहन है, आपने भी राम राम सा
0: जी। भूमिका जी देखो, जब भी आप किसान की बात करना चाहना
1: हाँ हाँ
0: तो खेता ही एक ख्याल आवचे पुरुष की, भाई किसान छे तो पुरुष ही
1: पुरुष
0: हो
1: ही होगो, सही बात है।
0: पण आप या भूल जाना चाह भाई किसान जो होवे छे वह अपनी महिला बहना भी होवे छे। जो खेती किसानी में छे ने जितनी पुरुष की भागीदारी होवे छे ने उतनी ही भागीदारी अपनी महिला किसान की भी होवे छे। खेत से लेर पशुपालन और फसल के बाद का जितना भी काम छे ने वह में महिला बहना की अपने बहुत बड़ी भूमिका रहवे छे। खेता में काम करवा से लेर फसल को चुनाव, खेत की योजना, बाजार में फसल बेच वो और जो भी जो निर्णय छे वह सारा में अपनी महिला भूमिका जो किसान की छे वह बहुत बड़ी रहवे छे। महिलाओं को योगदान बहुत बड़ो रहवे छे, कई बार छे तो इतनो बड़ो पर फिर भी उन्हें इतनी पहचान मिल को ना पावे।
1: और वही बात आ जावे ना कि जहाँ देखो, अगर एक बात बताऊं राजस्थानी में कि जहाँ बींद काम करे बींदनी अपने आप काम करे, कहवे ना कि हाँ चलो बींद जा रहे हो एक खेत में काम करवा जा रहे हो, उधर से उनकी बींदनी भी पीछे पीछे जा रही है। तो बस उही तरीका से अगर बात करा तो भाई पुरुष तो काम करे ही खेता में, लेकिन जो लारे लारे वहाँ की जो बींदनियां होवे महिलाएं होवे वो भी काम करें और सारो काम करें, जैसे कि बुवाई करें, कटाई करें, रोपाई करें, वहां को अच्छे से भंडारण भी करें, पशुपालन भी करें, होवे ना मिश्रित पशुपालन जिसमें खेती भी साथ में हो रही छे और पशुपालन भी करें। पर अनीता बहन एक बात और बता दूं, अगर पशुपालन की अगर आपने बात करा ना, पुरुष इतनी जल्दी ना उठ पावे है ना, उतनी जल्दी महिला उठकर काम कर लेवे, वहां का टावर टावरिया निमटा देवे और साथ के साथ वहां का रात में ही दिमाग में चले कि कल तो फलानी गायों को फलाना भैंसा को दूध निकालनो छे,
0: काई काई करनो छे, सारी जो काल की जीवन दिनचर्या छे वाकियान क्यान करनी छे। और देखो भूमिका जी, देखो जाओ ने तो पुरुष किसान से ज्यादा अपनी महिला किसान ज्यादा काम करे, क्योंकि एक तो वो घर को काम काज करे, गाय डांडा को काम करे और फिर लर लर है खेती किसानी को भी काम करे।
1: और देखो जी व्यवसाय और कर लेवे डेयरी को काम, भाई माना एक ये भी चीज रहे कि अगर आपन दूध निकाल रहा है घी निकाल रहा है तो आपन यहाँ बेचा भी सही, तो वहाँ की वो सब चीजें एक व्यवसाय के रूप में भी चाले है की तरीका से आपन ने खेत में काम करबो है न करबो है, अगर बारिश आ रही छ बाजार में कतनो उत्पादन चल रहे है, तो वो होवे ना कि जो कृषक भाई बहन पुरुष भाई बहन होवे वो वाना एक तरीका से आगे बढ़ावे भी।
0: और देखो जी आप बात करें भाई खेती किसानी में अपनी जो किसान बहना छे ने वह फसल तो तैयार हो जावे तो किसान उन्हें जो महिला बहना छे ना अपनी कृषि उत्पादन से अचार पापड़ मसाला आटा दाल मुरब्बो और यहाँ सबको उत्पाद करके भी वह मूल्य बढ़ावे छे। केवल कच्ची उपज बेचबा की बजाय वह अतिरिक्त आर्थिक आय बढ़ावा की संभावना भी रखे छे।
1: बिल्कुल सर। और अनीता बहन तभी तो कहवे है कि अपना देश में कृषि में लगभग 80% जो महिला छे वहाँ को योगदान छे।
0: बिल्कुल सा। और देखो ई योगदान की वजह से ही आपने जो खेती किसानी छे उमें महिलाओं की भागीदारी और भूमिका दोनों ही बराबर बढ़ती जा रही छे और उनकी मांग भी बढ़ती जा रही छे, क्योंकि आर्थिक निर्णय से लेर महिलाओं की भूमिका केवल खेत से मेहनत करवा तक ही सीमित को न कसी फसल कद लगानी छे, कितो खर्चो करनो छे, फसल कोड़ है और कद बेचनी छे, खेती से होबा वाली जो आय छे उन किया काम में लेनी छे, या सब फैसला में महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी छे। और मारो तो मानवो यो छे कि जद या अतरा बड़ा बड़ा फैसला में महिला आपकी भूमिका निभाओ छे ने तो कोड़ो ना कोड़ो या को जो निर्णय छे ना नतीजो छे ना वो भी बहुत बड़ो
1: निकले छे और सकारात्मक होवे छे। तो जी प्रकार से महिला अगर खेती में काम करे छे खुद का पुरुष का पैर मजबूत करे छे, उसी प्रकार से अगर बात कर रहे छे अगर आपन महिला की तो भाई देखो खेती में काम करे खुद का घर को काम करे टाबर टाबरिया ने संभाले और उही प्रकार से वो हर तीज त्योहार को भी मजो लेवे छे है ना, और हर त्योहार अच्छे से मनावे छे। अब देखो अनीता अगर बात करा सावन चल रहे है तो आपन महिला एक तरह से ये भी सोचे है कि भाई सावन

0: डाल रहे हो तो आपन लेरियो पेंडवा बिल्कुल ना भूला, और सावन रा गीत गाबो ना भूलिया। तो भैया जद सावन चाल रहे हो तो आपन भी एक बढ़िया सो सावन रो गीत बजा दिया
1: बिल्कुल सा।

0: तो सा गीत सुनता सुनता ही अब अपना कार्यक्रम में जानकारी को भगत हो चालो चाहे तो चाला जानकारी की ओर
1: बिल्कुल सा तो सुना दो एक बढ़िया सी जानकारी।
2: किसान साथियों कार्यक्रम में जानकारी देबा खातिर अपने साथ हैं डॉक्टर ताड़केश्वर शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सक शासन सचिवालय जयपुर में ये कार्यरत हैं और यहाँ से अपनी बातचीत को विषय रेवेलो रसोई घर से चिकित्सा। तो जो अपना किसान साथी कार्यक्रम सुन रहा है वाने यो ही बताओ कि कहीं रसोई घर से आपने जो ये बीमारियां हो छे या को उपचार संभव हो छे।
3: हाँ नमस्कार जी, जैसा आपने पूछा कि पौष्टिक और स्वादिष्टता ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो रसोई घर में होने चाहिए।
2: बिल्कुल सर।
3: लेकिन इसके अलावा हम रसोई घर से सामान्य बीमारियों की ही नहीं बल्कि जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं बीमारियां हैं उन दोनों का समूल उपचार और बचाव दोनों ही कर सकते हैं। यह बिल्कुल संभव है। आचार्यों ने भी ये कहा है, हमारे शास्त्र जो गुरु में कहे गए हैं उसमें आहार से सबसे पहले चिकित्सा बताइए, उसके बाद में जो चिकित्सा बताइए वो रसायन से बताइए। यदि आहार से थोड़ी दिक्कत हो तो उसमें रसायन ऐड करो, और यदि रसायन के बाद में भी थोड़ी और मतलब कमी रहती है तो फिर औषधियों का उपचार उन्होंने मार्ग बताया है।
2: तो सर ये बताओ कि रसोई घर से चिकित्सा का कौन कौन सा लाभ आपने हो सके छे।
3: देखो रसोई घर से चिकित्सा के तो कितने लाभ हैं इसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि हम समय के अनुसार औषधालय या हॉस्पिटल में जो जाने की बाउंडेशन है वो खत्म हो जाती है। रात को 12 बजे यदि हमारे चीनू पीनू के पेट में दर्द है तो हम उसका उपचार कर सकते हैं।
2: जी
3: यदि हमें ज्ञान हो, पूर्व में भी ऐसा रहता था कि दादी नानी के नुस्खे थे, अनुभवी जो लोग थे वो इन चीजों को बढ़ावा देते थे और उपयोग में लाते थे, इसको काम में लेकर ये लाभ उठा सकते हैं कि समय की बचत हो सकती है। दूसरा आर्थिक पक्ष, ये हमारा बहुत बड़ा है। आर्थिक रूप से जो दवाइयां हैं वो हम बाहर से मंगाते हैं, अधिकांश दवाइयां जो है विदेशों से आ रही है, तो हम जैसे इस बात को इस तरीके से ले सकते हैं कि जो निर्यात औषधियों का किया जाता है उस निर्यात को रोकने के लिए या कम करने के लिए ये हमारी औषधियां जो रसोई घर के अंदर उपलब्ध हैं वो हमें अतिरिक्त भार, चाहे वो सरकारी रूप से हो या हमारे घर के रूप में व्यक्तिगत हो, हम उससे बच सकते हैं। तीसरी बात हम यदि देखें तो समय की, जैसे हमने बताई कि किसी भी समय पे हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और ये सुलभ है। देश की मिट्टी, देश की हवा, देश की दवा हमेशा काम करेगी ही करेगी।
2: बिल्कुल सर।
3: आचार्यों ने ये कहा भी है कि जो औषध जिस जगह होती है वही काम देती है, और सामान्यतः किसी भी राष्ट्र की हम रसोई की स्थिति देखें तो सबसे समृद्ध रसोई है वो हमारे

0: ही रसोई ही मानी जाती है,
1: बिल्कुल,
0: जिससे हम संपूर्ण उपचार कर सकते। ये सर्वव्यापी, सर्व सुलभ और सर्वस्पर्शी है ये चिकित्सा, इसलिए हम इसको कभी भी काम में ले सकते हैं।
1: तो सर ये बताओ कि जो रसोई घर से चिकित्सा है विकी प्रभावशीलता का बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दो सर।
0: देखिए, प्रभावशीलता के रूप में तो हम देखें कि यदि आप, जैसे अभी कहा कि बच्चे के चीनू पीनू के मान लो पेट में दर्द हुआ, तो हमने हींग का उसके नाभि के चारों ओर लेप कर दिया,
1: बिल्कुल सर,
0: तो हम लोग फायदा देखते ही देखते हैं। इसी तरीके से यदि मान लो रात में कोई कीड़ा चला जाता है कान में, या कान में दर्द होता है, तो हमने तेल को गर्म करके और उसमें लहसुन डाल के उसको गर्म करके डाला, तो वो ठीक होता ही होता है।
1: जी,
0: तो और सामान्यतः हम देखते हैं कि हरी सब्जियां यदि हम खाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है और कब्ज सोर बीमारियों की एक जड़ है।
1: जी,
0: तो इसकी प्रभावशीलता में कहीं कोई कमी नहीं है, केवल हमें विश्वास होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए, जिससे हम इन चीजों को काम में लेकर रोगों का समूल नाश कर सके।
1: तो साहब देखो, या तो आप बात कर रहे हैं कि रसोई घर से जो चिकित्सा है वी का प्रभाव भी आप देख लिया, वी का लाभ भी आप जान लिया, पर अब आप बात कर रहे हैं सावधानी की, क्योंकि देखो कोई भी यदि दवा आप रोग के लिए काम में ले रहे या कोई भी चीज कोई रोग की चिकित्सा के तरह आप काम में ले रहे तो उनमें कुछ अच्छी चीजें भी हुए चाहे या कुछ अच्छी बात भी हुए चाहे जाको ध्यान रखना चाहिए, तो कौन कौन सी सावधानियां आप ई चिकित्सा में रख सका चा?
0: देखिए, सावधानी तो हर चीज में ही अपने को रखनी पड़ेगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
1: बिल्कुल सर।
0: और खाने पीने की चीज के में तो विशेष तौर पे हमें सावधानी रखनी ही पड़ेगी।
1: जी।
0: जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कान में गर्म तेल डाला हमने, तो ऐसे भी नहीं है कि किसी ने सुन लिया, ग्रामवासी भाई जैसे सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई वैद्य जी ने बताया था कि कान में दर्द हो रहा है तो लहसुन को सरसों के तेल में गर्म करके और कान में डाल दो, तो वो इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि भाई स्किन जो है कान के अंदर के पर्दे को है उसको नुकसान पहुंचा दे,
1: जी,
0: या फिर किसी अति मात्रा, अति न्यून और विरोधी मात्रा, ये सब चीजें नुकसानदायक है। और आजकल तो वैसे भी जो रसोई घर में जो उत्पाद हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हैं, वो आप लोग ग्रामवासी जानते हो कि उनमें कीटनाशकों का इतना प्रभाव है कि उसको एक सामान्य मात्रा से ज्यादा हम नहीं ले सकते, इसलिए उसको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सावधानियां तो हमें रखनी ही पड़ेगी।
1: जी, तो सर बात करें आप कि सामान्यतः रसोई घर में ऐसी कौन कौन सी वस्तुआं छे, ऐसी कौन कौन सी खाद्य सामग्री छे जो मुख्य रूप से आप औषधियां के रूप में काम ले सका छा और वहाँ का उपयोग कहीं कहीं छे सा?
0: बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है। घर में हमारे जो किचन के अंदर उपलब्ध चीजें हैं वो सभी, आचार्य कहते हैं नान औषधि भूतम जगत किंचित, विश्व में ही कोई भी चीज है वो औषधि के अलावा नहीं है, योजकस तत्र दुर्लभ है, केवल उसकी योजना करने वाले होना चाहिए।
1: जी।
0: तो ऐसे ही जो है हमारे जो गृहिणी है वो एक गृह मंत्री का दायित्व देती है, उसके लिए परिवार का वित्तीय बजट ही नहीं बल्कि परिवार के एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसको पता रहनी चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियों में मैं कौन कौन से मसालों का उपयोग कर सकती हूँ। जैसे अब हम बात करें तो हमारे शास्त्रों में आहार के जो वर्ग बताए हैं उसमें 12 वर्ग बताए थे। उसमें हम जैसे बात करें शूक धान्य, शमी धान्य, शूक धान्य में आ गए गेहूं, जौ, चना, ये सब, शमी धान्य उसमें दालें आ गई, ऐसे ही मांस वर्ग है, ऐसे ही फल वर्ग है, अलग अलग फलों के अलग अलग गुण हैं, ऐसे ही शाक वर्ग है, उसमें सब्जियां जो हैं, है ना, लौकी, तुरई वगैरह इस तरीके की, तो ये है। फिर हरित वर्ग है, हरित वर्ग के अंदर उन्होंने बताया जैसे चौलाई है, बथुआ है, मेथी है, पालक है। फिर ऐसे ही मध्य वर्ग आता है, मध्य की जैसे संधान कल्पते हैं, जैसे हम कांजी बनाते हैं गाजर का या मूली का, इस तरीके से इन चीजों का भी औषधीय प्रयोग बताया। फिर जल वर्ग है कि कौन सा जल, चाहे बरसात का है, तालाब का है, कुएं का है, ये कौन सा जल है, वो उसका क्या प्रभाव है। ऐसे ही गो वर्ग है, गो वर्ग में गाय से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे दूध है, छाछ है, दही है, श्रीखंड है, उनके सबके गुण हैं, वो हमें पता होने चाहिए। इसी तरह इक्षु है, गन्ने की खेती करते हैं, तो इक्षु और इक्षु के विकार, उनके भी अलग अलग महत्व, औषधीय गुण है, इनका वर्णन है। इसी तरह से बनाने के जो तरीके, कृतान्न वर्ग है, उसमें बनाने के तरीके हैं, पेया है या उसको पानी कितना मिलाना है तो उसका क्या गुण हो जाएगा, या अपन राबड़ी बनाएंगे तो उसका क्या गुण हो जाएगा, ये इस तरीके से वर्गों का वर्गीकरण किया गया है।
1: जी सर।
0: जो एक अनुभवी चिकित्सक, यदि मैं तो ये कहता हूँ कि स्वस्थ व्यक्ति तभी हो सकता है जब स्वस्थ परिवार और स्वस्थ ग्राम हो और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारा जो चिकित्सक समाज है जिसने इन चीजों का शास्त्रोक्त अध्ययन किया है वो गांव वालों को समझाए, इन
1: जी
0: चीज को विस्तार से समझाए कि भाई जीरा किस काम आता है, हल्दी किस काम आती है। जैसे मान लो जल जाए, किचन में ही जल गए, आजकल ये अमूमन दुर्घटनाएं हो जाती है कि कुकर की सीटी से या कुकर का ढक्कन एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। अब जैसे ही यदि ब्लास्ट हो जाता है तो हम यदि ग्वार पाठा अपना उसका ऊपर का छिलका उतार के और गुदा उसकी बिल्कुल मालिश कर दें, उसका लेप कर दें, रगड़ते जाएं, तो उससे जलन भी कम होगी और फफोला भी नहीं पड़ेगा और चिकित्सा भी हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: जितना रगड़ेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, कहीं कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये 100% अनुभूत है और मैं इस मंच से, आकाशवाणी से ये आह्वान भी करना चाहूंगा और आग्रह भी करूंगा लोग कि इसको परीक्षण करें और निश्चित तौर पे फायदा ही होगा, एक
1: जी
0: परसेंट भी इसमें नुकसान नहीं है।
1: जी सर
0: ऐसे ही हल्दी है। अब हल्दी की जो लेटेस्ट रिसर्च वर्क में स्टडी हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक एक्शन मिला है। हमारे मान लो किसी को दस्त हो रहे हैं तो जीरा उपलब्ध है, पेट के अंदर गर्मी है, एसिडिटी की शिकायत है तो उसमें हम सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं, धनिए का प्रयोग कर सकते हैं, जीरा है, इलायची है, लौंग का ऊपर का हटा के लौंग का प्रयोग किया जा सकता है। अब एसिडिटी की जो आजकल सामान्य बात है, अंधे तरीके से कई मेडिसिन जो अपने आप से काउंटर पे से लाके और यूज में लेते हैं,
1: जी
0: तो उनसे बचने के बजाय यदि वो जैसे एक 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम इलायची और 20 ग्राम लौंग, लौंग का ऊपर का जो फूला हुआ भाग है
1: जी
0: उसको उतार कर और इन सब का चूर्ण बना के रख लें
1: अच्छा साहब
0: और बिल्कुल गर्म पानी के अंदर उसको 2 चम्मच डाल के ढक के रख दें और सुबह सुबह उसका सेवन करें, तो ये गैस और अम्ल पित्त खट्टी डकार वाली जो समस्याएं ये खत्म हो जाएगी,
1: बिल्कुल साहब
0: है ना। इसी तरीके से हम लोग, हमारे यहाँ तो खाने पीने के पानी का भी जो मतलब है औषधि रूप में उपयोग बताया कि जैसे पानी को औषधि के रूप में बताया, तो पानी को ग्रहण करने के नियम बताएं, अजीर्णे भैषज अम्वारी, भैषज मतलब दवा,
1: जी
0: अजीर्ण हो रहा हो आपका, रात भर से खाना पीना पचा नहीं हो तो आपने सुबह पानी पी लिया पेट भर के, तो भैषज ये दवा का काम करती है। जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजन पच गया तो पचने के 2 से 3 घंटे मतलब खाना खाने के 3 घंटे बाद में यदि वो पच गया, उसके बाद में हमने जो पानी पिया वो हमें ताकत प्रदान करेगा, तो ये
1: जी
0: ताकत की दवा हो गई जीर्णे वारी बलप्रदम। भोजने चाम्रतम वारी, भोजन के दौरान यदि घूंट घूंट करके पानी पीते हैं हम तो वो भोजन के मैस्टिकेशन जो है उसके मतलब लुगदी को प्रॉपर वे में बनाएगा और उसके पाचक तत्व जो भी है उसमें जो अपने कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क है ना, उसको स्वाभाविक रूप से करता है तो उस क्रिया को करेगा। और भोजनान्ते विषप्रदम, और यदि हमने भोजन के तुरंत बाद में पानी पी लिया तो वो हमारे जो आमाशय के अंदर जो डाइल्यूट HCl है उसको और डाइल्यूट करेगा, तो और डाइल्यूट होने से आम की बीमारियां होगी। और रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो, तो
1: अच्छा
0: जो
1: सर
0: अग्नि मंद हो गई
1: जी जी
0: तो उससे सारी बीमारियां पैदा होगी। तो
1: बिल्कुल
0: अब
1: सर
0: मैंने एक उदाहरण बताया कि पानी से ही चिकित्सा हो सकती है, उसका प्रयोग कैसे करना है। ऐसे ही है छाछ, हमारे गांव के भाई लोग वो खूब प्रयोग करते हैं। तो भोजनान्ते पीवेत तक्रम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तो भोजन के बाद में तो जो छाछ पी जाती है वो अमृत के समान बताइए, लेकिन उसको दिन के समय पीना चाहिए, रात्रि में कभी नहीं पीना
1: अच्छा
0: चाहिए। जब छाछ की बात आई है तो मैं यहाँ पे ये भी जरूरी समझता हूँ कि दही जो है,
1: जी
0: लोग ये समझते हैं कि दही को खाने का समय गर्मी है, तो लेकिन आचार्यों ने कहा है कि दही गर्मी के अलावा और ऋतु है जैसे सर्दी की ऋतु है उनमें सेवन करना चाहिए, ना कि गर्मी की ऋतु में,
1: अच्छा सर
0: क्योंकि दही की जो तासीर है वो गर्म होती है।
1: अच्छा अच्छा
0: इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप लोग दही को सर्दियों के समय विशेष रूप से सेवन करेंगे तो उसमें प्रोबायोटिक्स आपको मिलेंगे, उससे आपके पेट की, आमाशय की बीमारियां जो हैं, आंतों की बीमारियां हैं, उसमें बहुत बहुत फायदा मिलेगा। इसी तरह से अपने जो गरम मसाले हैं, नमक मिर्च, काली मिर्च, सौंठ, पीपल, हल्दी, अदरक, ये जो मसाले हैं, इलायची, जावित्री, जायफल, इनका प्रयोग करना भी हमें आना चाहिए। और बाजरा, गेहूं, जो कब कैसे सेवन करना है और इसको विस्तार से समझाना संभव नहीं है, ये एक अलग ही विषय हो कि एक ही चीज लेके बैठे तो ये बताया जाना संभव है कि भाई किस तरीके से अपन खाद्यान्न का प्रयोग करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम जैसे बात करें कि फल सब्जियों की हमने बात करी कि फल जिस मौसम में, रीजनल और सीजनल,
1: जी
0: वो सर्वश्रेष्ठ है। हमें जिस रीजन में जो चीज, अब यदि मान लो केरल के अंदर बाजरा खाया जाए तो वो इतना गुणकारी नहीं है जितना राजस्थान में उत्पादित होने वाला बाजरा राजस्थान में।
1: मतलब
0: ये
1: जलवायु भी निर्भर करे छे
0: बिल्कुल
1: पे।
0: बिल्कुल जलवायु क्षेत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, वायु, जल, देश और काल।
1: जी
0: काल के अनुसार मान लो अब जैसे बाजरा गर्मी में खाएं तो वो भी चीजें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा
1: मतलब
0: कि
1: मौसम के
0: नुकसानदायक,
1: हिसाब से खान पान रखा
0: मौसम के
1: आप
0: हिसाब
1: आपने।
0: से। इसीलिए सीजनल और रीजनल इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही तेलों का प्रयोग है, घी का प्रयोग है। अब तेल की महिमा ऐसी भी बताई है, घृतात शत गुणम तैलम, घी से 100 गुना तेल लाभकारी बताया,
1: जी
0: लेकिन कब? मर्दनात न तो भक्षणात्, मर्दन या मालिश करने से, ना कि खाने से।
1: अच्छा साहब,
0: तो उसकी मालिश कीजिए आप, और तेल भी बदल बदल के लीजिए ना। आप एक ही तरह का तेल प्रयोग करेंगे वो गलत है। और कई चीजें जैसे सोयाबीन का तेल है, ये हमारे मनुष्य की जो आते हैं उनके लिए अनुकूल नहीं है। तो मैं आग्रह यही करूंगा कि सोयाबीन के तेल की जगह हम लोग जो दूसरे हमारे पारंपरिक तेल हैं, मूंगफली का तेल है, सरसों का है, तिल का है, इन तेलों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें अपन। ज्यादा से कहने का मतलब ये नहीं कि हम, भाई वैद्य जी ने बताया था कि खूब करना है, एक लिमिट तेल की मात्रा कम होनी चाहिए।
1: मतलब खावा पीवा में आप यही तेला ने प्रयोग करा।
0: हाँ, खाने पीने में इन्हीं तेलों का प्रयोग करें हम।
1: जी, तो आज जो सामान्य सी जो बीमारियां हैं जी, यहाँ के आप रक्तचाप देख लेवा, मधुमेह देख लेवा, तो जो या फिर आप हृदय वाली कोई बीमारी देख लेवा, तो या को इलाज या के लिए थोड़ा सा फायदेमंद रसोई में ऐसी कौन सी चीजें यानी फायदा पुगावे।
0: अब जैसे ये आपने जो तीनों बीमारियां बताई, ये तीनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हैं,
1: जी
0: है ना, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। तो इन चीजों के लिए अब जैसे हम नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो सेंधा नमक उसका प्रयोग करेंगे, तो सेंधा नमक जो है हमारे रक्तचाप में फायदा भी करेगा, और जो हम सादा नमक ले रहे हैं उसके विपरीत प्रभाव से जो नुकसान हो रहे थे वो चीज भी हमें फायदा करेगी। इसके अलावा जो सौंफ है, धनिया है, ये चीजें रक्तचाप में हमें बिल्कुल हमारे किचन से ही फायदा पहुंचाने वाली चीजें हैं।
1: जी
0: ऐसे ही हम शुगर की बात करें तो शुगर के लिए दाना मेथी है, बिल्वपत्र है, बिल्वपत्र का चूर्ण है, कड़ी पत्ता है, ये चीजें हमें स्वाभाविक रूप से फायदा करती है।
1: जी
0: और आपने तीसरी बात बताई हृदय वाली, तो हृदय के लिए क्या है, हृदय का पंपिंग सिस्टम का काम है ब्लड को पंप करना और शरीर के हर हिस्से में पहुंचाकर उसको पोषण प्रदान करना। तो ये क्रिया सम्यक रूप से कर सके इसके लिए उष्ण पदार्थों में जैसे लहसुन है, अदरक है, आपका सेब का सिरका है, ये सब चीजें हमारी रसोई घर के अंदर उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल
0: इनका
1: साहब,
0: प्रयोग हम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि बचाव तो 99 से 100% रहेगा ही रहेगा, और बीमारियों के उपचार में भी फायदा ही रहेगा।
1: जी साहब। तो किसान साथी, हूँ डॉक्टर ताड़केश्वर शर्मा, आयुर्वेदिक चिकित्सक, शासन सचिवालय जयपुर में ये कार्यरत हैं। आपने बीच पधारिया और इतनी बढ़िया उपयोगी जानकारी रसोई घर से चिकित्सा विषय माते है आपने साथ साझा करी, आपको घना मानसू धन्यवाद साहब।
2: अभिलाषा जी, आपको भी घणो घणो धन्यवाद, जो इतनी चोखी जानकारी आप दिलाया। और देखो सा श्रोताओं, कितनी सारी चीजें आपने रसोई घर में से ही बताया, जी को आपा तुरंत जो जरूरी चीजें चाहे भाई, अभी आप डॉक्टर करने जा
1: ना
2: सका
1: जा
2: या घर
1: सके,
2: घर में ही कोई इलाज
1: छोटो
2: कर
1: सो
2: सका।
1: इलाज कह सके कि एक छोटो सो
2: हाँ
1: चिकित्सा घर अपनी रसोई भी हो गए।
2: बिल्कुल, तो ये चीजें आपा ने ध्यान देनी चाहिए, और ध्यान अब आपा समय पर भी देवा
1: बिल्कुल
2: भाई।
1: सानीता बहन, देखो समय हो चालू है, और देखो भाई भाई बहनों ज्यादा दूर जावा की जरूरत कोई ना, खेती बाड़ी में फिर आपसे मुलाकात हो रही है, तब तक दियो इजाजत भूमिका और
2: अनिता ने
1: करा राम
2: राम
1: राम
2: राम सा।
1: सा।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम भारती। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: ખેતીવાડી સુનવા વાળા સભી કિસાન ભાઈને ઓર સુનવા વાળા સભી શ્રોતાવાને અનિતા કી ઘણી ઘણી રામ રામ સા ઓર ભૂમિકાજી આપને ભી ઘણા ઘણા રામ રામ
1: ભાઈ અનિતા બેન આપને ભી રામ રામ સા ઓર જો માગા કરસા ભાઈ બહેન હે વાને ભી રામ રામ જી
0: જી ભૂમિકાજી ઘણા ઘણા રામ રામ ઓર દેખો સા બરસાત કો મોસમ ચાલ રહ્યો છે ઓર ઈ બરસાત કા મોસમ મે અબાર આપા દેખા તો ખૂબ સારી સબ્જિયાં છે જો આપણા કિસાન ભાઈ લગા મેલ્યા છે ભીંડી લોકી તુરઈ કરેલા ચોળાઈ અરબી ઓર ભી બહુ સારી સબ્જિયાં છે જો અબાર ખૂબ ચોખ્ખી માત્રામાં હેવે છે ઓર ચોખ્ખી પેદાવાર સે ચોખ્ખી આપણે કિસાન ભાઈને આર્થિક લાભ ભી વાસે હોવે છે
1: દેખો અનિતા બેન કઈ હોવે હે કી જો રીતમાં હોવે જેસે સર્દી કી બાત કરા ગરમી કી બાત કરા યા મેં તો દેખભાળ કી ભી કમ જરૂરત હોવે હે લેકિન અગર બાત કરા વર્ષા ઋતુ કી તો વર્ષા ઋતુ મેં જો કીડા હોવે હે ફંગસ હોવે હે સડન હોવે હે વો સબસે જ્યાદા લાગે હે ઓર સબસે જ્યાદા લાગે ઓર એમાં સબસે જ્યાદા જિમ્મેદારી એક તો જો કૃષક ભાઈ બહેન હોવે હે વાં કી ભી હોવે હે કે કી તરીકા સે વાના સબ્જિયાં કો રખરખાવ કરની ચાહી છે ઓર દૂસરી જિમ્મેદારી હોવે હે ખરીદવા વાલા કી વો યે ચીજા સે બિલકુલ ભી વો ના કરે કે વાના ઘર મેં લાવા કે બાદ બઢિયા તરીકા સુ ધોવે ઓર ફેર હી કામ મેં લેવે
0: બિલકુલ સા ભાઈ કહેવા કો મતલબ યહી છે ભાઈ રખરખાવ બહુ જ્યાદા જરૂરી છે
1: દોનો હી તરફ સે દોનો હી તરફ સે જો બેચે વાના જો ઉગાવે હે વાને ઓર જો ખરીદે હે વાને
0: ક્યુંકી ભાઈ જીતની ચોખ્ખી પેદાવાર હો રહી છે જીતની ચોખ્ખી આર્થિક આય આપણે હો રહી છે તો ઉતનો હી જરૂરી છે કે અબાર કા ઈ મોસમ મે જો સબ્જીયા આપણે બો રખ્યા છે વામે કસી કસી બાતા કો આપણે ધ્યાન મે રાખણો છે
1: ક્યુંકી
0: થોડી સી ચીજ કી ભી અગર આપા ચૂક કર દિયા ને તો નુકસાન તો હોણો હી હોણો છે ભાઈ દેખો સા ખેત મે પાણી જમા ન હોવા દ્યા નિયમિત રૂપ સે નિરાઈ ગુડાઈ કરતા રહેવાને
1: और देखो अनीता बहन ई मौसम में सबसे ज्यादा सब्जियां होवे बेल वाली तो जो बेल वाली सब्जियां होवे ना वाना सपोर्ट मतलब एक डंडा को सहारो देबो बहुत जरूरी होवे ताकि या जैसे टमाटर होगी मिर्ची होगी लौकी तोरई करेलो जाने बांस या फिर जो जाली को सहारो होवे ना वहां से ऊपर बांध देवा ताकि जो फल और जो पत्तियां होवे ना वो जो गीली मिट्टी का संपर्क में वहां से ना आवे और सड़े भी नहीं
0: क्योंकि धरती का संपर्क में आवली तो वह खराब होवा की आशंका बनी रहे छे और देखो सा जो खरपतवार छे उन भी समय समय पर निकालता रहे और मिट्टी चढ़ापा और खरपतवार को तो अपन ध्यान रखना ही छे पत्तिया में रोग या कीट लागेड़ो दिखाई देवे तो अपन ने तुरंत वहां को उपचार करनी चाहिए और इके लिए जरूरी छे कि आप समय समय पर આપણી જો સબ્જિયાં છે વાં કી નિગરાની કરતા રહેવા બીચ બીચમાં વાને સંભાળતા રહેવા જીસે કી અગર કોઈ કીટ લાગ્યો છે તો પહેલી સે આપણને પતો લાગ જાવે
1: અચ્છા
0: ઓર દેખો સાહેબ બરસાત કા મોસમ મે નમી જ્યાદા હોવા સે ફફૂંદ જનિત રોગ તેજી સે ફેલે છે ઈલીએ ખેત મે જ્યાં કી આપા પહેલી બતાયા છે ભાઈ પાણી બિલકુલ ભી જમા ન હોવા દે રોગગ્રસ્ત પત્તાને હટા દે ઓર રોગગ્રસ્ત અગર કોઈ ફળ છે તો વાને ભી હટા દે ખેત મે હવા કો જો આવાગમન છે વો ભી સહી તરીકા સે બન્યો રહેણી ચાહી છે બસ યહી કુછ બાતા છે જ્યાં કો આપણા કિસાન ભાઈને ધ્યાન રાખણી છે
1: બિલકુલ સર
0: ઓર અબ
1: દેખો અનિતા બહેન સમય ભી બઢતો જા રહ્યો હે લેકિન આપણને તો જાણકારી દે દી લેકિન જો આપણા જો અતિથિ છે વો ભી એક બહોત બઢિયા જાણકારી લે રહ્યા હે સુના દો સર વો જાણકારી
0: બિલકુલ સર પહેલી જાણકારી લે લેવા
2: આજ આપણે બીજ પધાર્યા હે શ્રી રામપ્રસાદ ડિડેલ બીજ પ્રમાણીકરણ અધિકારી બીજ પરીક્ષણ પ્રયોગશાલા દુર્ગાપુરા જયપુર છે ये आज आपने खरीफ फसलों में संरक्षण कार्य के बारे में जानकारी देगा और आंसू आप जो भी किसान भाई ने परेशानी आवे संरक्षण कार्य में बाकी पूरी जानकारी आंसू आप लेवा राम राम सा
3: राम राम सा
2: आप ये बताओ अभी खरीफ फसलों में कौन कौन सा महत्वपूर्ण जो संरक्षण कार्य है जो किसान भाइयों ने इस समय करवा की आवश्यकता है बाका बारे में जानकारी बताओ
3: किसान भाइयों खरीफ की फसलों में बाहरी ताकतों को रोकने के लिए या बचाव के लिए या फसल को बचाने के लिए उसकी बढ़वार गुणवत्तापूर्वक हो जिसके लिए उसे उत्पादन ज़्यादा मिले किसान को तो इसके लिए खरपतवार को हटाना हमारी जो है पहली प्राथमिकता है खरपतवार में दूसरे रोग भी होते हैं कीट भी रहते हैं तो खरपतवार को वो इस समय हटाए क्योंकि जो अभी समय ऐसा है कि वो 25 से 30 दिन की फसल हुई है 5 से 7 पत्तों की स्टेज है तो उसमें सर्वप्रथम पादप जनित जो रोग है या खरपतवार है उसको वो हटा के उसकी बढ़वार के लिए काम करें और यदि कोई किसी प्रकार का रोग दिखाई दे किसान भाई समय पर निरीक्षण करते रहें यदि कोई रोग दिखाई दे तो उसको पौधे को उखाड़ के या किसी निकटतम कृषि विशेषज्ञ या सुपरवाइजर या कृषि अधिकारी से मिलकर उसका रोकथाम के लिए समाधान जरूर करें
2: बिल्कुल और खरीफ फसलों में जो खरपतवार अपन नियंत्रण करा बी में खरपतवार नाशक की जगह निराई गुड़ाई को कायम महत्व है और कितो महत्व है बी की भी जानकारी थी बताओ।
3: किसान भाइयों जो खरीफ की फसलें हैं उसकी अच्छी बढ़वार के लिए खरपतवार को बुआई से 25 से 30 दिन में उसकी निराई गुड़ाई करनी जरूरी है। और निराई गुड़ाई और खरपतवार नाशी में यही फर्क है कि निराई गुड़ाई करने से मिट्टी पोली हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन का संचार हो जाता है, हवा का संचार होता है और पपड़ी टूटने से उसकी नमी भी बनी रहती है। पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन और नमी रहने से और उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट वो मिलने से अच्छी बढ़वार आती है। तो खरपतवार नाशी के जगह पर निराई गुड़ाई को यदि प्रेफरेंस किसान दे तो उनको अधिक फायदा होगा, अच्छी बढ़वार होगी और अगली फसल भी अच्छी हो।
2: एक साथ ही किसान भाई अगर खड़ी फसल में खरपतवार नाशी को प्रयोग करवो चाहे तो वो की प्रकार करे और कैसा समय में करे।
3: यदि किसान दूसरो तरीको अपनाना चाहे कि लेबर महंगी है या उसके पास समय कम है या बारिश हो रही है और उस समय कम मिल रहा है तो वो खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकता है। तो उसके लिए वो खड़ी फसल में खरपतवार नाशी के लिए खरपतवार का पहले चुनाव करें कि किस तरह की खरपतवार उसके खेत में है, जैसे घास वर्ग की है या चौड़ी पत्ती वाली है या नरकट है और कौन सी फसल में है। आपने किसान भाई जो फसल बोते हैं जो दलहनी फसल है या घास कुल की फसल है जिसमें बाजरा ज्वार मक्का है तो उसमें खरपतवार का प्रकार और फसल का प्रकार उसको देख के ही खरपतवार नाशी का चयन निकटतम विशेषज्ञ या सुपरवाइजर या कृषि अधिकारी को पूछ के उसकी मात्रा जो बताई गई है उसके अनुसार ही करें और खरपतवार नाशी का छिड़काव या स्प्रे करने से पहले उस यंत्र को पूरी तरह धो करके फिर काम में लेना चाहिए स्प्रे। आप किसान भाई जो सोयाबीन में अभी खड़ी फसल है और खरपतवार नाशी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो वहाँ पानी का बरसात का ज़्यादा आशंका है जिसमें सोयाबीन होती है तो इस समय वो 20 से 25 दिन की यदि सोयाबीन है तो इमेजो थाइपर 100 ग्राम 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से वो छिड़काव कर सकते
2: हैं। एक साथ में खरपतवार नाशक की तो जानकारी ले ली और आपने जो दलहनी फसल है बम मुख्य रूप से कौन कौन सा कीट लागे और बाकी कहीं रोकथाम करे अपना किसान भाई वह जानकारी भी दे बताओ।
3: जी किसान भाइयों दलहनी फसलें जिनमें मूंग मोठ चवड़ा उड़द अरहर ये फसलें सम्मिलित है जिनसे दालें बनती है तो इनको इनमें जो मुख्य जो कीट है जैसे मोइला है चेप्पा एफिड ये पौधों की जो नरम भागों को चूस कर हानि पहुंचाते हैं इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोइड 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में वो घोल बनाकर छिड़काव करें या इमिडो क्लोरोपिड एक दवाई आती है 17.8 SL के अंदर उसको 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से वो है ना 600 लीटर पानी का घोल बनाकर प्रति हेक्टर में वो छिड़काव करके उसका नियंत्रण कर सकता है। उसी प्रकार एक जेसिड है जिसे लीफ हॉपर भी बोलते हैं ये कीट पौधों की पत्तियों या अन्य नरम भागों को खाता है और पत्तियां मुड़ जाती है पत्ते झुलसे हुए जैसे दिखाई देते हैं ये उनके सिम्टम है फसल के और उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उसकी रोकथाम के लिए भी डाइमिथोइड 30 EC 2 ml प्रति लीटर की पानी से वो छिड़काव कर सकता है या इमिडो क्लोरोपिड 17.8 SL प्रति लीटर जो 3 लीटर पानी की दर से 600 लीटर पानी में वो घोल बनाकर 1 हेक्टर के अंदर उसका छिड़काव कर सकता है। यदि ये इसके तरह के सिम्टम या इंसेक्ट कीड़े यही वापस दिखे तो 15 से 20 दिन में वो दोहरा सकता है। उसी प्रकार जो तन्ना मक्खी होती है जिसको स्टेम फ्लाई बोलते हैं ये जो कीट किसान भाइयों पत्तियां के जगह वो तने के अंदर वो छेद करता है वो ज़्यादातर जैसे मटर की जो फसल है उसके तने में वो छेद करके और जो मक्खी है छोटे छोटे वो अंडे दे देती है और लार्वा और कैटरपिलर भी उसके द्वारा वो तने के जो नरम भाग है या पत्तियां हैं उनको चूसते हैं उसका रस और फूलों के रस चूसता है और अल्टीमेटली पैदावार कम हो जाती है या पौधा सूखने लग जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए 10 से 15 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन जो दवाई होती है 3G उसको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुरकाव करके छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार किसान भाइयों इन दलहनी फसलों में जो फली छेदक जिसको स्पॉटेड पॉड बोरर बोलते हैं जो फलियां आने पर ये होता है जो जहाँ पर कहीं अगेती कहीं फसल है किसी ने बो रखी है तो वहाँ पर जहाँ फलियाँ आ रही है कम तो वहाँ पर ये कीट है वो फलियों को छेद बना के उसमें नुकसान पहुँचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 0.2% सेविन या 0.05% इंडोकार्ब है वो आप उसको लिए डाइमिथेन M45 भी आप छिड़काव कर सकते हैं या सफ़ेद मक्की हरा तेला थ्रिफ जिसको बोलते हैं वो भी दलहनी फसलों के अंदर उसका प्रकोप रहता है। तो इस तरह के कीट का जो नुकसान है वो खुद तो नुकसान पहुंचाते हैं उनकी निप अवस्था आती है वो भी उस पौधे को नुकसान पहुंचाती है तो किसान भाई समय पर उसको देखते रहें फसल का निरीक्षण करते रहें और सफेद मक्खी के रोकथाम के लिए भी डाइमिथॉइड 30 cc 10 मिलीलीटर प्रति लीटर के पानी में या इमिडोक्लोरोपिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर के पानी में वो 600 लीटर पानी का घोल बनाकर 1 हेक्टर के लिए सफिशियंट है उसको छिड़काव करें। और यदि यही वापस उस किसान को निरीक्षण के समय या देखने में ये कीड़े या इंसेक्ट दिखते हैं तो वो किसान वापस उसको दोबारा उसी दवाई का घोल बना के वो छिड़काव कर सकते 15 से 20 दिन बाद में उसको दोहरा सकते।
2: या तो अगे अपने जो खरपतवार है बाकी और कीटा की जानकारी अभी के साथ में जो दलहनी फसलें हैं बम में कौन कौन सा तो रोग लागे और किसान भाई बाकी कई तरह रोकथाम कर सके।
3: किसान भाइयों जो दलहनी फसलों में मुख्यतः जो रोग है जैसे जीवाणु गलन है जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं वो लगता है और बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है तो इसके अंदर दवाई है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 400 ppm उसका वो छिड़काव कर सकता है। दूसरी चूर्ण फपुंद या पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं सफेद सफेद पाउडर आता है ये उसके एक फंजाई होती है कवक वो पत्तों के ऊपर ज़्यादा दिखाई देती है पुरानी पत्तियों के निचली सतह पर देखोगे तो वो धब्बे किसान भाइयों दिखाई देंगे तो उसको धीरे धीरे ये धब्बों की संख्या और आकार बढ़ते जाते तो किसान भाइयों इस तरह के यदि रोग के लक्षण दिखे तो उसको नियंत्रण के लिए गंधक चूर्ण है जो बाजार में मिलता है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका बुरकाव कर सकता है या 2.5 ग्राम गुलनशील गंधक है वो प्रति लीटर पानी में भी उसका छिड़काव करके उसको किसान भाई नियंत्रण में कर सकता है इस रोग को। इसके अलावा पीला मोजेक वायरस है जिससे फसल भी पीली पड़ जाती है ये वायरस कीट के द्वारा फैलता है तो पहले कीटों का भी नियंत्रण हो जाए तो ये पीला मोजेक किसान भाइयों के खेतों में कम आएगा। यदि आ भी गया तो वो इमिडोक्लोरोपिड है एक दवाई वो 17.8 SL प्रति लीटर 600 लीटर पानी का घोल बनाकर आप प्रति हेक्टर में उसका छिड़काव कर सकते। और यदि जड़ गलन कोई रोग किन्हीं में दिखाई दे रहा है दलहनी फसलों में तो जड़ गलन के रोग के लिए नियंत्रण के लिए थायराम या कैप्टोन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके यदि बोया है तो ये रोग कम आता है। यदि उसके बाद में मर्दा के उपचार के लिए भी वो 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा है 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट के गोबर में खाद में मिलाकर वो जुताई के समय डालेगा तो ये रोग कम आएगा। तो इसमें ये बीजोपचार वाला है ये बीज के द्वारा ही फैलता है जड़ गलन वाला बाद में इसका उपाय थोड़ा कम कंट्रोल में आता है तो इसके लिए बीजोपचार किसान भाई उस टाइम करते तो सही रहता है। यदि अभी भी कर सकते हैं तो वो कोई बुआई कर रहा है तो वो कर सकता है।
2: यह तो होगी दलहनी फसलों की बात। अब आप बात करें जो भी अपनी नाज वाली जो फसलें हैं जहाँ ज्वार है बाजरा है मक्का है हम आप जो कीट है बंक नियंत्रण की प्रकारों करा और कौन कौन सा है जो कीट जो हम लगे।
3: किसान भाइयों जो ज्वार बाजरा मक्का ये ग्रेमिनी कुल की फैमिली की ये मेम्बर है तो इसके अंदर एक जैसे ही पत्ते और एक जैसी इनकी बनावट है तो इनमें सूट फ्लाई जब एक कीट है तन्ना मक्खी जिसको बोलते हैं ये ज्वार बाजरा मक्का के अंदर आता है। अंकुरण अवस्था के जो है 1 महीने के अंदर इसका ज़्यादा प्रकोप रहता है और कीट है विकास के जो उसका बिंदु है मेन जहाँ से ये ग्रोथ करता है सड़े हुए जैसे वो मतलब काटने पर वो अंडे देने पर वहाँ से सड़ जाता है उस क्षेत्र का तो और बाद में धीरे धीरे संक्रमण ज़्यादा फैल के पत्तियाँ मुरझा जाती है और सूख जाती है जिसे डेड हर्ट की बोलते हैं। मतलब आप किसान खेत में देखेगा तो बीज का जो जगह है मक्का या ज्वार की वो सूख जाती है और उसको खींचेगा तो वो निकल भी जाएगी तो ये इसका एक लक्षण है। और इसके नियंत्रण के लिए जो बुआई के बाद में है ये इमिडोक्लोरोपिड एक दवाई है उसी को ये अपना सकते हैं या डाइमिथॉक्स 17 WS है वो 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का यदि उपचार करके बोया तो बुआई के टाइम आप अपना सकते हो पर बाद में ये इमिडोक्लोरोपिड से ही नियंत्रण हो सकती है। उसी प्रकार एक तना छेदक कीट है जिसको स्टेम बोरर बोलते हैं ये जो फसल है 2 महीने के लगभग ही हो जाती है तो वो तने के अंदर वो छेद करके पकने तक वो उसमें आक्रमण उसका रहता है और फसल कमज़ोर हो जाती है और उनमें सीटे नहीं बनते अच्छी तरह से और वो फसल सूख जाती है तो उसको भी जो सूट है वो सूखना कहते हैं। इसका भी जो उपाय है वो संक्रमित पौधों के पत्तों के जो अंदर है वो रहता है तो इसलिए इसमें कार्बोफ्यूरिन 3G 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर के छिड़काव करके उस फसल का नुकसान से बचाया जा सकता। इसी प्रकार एक नया ही जो कीट देखा गया है और अभी पटल पर सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को ये परेशान भी कर रहा है यदि ये कीट दिखे तो एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ जरूर बताएं वो है फॉल आर्मी वॉर्म। ये बहुत खतरनाक कीट है जो बॉस इसकी जो आक्रमण करने की जो रेंज है वो बहुत लंबी है। बहुत सारे जैसे मक्का ज्वार बाजरा गन्ना धान और गेहूँ तक का में वो आक्रमण करता है। तो इसके जो फॉल्म आर्मी ओवर में ये समेकित कीट प्रबंधन के द्वारा इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रैप लगा सकते हो, फेरोमोन्स लगा सकते हो, या उसमें गंभीर संक्रमण दिखाई दे जाता है कि भाई ज़्यादा ही हो रहा है, तो निकटतम कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर के और उसमें रासायनिक छिड़काव भी किसान भाई अपना सकते हैं, जिसमें क्लोरोटाइनिलीरोप्रोल है जो 18.5% आता है, उसको 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या थियोमोथोक्सम जो दवाई है वो 12.6% के साथ में लेमडा साइक्लोत्रीन होती है जो 9.5 ZDC की होती है, वो 0.25 मिलीमीटर, इन दोनों को मिला के वो छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह यदि कोई ज्वार बाजरा में दीमक का कोई पुरानी फसल के डंठल या रेह में, तो दीमक का प्रकोप भी हो सकता है, या टिड्डी कहीं दिखाई दे रही है तो उसका भी प्रकोप हो सकता है। दीमक के प्रकोप को रोकने के लिए क्लोरीपाइरीफॉस 20 cc की दवाई है, वो किसान भाइयों खेतों के अंदर आप प्रति 2.5 किलोग्राम की मात्रा का छिड़काव प्रति हेक्टर करें, या इमिडो क्लोरोफिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके 600 लीटर पानी का घोल बना के उसको प्रति हेक्टर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। या अब टिड्डी का जो प्रकोप है वो बाजरा मक्का में भी ज़्यादा रहता है, वो सारी फसलों को खाती है, तो टिड्डी हो तो टिड्डी का दिखाई देने पर भी आपके निकटतम कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह लेकर के उसको भी नियंत्रण के लिए दवाई या रासायनिक आप अपना सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा है वो सफ़ेद लट है, तो उसका नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20% 2.5 किलोग्राम मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं, या इमिडो क्लोरोपिड है 17.8 SL 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर के पानी में दर से 600 लीटर पानी का घोल बनाकर प्रति हेक्टर में किसान भाई छिड़काव करके सफ़ेद लट का है नियंत्रण किया जा सकता है।
2: मूंगफली में आपने भी जो कीड़ा लगा है, रोग लगा है, वह कौन कौन सा लगा है और वहाँ को जो नियंत्रण है वो किस प्रकार करना चाहे, बाकी जानकारी भी बताओ।
3: किसान भाइयों, मूंगफली के अंदर मुख्य जो है सफ़ेद लट जो है वो जो लगती है और दीमक, ये दोनों सबसे ज़्यादा पत्तियां, मतलब वो मूंगफली का पौधा है वो सूख जाता है और हाथ से खींचने पर निकल जाएगा। तो उस कीट के लिए जो इमिडो क्लोरोपिड दवाई है उसका आप कर सकते हैं, और डाई एथेन M45 2G का जो ग्राम प्रति लीटर के पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि ये वापस दिखाई दे तो 10 से 12 दिन बाद में वापस उसको छिड़काव करें। ज़्यादा समस्या है उसमें लगे, प्रॉब्लम लगे कि भाई पौधा किस तरह का रोग है, तो उस पौधे को उखाड़ के जड़ सही थी वो निकटतम कृषि विशेषज्ञ के पास ले जाके उसकी दवाई और उसका निदान जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल में आपने एक तिलनी फसल होया करे जो है तिल की फसल, बिम कौन सा रोग लगे और बांको का नियंत्रण है?
3: तिल में मेन फिलोडी रोग है जो वायरस के द्वारा होता है, और वायरस का रोग है वो कीटों के द्वारा ही फैलता है, तो कीट का नियंत्रण ही उसमें मेन है, और नहीं तो वो वायरस को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है तो वो किसान भाई उसका छिड़काव करके वो रोग को निदान पाया जा सकता
2: है। इसके साथ में डॉक्टर साहब से बताओ, आपने जो समेकित रोग प्रबंध है वो काय हुआ है, बाकी जानकारी बताओ किसान भाई।
3: जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है किसान भाइयों। जो समेकित रोग का मतलब है कि आपको रोग दिखते ही रासायनिक छिड़काव नहीं करना, उससे पहले उसको यांत्रिक, भौतिक या दूसरे कोई साधन जो अपना सकते हैं, या फिर जैविक दवाइयां हैं उनसे नियंत्रण करने की कोशिश करें, क्योंकि रासायनिक दवाई तो लास्ट अपना ऑप्शन होना चाहिए, अपना उपाय आखिरी उपाय होना चाहिए। तो उसमें यांत्रिक उपाय कर सकते हैं या भौतिक उपाय कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं या उसमें लाइट ट्रैप लगा सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा कीट को खाने वाले बैक्टीरिया या जो दूसरे कीड़ों को खाने वाला कीड़ा जैसे लेडी बर्ड बीटल, तो इनका काम में लेकर के उनको नियंत्रण करना चाहिए। जब ये लगे कि ये ज़्यादा हो रहे हैं तब आखिर में उसको रासायनिक उपाय पर किसान को जाना चाहिए, क्यों रसायन हमारे शरीर और पर्यावरण के लिए और पशुओं के लिए सबके लिए हानिकारक है, तो किसान भाई रसायन का उपाय और उसके छिड़काव से उसको हानि भी है, क्योंकि वो जब जरूरत इतनी है ही नहीं, वो बार बार छिड़काव करेगा तो वो पर्यावरण को प्रदूषण करेगा ही, पर कुछ इसकी वो रजिस्टेंस हो जाएगी कुछ कीट, तो वो बाद में मारने पर भी वो रसायन से भी नहीं मरेंगे।
2: बिल्कुल, करीब फसलों की जो संरक्षण कार्य की जो जानकारी है ते गणी चौकी जानकारी ते बताया कीट रोग और खरपतवारों के बारे में। अब एक चीज़ ते जाता था, यह बताओ कि आपने जो किसान भाई है जो खरपतवार नियंत्रण, रोग कीट नियंत्रण करे, बह के लिए कोई भी स्प्रे करे या कोई जैविक नियंत्रण करे, तो बी के लिए जो मुख्य बातें जो ध्यान में रखवाली है वह कौन कौन सी है?
3: हाँ किसान भाइयों, ये अच्छी बात है कि जैसे आप इसमें स्प्रे मशीन भी काम में ले रहे हो तो हर बार उसको धोकर लें, खरपतवार नाशी के टाइम में

0: बातों का चित्र धोएं और इस पर रखी हुई दवाई के डब्बों को पूर्णतः ऐसी जगह पर रखें कि जैसे बच्चों को हाथ नहीं आए या उनको गाड़ दें। और खड़ी फसल में यदि वो रासायनिक स्प्रे कर रहा है तो विशेषज्ञ की सलाह या अनुशंसा पर ही करना चाहिए। और यदि कोई कुष्मांड कुल की अभी जैसे सब्जियों की कोई किसान भाई ले रहा है तो जैसे तोरई है, कोला है, कद्दू है, ककड़ी है, खीरे है, तो उनकी बेलों को बांस पर या तार पर ताकि बांधे कि वो उसकी फ्रूट की जो क्वालिटी है, जो फल लगते हैं वो अच्छे बने रहें। तो किसान भाई ये पूरा इन चीज़ों का ध्यान रखें तो ज़्यादा उत्पादन पा सके।
1: बिल्कुल, बहुत ही छोटी जानकारी दिया भी के लिए ताको बहुत बहुत धन्यवाद। और ते कीमती समय निकाल माका स्टूडियो में प्रोग्राम में पधारया। आप हैं श्री राम प्रसाद डिडेल, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर।
2: राजू जी आपको भी घणो घणो धन्यवाद। जो राम प्रसाद डिडेल जी से अति चोखी जानकारी खरीफ फसलों में संरक्षण कार्य के बारे में जानकारी दिलाया सा, और सा अति चोखी जानकारी के पाछे एक चोखो सो गीत तो बने ही छे भूमिका जी,
3: तो सुना दो सा।

0: वाह सावा, वाह सावा भाई, गीत को मजो आ गयो। और लहरी और सावन की अगर बात करा तो भाई बात ही कहीं।
1: और देखो सा साहिबा ने लहरियो तो लियानो ही पड़सी भाई, सावन को महीनो छे तो लहरियो तो ले देनो ही पड़सी।
0: तो भाई देखो अनीता बहन, आपनों भी लहरियो आवगा कल, अगर आपन भी लेर आवेगा, लेकिन फिलहाल अपन आपन अगर देखा तो स्टूडियो की जो सुइया छे वो कह रही है कि भूमिका अनीता अध जावेगी तभी तू फिर लौट रहा आवेगी। तो करा राम राम सा।
1: बिल्कुल सा, राम राम सा।
2: खेती बाड़ी।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप सर फिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते ना देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंताकायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल है, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार्य बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

1942 अ लव स्टोरीज़ फ़िल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से संवारा था आर डी बर्मन ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

इतिहास फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ों में। गीत समीर का था और संगीत दिलीप सेन समीर सेन का।

कलाकार फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार का गाया हुआ। गीत इंदिवर का था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण दिल्ली से होगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में 7 खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रज्ञानंदा सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष पर। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका के यूजीन में आज से शुरू। और केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता शिल्पा शायला को सम्मानित किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो कुछ वर्ग में खिलाड़ियों हार के साथ वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज कई भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कई बैडमिंटन खिलाड़ियों का सफर आज समाप्त हो गया। प्रतियोगिता से जुड़े आज के मुकाबलों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी निखिल। निखिल, आज अलग अलग वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा किया, कुछ खिलाड़ियों को अगले दौर में जगह मिली तो कई प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कैसा रहा खिलाड़ियों का आज का प्रदर्शन?
1: प्रशांत, आज की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। कुछ वर्ग में खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया तो कई में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। और अगर प्रशांत महिला सिंगल्स की हम बात करें तो कुल 7 खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने भी अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं अगर महिला डबल्स की हम बात करते हैं तो आज एक मुकाबला खेला गया जिसमें खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की और अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं मिक्स डबल्स के 2 मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें से एक में तो हमें जीत मिली और दूसरे में हार कर सफर समाप्त हो गया है। और पुरुष डबल्स के एकमात्र मुकाबले में आज भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कल भारतीय डबल्स भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज करके इस वर्ग में उम्मीदें कायम रखी हैं। लेकिन प्रशांत, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पुरुष सिंगल्स में आज निराशा ही हाथ लगी, सभी 6 खिलाड़ी हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए।
0: जैसा निखिल आपने बताया कि महिला सिंगल्स में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया, तो किन खिलाड़ियों ने आज बाजी मारी है?
1: मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशांत कि हाल ही में ताइपे ओपन विजेता बनी तन्वी शर्मा ने आज भी बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। उनका खेल देखने लायक था। तन्वी ने सीधे गेम में युआन आंशी को 21-16 और 21-15 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया है और उनका ये खेल दिखाता है कि किस तरह से वो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं अनमोल खरब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हांगकांग की ली सिन यान को 16-21, 21-17, 21-12 से हराया। मानसी सिंह ने भी कोरिया की किम जो युन को 14-21, 21-19, 21-9 से हराया। वहीं रक्षिता श्री रामराज ने कोरिया की ये यौन यू को 22-24, 21-12, 21-13 से पराजित किया। उधर अश्मिता चालिया ने भी एक तरफा मुकाबले में जापान की हिरामोतो को 22-20, 21-18 से हराया। श्रियांशी वली शेट्टी ने वाई पी पाई को 21-15, 21-14 से हराया। और आपको हम ये भी बता दें कि ईशा रानी बरुआ ने कोरिया की ली सो युल को 21-18, 15, 21 और 21-7 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। हालांकि आकर्षी कश्यप मिनजी किम से और तान्या हेमना जापान की हिना आकेचाई से हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।
0: जी निखिल, महिला सिंगल्स वर्ग के बारे में आपने बताया, लेकिन पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में क्या कुछ रहा आज खिलाड़ियों का प्रदर्शन?
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर पुरुष डबल्स की बात करें तो भारत को एकमात्र मुकाबले में हार मिली है। भारत के विश्व तेज गोबरू और भार्गव राम एरिगेला की भारतीय जोड़ी को चीन की आरुनताई और आरुन चिया ने 21-17, 21-15 से हराया। इस वर्ग में सभी की निगाहें कल होने वाले कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय के मुकाबले पर होंगे। वहीं महिला डबल्स के बारे में भी हम बता दें कि आज एक मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय जोड़ी को जीत मिली थी। सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर ने 32वें राउंड में स्थानीय दावेदार जी सनबैंग और ह्यून जी जांग को 13-21, 21-15, 21-12 से हराया। उधर मिक्स्ड डबल्स की बात करें तो भारत को आज एक जीत और एक हार मिली है। ईशान भटनागर ने अपने ही देश के सात्विक रेड्डी कन्नापुरम और राधिका शर्मा को 20 22-21, 21-15 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। वहीं एक अन्य मुकाबले में मलेशिया की लू बिंग कुन और नोराकिला मायसारा ने ध्रुव रावत और मनीषा को 18-21, 21-14, 21-17 से हरा दिया था।
0: अपने सभी वर्ग की तो बात कर ली निखिल, लेकिन पुरुष सिंगल्स में खिलाड़ियों ने आज कैसा प्रदर्शन किया है?
1: पुरुष सिंगल्स की अगर हम बात करें तो निराशा हाथ लगी है। पुरुष सिंगल्स के सभी 6 खिलाड़ी हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। बड़ी उम्मीदें थी किदांबी श्रीकांत से, तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, थारुण मन्नेपल्ली, सनी दयानंद और मिथुन मंजुनाथ की हार के साथ ही पुरुष सिंगल्स में भारत की चुनौती अब समाप्त हो गई है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद निखिल इस विस्तृत जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि अब जो बाकी खिलाड़ी बचे हैं इस प्रतियोगिता में वो अच्छा प्रदर्शन करें और देश का परचम लहराते रहें।
1: बिल्कुल।
0: उधर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी कंधे की चोट से उबर गए हैं और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत के मुख्य डबल्स कोच टैन किम हर ने इस बात की पुष्टि की है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी कंधे की चोट से उबर गए हैं और चिराग शेट्टी के साथ मिलकर 17 अगस्त से होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की चुनौती की अगुवाई करने को तैयार हैं। सात्विक की कंधे की चोट जुलाई में जापान ओपन के दौरान फिर उभर आई थी, जिस कारण सात्विक और चिराग को पुरुष डबल्स के पहले दौर के मुकाबले के बीच से हटना पड़ा। इस जोड़ी ने इसके बाद चीन ओपन से भी नाम वापस ले लिया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में दुनिया की 5वें नंबर की जोड़ी सात्विक और चिराग को भारत के लिए पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। पहले दौर में बाई हासिल करने वाली ये 5वीं वरीय जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत दूसरे दौर से करेगी। मलेशियाई कोच किम हर ने सात्विक की चोट से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि उनका कंधा लगभग पूरी तरह ठीक हो गया है और वो कोर्ट पर उतरने के लिए तैयार हैं। भारत के हरिहरन अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी पुरुष युगल में चुनौती पेश करेगी और पहले दौर में आयरलैंड की जोड़ी से भिड़ेगी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप के बाद एशियाई खेल भी होने हैं। सात्विक और चिराग एशियाई खेलों में गत चैंपियन हैं और वे विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। उधर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 17-23 अगस्त तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। इस आयोजन के लिए हाल ही में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली स्टार भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु को 9वीं वरीयता दी गई है। 2022 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सात्विक चिराग की जोड़ी को 5वीं वरीयता मिली है। इस चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो सभी 5 कैटेगरी में भारत की 2-2 एंट्री है और 5 में से 4 कैटेगरी में कम से कम 1 वरीयता वाली एंट्री है। सिंधु और सात्विक चिराग के अलावा पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन को पुरुष सिंगल्स में 14वीं वरीयता मिली है। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो की मिक्स डबल जोड़ी को 15वीं वरीयता मिली है और खिलाड़ी 28 अप्रैल की अपनी वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए। रैंकिंग के आधार पर भी इस चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता तय की गई है। और अब बैडमिंटन कोर्ट से चलते हैं शतरंज की ओर। सेंट लुइस में भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 में से 12 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने इसके साथ ही वर्ष के अंत में होने वाले ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें भी कायम रखी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: विश्व चैंपियनशिप 2026 की दौड़ से बाहर हो चुके प्रज्ञानानंदा ने 9 दौर के रैपिड मुकाबलों में बेहतरीन तकनीक, सटीक चालों और जीत के जज्बे का परिचय दिया। हालांकि उन्हें 9वें और अंतिम दौर में नीदरलैंड्स के ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वान फॉरेस्ट से हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वो 1 अंक की बढ़त के साथ शीर्ष पर बने रहे। उन्होंने उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव को पीछे छोड़ा, जो इस वर्ष विश्व चैंपियनशिप मुकाबले में डी गुकेश को चुनौती देंगे। प्रतियोगिता प्रतियोगिता का परिणाम केवल रैपिड वर्ग से तय नहीं होगा, अब 18 ब्लिट्ज मुकाबले खेले जाएंगे जिनके बाद कुल विजेता का फैसला होगा। प्रज्ञा नानंदा ने रैपिड वर्ग में 4 जीत 4 ड्रॉ और 1 हार के साथ कुल 12 अंक जुटाए। अब उनका पूरा ध्यान 18 दौर के ब्लिट्ज मुकाबलों पर होगा जहां प्रत्येक जीत के लिए 1 अंक मिलेगा। सिंदारोव 11 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि अमेरिका के वेस्ली सौ 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इनके बाद अमरीकी लेनियर डोमिंगेज पेरेज और जर्मनी के विंसेंट कीमर 9 अंकों के साथ संयुक्त रूप से अगले स्थान पर हैं। 10 खिलाड़ियों की राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के बाद प्रतिष्ठित सिंक फील्ड कप खेला जाएगा जो क्लासिकल प्रारूप में आयोजित होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से अमेरिका के यूजीन में शुरू हो गई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23 पुरुषों और 13 महिलाओं की टीम की घोषणा की है, जो हेवर्ड फील्ड में 5 दिनों तक चलने वाले 18 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत ने इस प्रतियोगिता में 36 सदस्यीय दल भेजा है। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। सुनते हैं हमारे सहयोगी विशेष की ये रिपोर्ट।
4: अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से कई एथलीट इस सीजन में घरेलू स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद चैंपियनशिप में प्रवेश कर रहे हैं। भारत प्रिंट मध्यम दूरी की स्पर्धाओं, बाधा दौड़, कूद, थ्रो, रेस वॉक और रिले स्पर्धाओं में भाग लेगा। भारत की पुरुष टीम में मोहम्मद अशफाक और पीयूष राज 400 मीटर दौड़ तथा 400 मीटर मिक्स्ड रिले में चुनौती पेश करेंगे। वहीं वेंकट राम रेड्डी मोगाली और उविन आनंद 800 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे, जबकि अमित कुमार 400 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेंगे। बसंत और अम्बरीश कार्तियन ऊंची कूद में, शहनवाज खान और

0: अर्जुनन रमन लंबी कूद में प्रतिस्पर्धा करेंगे। रोशन चंद्रशेखर और धनुष राज मनापट्टी ट्रिपल जंप में, निश्चय चक्का फेंक में चुनौती पेश करेंगे। भाला फेंक में आशीष यादव और धरणी धरन त्यागराजन अपना दमखम दिखाएंगे। 5000 मीटर रेस वॉक में नितिन गुप्ता, 4x400 मीटर रिले में अंशु रजक, आदित्य तात्या, निवेद कृष्ण ज्योति प्रकाश, नील रामराज, रुद्र सचिन शिंदे और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में रंजीत कुमार, सबीर सैयद, नकुल प्रभु हिस्सा लेंगे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शॉटपुट F57 स्पर्धा में देश को कांस्य पदक दिलाने वाली पैरा एथलीट शिल्पा शायला को आज भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने सम्मानित किया। शिल्पा ने 7.26 मीटर दूर गोला फेंकते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। केंद्रीय मंत्री ने शिल्पा के साथ उनके कोच सत्यनारायण और पुष्पा निरंजन प्रसाद को भी सम्मानित किया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की। उन्होंने लिखा, आज मैंने कर्नाटक की बेहतरीन पैरा एथलीट शिल्पा के शायला का स्वागत और सम्मान किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शिल्पा ने शर्मिला धनखड़ के साथ पोडियम फिनिश किया था। शर्मिला पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी रहीं। शर्मिला ने 9.81 मीटर के अपने बेस्ट प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पर कब्जा जमाया था। भारत ने 13 स्वर्ण समेत कुल 39 पदक जीते हैं। और अब जन्मदिन विशेष में आज बात उस भारतीय क्रिकेटर की जिन्होंने तेज गेंदबाजी, कोच और प्रशासक के रूप में अहम भूमिका निभाई। आज भारत के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का जन्मदिन है। एक योद्धा की तरह क्रिकेट के मैदान में विपक्षी टीम से लड़ने वाले वेंकटेश प्रसाद संन्यास के बाद कोच और प्रशासक की भूमिका में सफल रहे। मौजूदा समय में वे कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वेंकटेश प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने 1994 में 25 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। वेंकटेश प्रसाद ने 7 वर्ष के अपने करियर में 33 टेस्ट और 161 वनडे खेले। उन्होंने टेस्ट में 96 और वनडे में 196 विकेट लिए। वेंकटेश प्रसाद के करियर का सबसे दिलचस्प किस्सा पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, जो आज भी क्रिकेट इतिहास की चर्चित कहानियों में से एक मानी जाती है। इस मैच में वेंकटेश प्रसाद ने 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे।
2: Response from Amir Sohail is magnificent. He's down the track and really it's been a flat batted tennis shot. Over covers for 4. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amir Sohail. Sohail losing a bit of concentration, having a chat with the bowler. And having his off stump peg back next ball. 113 for 2 Pakistan.
3: Well, let's watch it here. It's a really terrible shot. And by losing his concentration, arguing with the bowler, now look what Pakistan has suffered.
1: वेंकटेश प्रसाद को स्पोर्ट्स कैन की टीम की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी

0: सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा

0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
1: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
2: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ता गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
3: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में

0: लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रेयांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.
3: The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb are among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues,

0: Policy Committee, MPC of the Reserve Bank of India, RBI, has decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. Making the announcement today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the MPC also decided to keep this stance neutral while hiking the growth projection marginally to 6.7% from 6.6% and reduced the inflation forecast to 5% from 5.1% in the current financial year. Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. We have a report.
1: The Sensex gained 152 points to close at 78,581. The Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. Meanwhile, in the forex market today, the rupee appreciated by 25 paise to end at 95 rupees and 13 paise against the US dollar. With Intikhab's report, Gaurav Dhawan Lal for Akashwani News.
0: In sports, India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven players advancing to the second round of women's singles, while all six men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Karb, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita Ramraj, Ashmita Chaliha, Isha Rani Barua and Shreyansi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. However, in the men's singles, former world number one Kidambi Srikanth, Mithun Manjunath, Kiran George, Ronak Chauhan, Sanit Dayanand and Tarun Manepalli all suffered first round defeats. The Inter Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa tomorrow. The IMD has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Karb among seven Indians to enter second round of women's singles. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक मवाद और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे और भारत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खर्ब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में बहस के बाद इस बिल को वापस लोकसभा भेज दिया गया। लोकसभा ने इस बिल को पीर के रोज मंजूर किया था। ये बिल सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक कानून 1956 में तरमीम करेगा, जिसके तहत भारत के चीफ जस्टिस के अलावा अदालत आलिया में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया। राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि

0: मीडिया पर बढ़ते काम के बोझ और उभरते हुए आईनी और कानूनी मामलात के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफा वक्त की जरूरत और एक बर वक्त इसलाह है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2019 के जरिए असल कानून में तरमीम करते हुए पिछली मरतबा चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामलात के बोझ से निपटने के लिए जजों की तादाद में इजाफा एक मौसर हल है। इस साल 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। अगरचे 2019 से सुप्रीम कोर्ट तकरीबन अपनी मंजूर शुदा मुकम्मल तादाद यानी चीफ जस्टिस समेत 34 जजों के साथ काम कर रही है, फिर भी पिछले साल 75,410 नए मुकदमात दर्ज किए गए और 65,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है क्योंकि नए केसेस के इंदराज और उनके हतमी फैसलों के दरमियान एक मुस्तकिल फर्क मौजूद है। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने से मुकदमात के जल्द फैसले होंगे और अवाम को बरवक्त इंसाफ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमन अली खान।
0: लोकसभा ने बैंकर्स बुक्स के शवाहिद से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी। इस बिल का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड से मुतालिक शवाहिद के कवानीन को जदीद तकाजों से हम आहंग करना है और उन्हें मौजूदा डिजिटल बैंकारी निजाम के मुताबिक बनाना है। इस बिल के जरिए कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाया जाएगा ताकि मौजूदा बैंकारी निजाम की जरूरियात पूरी की जा सकें। इसमें यह भी इल्तजाम है कि बैंक के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल नकल अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल कानूनी तौर पर दुरुस्त और नाफिजुल अमल होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर यह बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुसलसल हंगामा आराई के बावजूद लोकसभा ने बगैर किसी बहस के इस बिल को मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों से वाबस्ता खतरात से वाकिफ है, जिनमें नुकसानदेह मवाद तक रसाई, साइबर तरीके से डराना धमकाना, ऑनलाइन इस्तेहसाल और डिजिटल लश शामिल हैं। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत आलमी वाकयात और ऑनलाइन सेफ्टी से मुतालिक बदलते हुए बैन अक्वामी इंजिबाती तरीक़ेकार से आगाह रहती है, जिनमें डिजिटल माहौल में बच्चों के तहफ्फुज के सिलसिले में मुख्तलिफ कानूनी इख्तियारात के तहत किए गए इकदाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल जाती डेटा के तहफ्फुज से मुतालिक कानून 2023 नाफिज किया जा चुका है, जो डिजिटल जाती डेटा की खातिर एक कानूनी तरीके का कायम करता है। डीपी एक्ट बच्चों की ऑनलाइन राजदारी के तहफ्फुज के लिए एक कानूनी तरीक़ेकार भी फ्राहम करता है। मेटा, जो दुनिया के कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की असल मालिक है, के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने आज भारत सरकार से बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, इससे मुतालिक दिगर मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म के कामकाज में खामियों पर माजरत का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मेटा ने यह भी तस्लीम किया कि मखसूस किस्म के मवाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी रकम अदा की जाती रही। भारत सरकार ने मेटा को वाजे किया कि वो सिर्फ सालिस प्लेटफॉर्म की तारीफ के तहत नहीं आती, बल्कि वो खुद फैसला करती है कि कौन सा मवाद किस तारीफ को दिखाया जाए। इस पर मेटा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत का इजहार किया। आज दफा 370 और 35A को तारीखी तौर पर मंसूख किए जाने को 7 बरस मुकम्मल हो गए। इस मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2019 में आज के दिन ही दफा 370 और 35A को मंसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की जिंदगियों में काया पलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचों में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सनतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन और हाशिए पर रह रही बिरादरियों और उन अफराद को जिन्हें दहाइयों से बुनियादी आईनी हकूक नहीं दिए गए, उन्हें आईन के मुकम्मल नफाज से बाख्तियार बनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की तरक्की के हुकूमत के अज़्म का यादा किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी को विकसित भारत के लिए बड़े ख्वाब देखने उन्हें शर्मिंदा

0: के साहिल इलाके, मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश से शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों, जुनूबी कर्नाटक, जैली हिमालयी इलाके, मगरी बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में इसी तरह की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। जनूबी कोरिया के आसन में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी मिलीजुली रही। खवातीन के सिंगल्स में सभी 7 खिलाड़ी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रहीं। वहीं मर्दों के सिंगल्स में सभी 6 खिलाड़ी इफ्तिताही राउंड में ही बाहर हो गए। खवातीन सिंगल्स में अनमोल खर्ब, मानसी सिंह, रक्षिता रामराज, अश्मिता चलिहा, ईशा रानी बरवा, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने शानदार जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। अनमोल खर्ब ने हांगकांग चीन की लोसिन यान को हराया, जबकि मानसी सिंह ने कोरिया की किम जू योन को शिकस्त दी। रक्षा रामराज ने कोरिया की यून यू को, जबकि अश्मिता चलिया ने जापान की रेरिना हिरामोतो को हराया। ईशा रानी बरवा ने कोरिया की ली सो ही को, वहीं तन्वी शर्मा ने चीन की एंग की युआन को शिकस्त दी। श्रियांशी वेलिशेट्टी भी चीनी ताइपे की यूपो पी को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गई। हालांकि आकर्षी कश्यप को राउंड ऑफ 32 में कोरिया की खिलाड़ी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। खवातीन के डबल्स के मुकाबले में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर कोरिया की जोड़ी को हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गई। मिक्स डबल्स में छठे दर्जे की शरूति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अपने हमवतन खिलाड़ी सत्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को शिकस्त देकर अगले राउंड में दाखिल हो गए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाइख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खूनरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझकर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल यह है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामले

0: के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
2: जी नमस्कार
0: शरद जी, आपके साथ है, शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देकर उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता ही है जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनल की फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
0: जी हाँ बिल्कुल, अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
2: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलिजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोहली साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार है, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेंड कर रहा है कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
0: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे, जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके, शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए? एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
1: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है।

0: है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम एआई से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती हैं। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930 वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का, पुलिस का सेल है। और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए, तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा। और मैं ये भी बता दूं साथ में, चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो एसओपी जारी किया है, उस एसओपी में क्या क्या चीजें, आप देखिए, अगर एसओपी को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए, आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, एफआईआर भी करेंगे और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरा, इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, यूपीआई से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है, जी हमें क्या पता, वो तो आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई, लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास, तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा, देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज, ये भी कहा गया आनंद, स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बाकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दे, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं, उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगी, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है, इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है, तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड है, वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक

0: रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद वो जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें बना 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वह ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं, और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डिवेलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: चरण जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
2: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कलेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी, किसी आम आदमी को यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जहां हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं, तो FIR करने में डिले होती है, इसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, अब मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक, तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए, अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा है। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी कि रिकवरी रेट बहुत कम है, मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूँ 1,00,000 रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है, कुल मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12,000-12,500 इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है, उसमें से मात्र 5-10,000 रुपए, 5% 10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहाँ बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करें, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसी को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, ई केवाईसी भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात, जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
0: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट के थ्रू खोल जाते हैं। बीसी मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहाँ तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है, या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है, और दूसरा, सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसके मुकाबले जो AI के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। AI दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से AI की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
2: देखिए, अगर हम AI की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि

0: उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी सिम कार्ड जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए, जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, ये सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से AI टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहां पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है, जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को, ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करे, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या, मैं कहता हूं अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं, यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये RBI को SOP बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
2: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजैक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है, तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहे कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती, तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को कटौते रहें।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
0: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे

0: म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सलूशन है। और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए और आपका पैसा सरकार से सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती याद रखिए। दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद,
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

ये आकाशवाणी जयपुर अभी है। क्या हुआ? हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए गुलजार हुसैन का वायलिन वादन। इनसे हम आपको सुनवा रहे हैं वायलिन पर राग विहाग।

शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलजार हुसैन से वायलिन पर राग विहाग। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

सिर्फ तुम इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर का ये गीत था और संगीत नदीम श्रवण का।

लाइफ में कभी कभी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जुबिन गर्ग का गाया हुआ। समीर के बोलों को संगीत से संवारा था ललित पंडित ने।

धड़क फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अजय गोगावले का गाया हुआ गीत अमिताभ भट्टाचार्य का था और संगीत अजय अतुल का।

पीके फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत अमिताभ वर्मा का था और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

तुम बिन फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। फैज़ अनवर के बोलों को संगीत से संवारा था निखिल विनय ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: प्रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।